इसी गहरे जीवन दर्शन को बेहद सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करता है फिल्म सफर का ये बेहद खूबसूरत नगमा। ये गीत हमें बताता है कि समय की तरह जीवन भी लगातार आगे बढ़ता है, जो बीत गया उसे अफसोस करके नहीं बल्कि तजर्बा बनाकर अपने साथ रखिए। हर नया दिन, हर नई चुनौती और हर नया अवसर हमें कुछ बेहतर बनाने का मौका देता है। ये गीत अपनी गंभीर और मधुर प्रभावशाली आवाज से अमर बनाया है। इस गीत को मन्ना डे साहब ने, उनकी गायकी में ज्ञान, सादगी और आत्मविश्वास का ऐसा संगम है जो गीत के संदेश को, गीत के पैगाम को और भी असरदार बना देता है। तो आइए हम भी इस नगमे के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत नगमा।

इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, सुप्रभात। FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 अगस्त सन 2026। आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह के 5:55 और ठीक 42 सेकंड्स हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार और संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कौशल के बीच की दूरी कम करने में मदद के लिए तैयार की गई है। 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्र हैं और उन्हें इंटर्नशिप करने पर प्रतिमाह न्यूनतम 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो ने इस मामले में 13 आरोपियों के अलावा अन्य साजिशकर्ताओं की जांच जारी रखने की अनुमति की मांग की थी जिनके विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये सुने चिंतन। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, हम आजादी तभी पाते हैं जब अपने जीवित रहने के अधिकार का पूरा मूल्य चुका देते हैं। भक्ति संगीत।

घाट पर जब तप करते जहाँ साधु सन्यासी, बोलो हर हर महादेव जो गंगा।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरोखा सुनिए विविध भारती से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद सुबह 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान सुनवाया जाएगा, आज भाग 281। सुबह और शाम 6:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल। आज इस श्रृंखला की 15वीं कड़ी सुनवाई जाएगी, प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण सुबह 7 बजे से किया जाएगा। 8:15 पर त्रिवेणी होगी। 2 बार आप दिन में 2 बजे सुन सकते हैं। 8:30 पर चित्रलोक, सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा, जो स्वतंत्रता दिवस पर हमारी विशेष पेशकश है। आपको बता दें ये कार्यक्रम रात 9:30 पर 2 बार सुना जा सकता है। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी, कहानी अब गम नहीं, इसे लिखा है अलका अग्रवाल सिगतिया ने और प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की है। दिन में 11 बजे स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला का विशेष भाग प्रसारित किया जाएगा। संकलन संपादन जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। सुबह 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर। दिन में 2:15 पर समाचार प्रसारित किए जाएंगे। विविध भारती पर दिन भर में जो समाचार प्रसारित किए जाते हैं उनके बारे में आपको बता दें, सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, दिन में 12 बजे हिंदी समाचार, शाम 6 बजे हिंदी समाचार और उसके बाद रात 8:45 पर समाचार संध्या। नाट्य तरंग के अंतर्गत आज नाटक सुनवाया जाएगा लगन, रोमी शिराज ने इसे लिखा है, निर्देशक मुद्रा राक्षस। दिन में 2:30 पर सदाबहार नक में कार्यक्रम, 3 बजे मनचाहे गीत, 4 बजे पिटारा में बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुति जुबैर खान की है। 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम होगा, संध्या रंजन 6:35 पर, 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम होगा। आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी ने, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा कार्यक्रम आप सुनेंगे।

के साथ इस कार्यक्रम में आज है तिरंगे की कहानी। हवा महल में सुनो कहानी श्रृंखला में पंच परमेश्वर कहानी का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। कहानी मुंशी प्रेमचंद की है, वाचक अमरकांत दुबे, प्रस्तुति विजय दीपक छिब्बर। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए। 10 बजे सुनिएगा छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे आप सुनेंगे वंदे मातरम विशेष एपिसोड। आज दिन भर के कार्यक्रमों का ब्यौरा अभी आपने सुना, चारों खबरें सुनते रहिए विविध भारती, देश की

रात्रि की निस्तब्धता में रावण के महलों में सीता की खोज करते हुए हनुमान उन्हें तो कहीं नहीं पाते, किंतु एक स्थान पर पूजा के लिए निर्मित हरि मंदिर तथा तुलसी के पौधों का समूह देखकर उन्हें परम आश्चर्य होता है। जगे हुए विभीषण के मुख से प्रभु नाम का उच्चारण सुनकर उनका आश्चर्य और भी बढ़ जाता है। ब्राह्मण वेशधारी को अपने सम्मुख पाकर आदर सत्कार के बाद विभीषण का प्रश्न है, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं या स्वयं श्री राम हैं जो मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? राक्षसों की नगरी में एक संत और राम भक्त? पवन सुत चकित होकर विभीषण की कथा सुनते हैं।

0: अब सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कांड।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ध्वजारोहण पर कर संयुक्त परेड की सलामी लेंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकली और तिरंगे की रोशनी से जगमगाए प्रदेश के शहर। और प्रदेश के 21 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, कुछ इलाकों में 4 से 8 इंच तक बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से करीब 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, माय भारत के उत्कृष्ट स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी और पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े स्ट्रीट वेंडर शामिल हैं। वहीं प्रदेश में भी आज 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ध्वजारोहण करेंगे और संयुक्त परेड की सलामी लेंगे। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री परेड का निरीक्षण करेंगे और प्रदेशवासियों के नाम संदेश का वाचन करेंगे। समारोह में पुलिस बैंड सहित 22 टुकड़ियां आकर्षक मार्च पास प्रस्तुत करेंगी। परेड में सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, NCC, स्काउट गाइड और शौर्य दल की टुकड़ियां शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने देश के निर्माण और प्रगति में योगदान दे रहे प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति ने 3 सेनाओं के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा और प्रवासी भारतीयों के योगदान की विशेष प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्से में युद्ध और अस्थिरता के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को आर्थिक प्रगति और सुरक्षा का मजबूत आधार बताया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम और आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख का भी उल्लेख किया।
2: आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो।
1: प्रदेश के कई शहरों में कल तिरंगा यात्राएं निकाली गईं।

0: पहुंचकर सम्मानित किया गया। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज 18 बंदियों को रिहा किया जाएगा। रिहा होने वालों में एक महिला बंदी भी शामिल है। जेल प्रशासन के अनुसार सभी बंदियों ने शासन की निर्धारित पात्रता और जेल नियमावली की शर्तें पूरी की हैं। जेलर मदन कमलेश ने बताया कि अब पात्र बंदियों को वर्ष में 5 अवसरों पर रिहा किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर यह रिहाई बंदियों को नई शुरुआत का अवसर देने के उद्देश्य से की जा रही है। जबलपुर में विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर पंजाबी महासंघ ने कल मौन यात्रा निकाली। यह यात्रा गोरखपुर के गुलाटी चौक से शुरू होकर भगत सिंह चौक तक पहुंची। यात्रा में समाज के वरिष्ठ जन, महिलाएं, व्यापारी और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। लोगों ने विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लाखों लोगों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विभाजन की पीड़ा और उस दौर में लोगों के संघर्ष को याद किया गया। वहीं दूसरी तरफ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो ने भी भोपाल में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर संगोष्ठी आयोजित की। अब समाचारों, वक्त एक छोटे से विराम का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: शहडोल दक्षिण वन मंडल के बुढ़ार रेंज में पदस्थ वन रक्षक समरुद्दीन बेगा और राकेश बेगा को मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन में उल्लेखनीय योगदान के लिए गज गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोनों वन रक्षकों ने वर्ष 2025-26 में हाथियों की गतिविधियों पर दिन रात निगरानी और रात्रि गश्त की। उन्होंने ग्रामीणों के साथ समन्वय कर लोगों की सुरक्षा और हाथियों के सुरक्षित आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से मानव और हाथियों के बीच संघर्ष की घटनाओं को रोकने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल बड़वानी में सामाजिक कार्यकर्ताओं, खिलाड़ियों, उद्यमियों और किसानों से संवाद किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर चयनित निशानेबाज वैष्णवी माहुले सहित अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निमाड़ की पहचान कपास से है और सरकार कपास आधारित उद्योगों तथा रोजगार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कस्तूरी कॉटन के उत्पादन और प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने बड़वानी में 25 करोड़ रुपए की लागत से नए घाट बनाने और 10 करोड़ रुपए से आदर्श अनाज मंडी विकसित करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल विदिशा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महोत्सव का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक और प्राकृतिक व जैविक खेती से जोड़कर कृषि को लाभ का धंधा बनाना है। मुख्यमंत्री ने किसानों से जैविक खाद अपनाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की अपील की। डॉ. यादव ने विदिशा की ड्रोन दीदी प्रभा वर्मा से भी संवाद किया। प्रभा वर्मा ने बताया कि ड्रोन से अब तक 1160 खेतों में स्प्रे कर वह 3 लाख रुपए से अधिक कमा चुकी है। प्रदेश में हीरा खनन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए मुंबई में कल राउंड टेबल चर्चा आयोजित की गई। खनिज संसाधन विभाग की ओर से आयोजित इस बैठक में प्रमुख खनन कंपनियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चर्चा में प्रदेश में हीरा खनन को गति देने, निवेश बढ़ाने और नीलामी के बाद खनन गतिविधियां जल्द शुरू करने पर विचार किया गया। उद्योग प्रतिनिधियों ने हीरा खनन क्षेत्र में मौजूद अवसरों और चुनौतियों के बारे में अपने सुझाव दिए। भोपाल की बड़ा तालाब में चल रही तीसरी राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के चौथे दिन प्रदेश के खिलाड़ियों ने कई वर्गों में पहला स्थान हासिल किया। ILCA 4 पुरुष वर्ग में शुभम यादव पहले स्थान पर रहे और शीर्ष चारों स्थान प्रदेश के खिलाड़ियों ने हासिल किए। वहीं IQ5 में आर्यन पाटीदार और प्रार्थना भोई ने अपने अपने वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में 12 राज्यों के करीब 100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कल मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मुख्य आतिथ्य में चैंपियनशिप का समापन होगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में 21 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। नर्मदापुरम, छतरपुर और उमरिया में अति बारिश का अनुमान है। वहीं जबलपुर, सागर, रायसेन, रीवा, शहडोल समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली का असर अगले 4 दिनों तक बने रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ के में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने डेयरी और पनीर विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पनीर के नमूने जांच के लिए लिए गए और 17 लीटर घी जब्त किया गया। रीवा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत दूसरे शिविर में 290 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, इनमें से 194 का मौके पर निराकरण किया गया। कटनी में

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस को याद किया गया एवं श्रद्धांजलि दी गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: निर्णयः प्रवर्तयिष्यते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् दूरदर्शनप्रसारणक्षेत्रे घटितानां परिवर्तनानां दृष्ट्या विज्ञापनावधि सम्बद्धानां प्रावधानानां पुनरावलोकनस्यावश्यकता अनुभूता। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको लाल किला लिए चलते हैं, जहां से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: हॉलमार्क का निशान देख कर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
5: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
6: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
5: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी। देश।

0: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: आइए लाल किला चले।
2: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस। नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्र नायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्र नायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र, अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ।
3: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की ये सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो

0: यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहाँ बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं। इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहाँ से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई पढ़ रहे हैं यहाँ से।
1: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहाँ लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहाँ पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहाँ आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियाँ जो हैं वो धरती तक नहीं पहुँच पा रही हैं और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहाँ तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहाँ पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ। हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था। वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहाँ सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं। प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल है। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह।

0: सेना की अपनी यूनिफॉर्म में वर्दी में सजे धजे गर्व से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है, जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैप के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल डीसीपी विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिनी हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रीय गीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है, जिसको हम यहाँ के कण कण में, यहाँ के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहाँ के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ वंदे मातरम की गूंज यहाँ पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा है, उस क्षण की जब पहली बार यहाँ से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहाँ लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं, और उसके साथ साथ हमारे माय भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफ़ेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है ज़्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है, और उसी रंग के साथ केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहाँ रचा है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम इस बार, इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा।
1: जी, उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आज़ाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहां से हम देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक, बेहद खूबसूरत यहां से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहां पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एक टक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज है अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहां आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हीलचेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहां पर सामान्य जन है, एनसीसी कैडेट्स हैं, माय भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहां पर बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहां पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर, हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो तीन प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं, दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहां बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहां बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात यह है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान

0: आते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं एनक्लोजर्स हैं इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं, भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र सरोवर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए, जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित हैं।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र। मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है माँ भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम माँ भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गारद का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों। और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन बीके मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी, कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में।
3: अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद।

संयुक्त कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मान गर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधे हुए कदमों से, हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कार्पेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे, हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का यह बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहां मौजूद उपस्थित

0: थलसेना की टुकड़ी के पास 25 जवान, नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में। प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी नम्रता लेकिन अभिमान का भामंडल देश के वीर सैनिकों के मुख पर। ये विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में हम सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी, भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह, परेड कमांडर, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए। और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है। श्रोताओं, 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत, हमारा प्यारा भारत, बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को, जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं, लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष गौरवशाली 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे, तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी ध्वज फहराने में। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे, इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे

0: बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए। और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला मैं, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी।
1: निश्चित रूप से, और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण के वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यही हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले, जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था तब यहाँ घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठकें की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट के को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहाँ चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे, उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है, विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं, प्राचीर की तरफ देख कर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
0: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उनकी

संस्कृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है क्योंकि हम जानते हैं तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आजाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है, इस समय ध्वज

0: और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।
1: राष्ट्रीय ध्वज नमः।

0: the man gone! The goal! Yes!
1: और इस समय आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे, ध्वनि सुनाई दे रही है, वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर, ये Mi-17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अटखेलिया करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहां से हमारी बाई तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए। बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहां चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं, वहां ठीक सामने उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है, पंखुड़ियां है पीले रंग की, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही
2: जी। और जनेंद्र, किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए, और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये
1: जी। और राष्ट्रीय सलामी कारत अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहां से प्रस्थान करती हुई सेना के बैंड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर, जो इसमें शामिल थे, जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी, लेकिन सस्वर यहां उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखारबिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में, या ठीक सामने हमारे बाई और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में, जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ, जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का, वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर, जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र की प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
3: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी है।

पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ थे, इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया

हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं, और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को पार करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। अरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती है। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे

सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प

बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता है, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे, इस चिप के बिना दुनिया थम जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसी ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है। भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल यह हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है। और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है। और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047

7 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समुंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख

करोड़ का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में

गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपये पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपये में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरते मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है, और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है, और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है, और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे। और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफपीए के कारण हमारे श्रीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसलिए मैं चाहूंगा तो हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे

हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और अगला 1/4 हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबड़ है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं, भारत के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो,

हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है, और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मंडवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए, और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बनकर के नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग,

इन ग्लोबल स्केल हमें पाकर के रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है, तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हीलिंग इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, उसकी राह देखता रहता है, और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है, लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों ना हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो। भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए। टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए।

हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानिक स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी। हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों ने नौजवानों को नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप

28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके दे, बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, ₹2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में, ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, 1,000 करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स,

इंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती हैं ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व तो होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद, लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुर्बल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4-4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं, उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा

आखिरी सांस विषाद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है, और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज 3 लाख

तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ के पास। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले हैं। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं। और इसलिए हर घर में वातावरण बने, इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है। और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है। और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं, और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे

देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर

और लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उठते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जनसमुदाय यहां पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में। और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है, जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी, यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
2: और इस समय
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय

0: बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। ज्ञानेंद्र,
1: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए, और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है, और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो 7 अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है, और जो 7 बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का, बच्चे जब खड़े होते हैं तो सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहां पर दिखा रहे हैं तो वो दृश्य हम यहां पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
0: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी, और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हों, और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, निर्देशों का पालन करते हुए लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण हूँ, राष्ट्रहित में होने वाला सारा उत्थान हूँ, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवाण हूँ, मैं युवा हूं, मैं भारत का प्राण हूं।
1: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का, नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं, हमारी बाई तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए, वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है, और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक, जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं, और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं, अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
0: जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों

0: की उपस्थिति भी है इस समय, वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली, जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं। और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने प्रिय ये जो जनता है, इनसे भेंट करने के बाद, शासन भेंट करने के बाद, अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है, क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर, और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, GST हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षा कर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए, वहाँ थोड़ा अनुशासन बनाते हुए, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं, हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहां आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं, और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमामय मंच है, यहां से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और अब नया लक्ष्य हमारे सामने विकसित भारत का, जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
1: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि के राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई, आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है, 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं। और किसी भी गांव में, 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती हैं। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहाँ के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं, और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहाँ उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहाँ से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
0: जी बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं। वाहनों का काफिला मंथर गति से

0: वोट जो है हमारा उसकी बाईं ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है, और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल, अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व के 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूँ। जय हिंद।
1: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी। देश

0: प्रदीप पिजारी।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागरूक ग्राहक जागरूक। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।

0: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
1: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आज़ादी।
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

Cut! Bish! Cut! Shoot!

0: अब सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे।
1: शुरू।

0: समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक।
1: यह आकाशवाणी भोपाल है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह एवं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का सीधा प्रसारण हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
2: वापस जगह लो।
3: नमस्कार, आकाशवाणी परिवार की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। भोपाल के लाल परेड मैदान से मैं पुरुषोत्तम श्रीवास प्रदेश के मुख्य स्वतंत्रता समारोह का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए भोपाल के लाल परेड मैदान में हम अपनी टीम के साथ उपस्थित। अभी थोड़ी देर पहले ही इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने परेड का निरीक्षण किया और उसके बाद हर्ष फायर हुआ। आज मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम बहुत ही साफ है, बादल जरूर है लेकिन एकदम साफ और खुशनुमा माहौल इस भोपाल के लाल परेड मैदान में। भोपाल के लाल परेड मैदान की अगर बात करें तो ये नए और पुराने भोपाल के मध्य स्थित है और बहुत ही ऐतिहासिक मैदान है। ये लगभग 150 वर्ष पुराना मैदान और इसी लाल परेड मैदान पर प्रदेश का मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में आज 22 प्लाटून जो हमारे सशस्त्र बल हैं, पुलिस बल हैं, एनसीसी के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, कैंडिडेट हैं, ऐसे 22 दल इस मार्च पास्ट में शामिल हो रहे हैं और कुल 47 लोगों को इस मुख्य समारोह में अलंकरण भी, पदक अलंकरण भी प्रदान किया जाएंगे। आप सुन रहे हैं, ये जो 22 दल इस मुख्य परेड में शामिल हैं

0: ये दल मार्च पास्ट करते हुए महाराष्ट्र पुलिस, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री अजय ने बाल्मीक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नेतृत्व कर रहे हैं श्री सत्यनारायण, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुदिष्ट कुमार, सशस्त्र सीमा बल को आगे नेतृत्व करने वाले हैं श्री केशव राम पटेल कुर्मी, साथ में सीमा सुरक्षा बल श्री अपर्ण मिश्रा सीमा सुरक्षा बल का नेतृत्व कर रहे हैं इस परेड में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल श्री मनीष कुमार मेहरा के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। हाक फोर्स श्री सुमित कुमार मिश्रा, एसटीएफ श्री गजराज सिंह चौहान, महिला जो जिला बल है रेल का, उसका नेतृत्व कर रही है सुश्री सपना डोटिया, विशेष सशस्त्र बल की अगुवाई कर रहे हैं श्री अग्रज समाधिया, विशेष सशस्त्र बल उत्तरी जोन श्री चंचल रोमड़े के निर्देशन में मार्च पास्ट कर रही है, और जिला पुलिस बल श्री बलबीर सिंह खरतिया के निर्देशन में मार्च पास्ट करते हुए, और अभी हमारे ठीक सामने से ये टुकड़ियां जो है सशस्त्र बलों की टुकड़ियां हमारे ठीक सामने से मार्च पास्ट करती हुई।
1: और अब इसके बाद आईटीबीपी प्लाटून नेतृत्व कर रहे श्री सुदिष्ट कुमार सेंट्रल।
0: जिला पुलिस बल जैसा हमने बताया श्री बलवीर सिंह खरतिया इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं, और जेल विभाग श्री सौरभ सिंह के अगुवाई में अभी मार्च पास्ट कर रहा है। शासकीय रेल पुलिस, नगर सेना, एनसीसी सीनियर डिवीजन, एयर विंग, नेवल विंग, एनसीसी सीनियर विंग, एयर विंग, गाइड गर्ल्स, स्काउट्स, बॉयज, शौर्य दल, पुलिस बैंड और अश्वरोही दल, ये सारी जो टुकड़ियां हैं पुलिस बल की, सशस्त्र बलों की, ये अभी अभी हमारे सामने से मार्च पास करती है। और माननीय मुख्यमंत्री मंच पर इन बलों को सलामी दे रहे हैं। ये 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, जो कि राज्य का मुख्य समारोह है भोपाल के लाल परेड मैदान पर। अभी ये प्लाटून दल मंच के ठीक सामने से अपना परेड के साथ यहां से ठीक सामने से मंच से निकलते हुए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन दलों को सलामी देते हुए।
2: अगले क्रम में अग्रसर होता हुआ विशेष सशस्त्र बल दक्षिणी जोन का प्लाटून।
0: इस मुख्य समारोह में आज कुल 9 पुलिस विभाग के जो राष्ट्रपति का विशेष सेवा पदक है, 9 विभूतियों को ये प्रदान किया जाएगा। पुलिस विभाग सराहनीय सेवा के लिए कुल 33 पदक वितरित किए जाएंगे, और पुलिस नगर सेना और नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा के लिए जो पदक हैं वो 3 पदक आज यहाँ दिए जाएंगे, और इस तरह से कुल मिला के 33 पदक यहाँ पर आज दिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समारोह के मुख्य अतिथि इन बलों की, सुरक्षा बलों की, पुलिस बल की, एनसीसी बलों की टुकड़ियों को सलामी देते हुए, और ये बल यहाँ मार्च पास्ट करते हुए ठीक मंच के सामने से गुजरते हुए।
2: बढ़ता हुआ एनसीसी सीनियर डिवीजन, एयर विंग, नेवल विंग, बॉयज का प्लाटून नेतृत्व करता एसयूओ श्री वासुदेव मैथिल।
1: देवी सज्जनों, इसके साथ है एनसीसी सीनियर विंग, एयर विंग, नेवल विंग, गर्ल्स।
0: आज जिन लोगों को पुलिस विभाग के राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया जाएगा वो है श्री योगेश।

देशमुख, महानिदेशक लोकायुक्त मध्य प्रदेश श्री मकरंद दोईस्कर, पुलिस महानिरीक्षक बीएसएफ नई दिल्ली श्री राकेश गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उज्जैन जोन श्री संतोष कुमार सिंह, पुलिस आयुक्त इंदौर श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, उप पुलिस महानिरीक्षक भोपाल श्री शिव कुमार पटेल, निरीक्षक विशेष शाखा इंदौर श्री वाल्टर हेनरी एक्का, प्रधान आरक्षक 25वीं वाहिनी भोपाल और श्री देवेंद्र कुमार कौशल, प्रधान आरक्षक 7वीं वाहिनी भोपाल। इन 9 पुलिस अधिकारियों को आज पुलिस विभाग राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक यहां दिया जाएगा। इस पदक से इन अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। अभी मंच के सामने से सुरक्षा बलों के दल टुकड़ियां मार्च पास्ट करती होगी।

मध्य प्रदेश पुलिस का बैंड अभी मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ, सुरक्षा बलों की ये दल मंच के ठीक सामने से गुजर रहे हैं और इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इन सुरक्षा बलों को, इन सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को सलामी देते हुए मंच पर। कुल 33 लोगों को इस समारोह में आज पुलिस विभाग के सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा और पुलिस विभाग के राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक है वो 9 लोगों को दिया जाएगा, 9 अधिकारियों को इस पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये दिन आज हम सब के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन होता है। आजादी हमें जो मिली है बड़ी मुश्किलों में मिली है, हजारों कुर्बानियों के बाद आज हमें आजादी मिली है और आज उन शहीदों को नमन करने का दिन है। ये स्वतंत्रता दिवस समारोह 80वां प्रदेश का मुख्य समारोह भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित हो रहा है। निश्चित तौर पर ये आजादी हमें जब मिली है तो इस आजादी को संभाल कर रखना भी हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है और इस आजादी को बचा कर रखना हम सबका दायित्व है और जिम्मेदारी है। भोपाल में लाल परेड पर आज मध्य प्रदेश का मुख्य समारोह 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित हो रहा है। सशस्त्र बलों की ये टुकड़ियां मंच के सामने से गुजरती हुई अपना स्थान ले रही है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि पुलिस का बैंड दल भी है और अश्व दल भी सबसे पीछे चल रहा है। इस तरह से लगभग अपने अपने स्थान की ओर ये टुकड़ियां पहुंच रही हैं। कुल 22 दल इस मार्च पास्ट में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र पुलिस से लेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, हॉक फोर्स, एसटीएफ, महिला बल, विशेष सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल, जेल विभाग, शासकीय रेल पुलिस, नगर सेना, एनसीसी सीनियर डिवीजन, एयर विंग, नेवल विंग, एनसीसी सीनियर विंग, एयर विंग, नेवल विंग, गर्ल्स, गाइड गर्ल्स, स्काउट बॉयज, शौर्य दल, पुलिस बैंड और अश्वरोही दल। और अब मार्च पास्ट के बाद ये दल अपने अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच चुके हैं। राज्य का मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह

0: 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित किया जा रहा है। ये वो मैदान है जो लगभग 150 वर्ष पुराना मैदान और नए और पुराने भोपाल को जोड़ने वाला ये ऐतिहासिक मैदान भोपाल का लाल परेड मैदान। बहुत ही खुशनुमा माहौल, केसरिया सफेद और हरे रंग के गुब्बारे से सजा हुआ ये मैदान। यहाँ हम जो भी देख पा रहे हैं, सभी के चेहरों पर खुशी, गर्व और गौरव झलक रहा है। कितनी कुर्बानियों के बाद ये आजादी हमें मिली है, इस खुली हवा को महसूस करने का दिन स्वतंत्रता दिवस। और अब फिर हम देख पा रहे हैं जो सशस्त्र बलों की, पुलिस बल की, एनसीसी कैडेट्स की जो टुकड़ियां हैं वो सलामी देते हुए।
1: और अब अभ्युदय मध्य प्रदेश के शिल्पी, मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन है 80वें स्वाधीनता दिवस पर हम
0: और अब समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव का उद्बोधन।
2: आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं प्रदेश के 8.5 करोड़ नागरिकों की ओर से आजादी के सभी जननायकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। स्वाधीनता के इस संग्राम में रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई लोधी, महाराजा छत्रसाल, टंट्या मामा भील से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक मध्य प्रदेश के अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी अपनी आहुतियाँ दी है। कृतज्ञ मध्य प्रदेश आज उन सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता है। मैं मध्य प्रदेश वासियों की ओर से पुलिस और हॉक फोर्स के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर असीम शौर्य का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे ही जाबाजों की बदौलत नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने की ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल हुई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल जी ने भारतवर्ष की महिमा को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। आज़ादी का ये महोत्सव इसीलिए भी अविस्मरणीय हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का भी गायन हो रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण को केंद्र में रखते हुए भारत को आधुनिक, विकसित, आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त हुई है। उनके कुशल मार्गदर्शन में आज भारत की गणना विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में हो रही है। भाइयों और बहनों, भारत की भूमि समानता, समरसता और समभाव की भूमि है। भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक और संतों से लेकर महापुरुषों तक सभी ने समानता का संदेश दिया है। भारतीय संविधान की इसी मूल भावना के अनुरूप ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर रहे हैं। हमने एक देश

एक विधान एक प्रधान एक निशान के विचार को धरातल पर उतारकर सबके लिए एक जैसा कानून लागू कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता एक और भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त कर समरसता का संचार करेगी तो दूसरी ओर महिलाओं को अत्याचार और अन्याय से मुक्ति दिलाएगी। समरसता के संत गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती का उत्सव भी हम 18 अगस्त 2026 से प्रदेश में मनाने जा रहे हैं। वसुदेव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का मूल है। यह हर्ष का विषय है कि जून 2026 में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों एवं कृषि कार्य समूह तथा अगस्त 2026 में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों और ब्रिक्स कार्य संस्कृति के समूह की बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। इन आयोजनों ने न केवल मध्य प्रदेश को दुनिया के मानचित्र पर नई चमक दी बल्कि वैश्विक शांति और साझी संस्कृति का एक मजबूत रोड मैप प्रस्तुत किया है। लोक का तंत्र पर ही भरोसा सुशासन की पहली सीढ़ी है। जन कल्याण यदि साध्य है तो जन विश्वास और जन संवाद उसके साधन। इसी लक्ष्य के साथ सरकार ने 7 अगस्त 2026 से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान प्रारंभ किया है। जन विश्वास अभियान का लक्ष्य स्पष्ट है, ना देरी ना दूरी, समाधान से उत्थान के पवित्र भाव के साथ। इस अभियान का प्रथम चरण 8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 10% अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर पिछले वर्ष की तुलना में 9% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। त्रिवर्षीय रोलिंग बजट की अवधारणा को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान यानी गरीब युवा नारी और किसान का जो मंत्र दिया था उसमें इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर हमने ज्ञानी के रूप में उसका विस्तार दिया है। किसानों के खेत सरकार के लिए देवस्थल है और खेत से उपजा एक एक दाना प्रसाद के समान है। वर्ष 2026 को हम किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कर किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि का भू अर्जन करने पर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का किसान हितैषी निर्णय हमारी सरकार द्वारा लागू किया गया है। हमारी सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से नई कवच योजना शुरू की। ऐसी समितियां जिनकी जांच लंबित है परंतु उनके किसान भाइयों का उसमें कोई दोष नहीं, उनको नियमित किया जाकर योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। किसान कल्याण वर्ष के दौरान सरकार ने प्रदेश के हर किसान को खाद बीज की उपलब्धता, पर्याप्त बिजली, हर खेत और को सिंचाई का पानी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों का उपार्जन, चिन्हित फसलों में भावांतर की राशि का भुगतान, खेती पर संकट आने की स्थिति में बीमा और राहत राशि का वितरण, किसान सम्मान निधि का राशि का भुगतान आदि सभी लाभ दिलाने का कार्य किया गया है। हमारी सरकार ने विगत 2.5 वर्ष में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को खातों में 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया है। कई बार हमारे मन में ऐसी धारणा बन जाती है कि रोजगार मुख्य रूप से उद्योगों या नौकरियों से ही मिलता है, लेकिन मैं प्रदेश के युवाओं को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अब सिंचित खेती भी रोजगार के एक बड़े साधन के रूप में उभर रही है। मैं खेती में रुचि रखने वाले युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि वे अधिक से अधिक उद्यानिक फसलों को अपनाएं। आज मध्य प्रदेश संतरा केला अंगूर सब्जी और मसालों से लेकर मखाने, ब्लूबेरी से लेकर स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट से लेकर गेंदा और गुलाब की खेती तक नई तकनीक और नई फसलें किसानों की तकदीर को बदल रही है। राज्य सरकार किसानों को देश की मिल्क कैपिटल बनने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में दूध संकलन आज 12 लाख लीटर प्रतिदिन के प्रति स्तर पर पहुंचा है। हमारे दुग्ध उत्पादकों को 8 रुपये से अधिक प्रति

लीटर का मुनाफा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण के संकल्प से प्रेरित होकर प्रदेश में हम लखपति गोपालक दीदी योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नस्ल सुधार के साथ बछिया पालन करके प्रदेश की महिलाएं लखपति बनने का सपना साकार कर सकेगी। सरकार ने मत्स्य पालन नीति 2026 लागू की है, जिसके कारण एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ मध्यप्रदेश ने 7,430 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और बायबैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार अंतिम छोर के अंतिम खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए संकल्पित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का मैं हृदय से आभार मानता हूं, जिन्होंने आदरणीय भारत रत्न अटल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर 44,600 करोड़ की लागत से देश की पहली नदी जोड़ो केन बेतवा परियोजना की सौगात दी है। मां नर्मदा के जल से विंध्य के आंचल में हरियाली लाने का सलीमनाबाद टनल परियोजना के सफल साकार होने में हमारी सरकार ठोस कदम बढ़ा रही है। वर्ष 2028-29 तक मध्यप्रदेश की सकल सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 100 लाख हेक्टर तक ले जाने का लक्ष्य है। राज्य सरकार खेत से लेकर कारखाने तक यानी फार्म टू फैक्ट्री तक पूरी वैल्यू चेन तैयार कर रही है। मृगनयनी देश का ऐसा पहला सार्वजनिक उपक्रम बना है, जिसने प्रदेश के बुनकरों कलाकारों ODOP उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश में हैंडलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया गया है। साथियों, युवा मध्य प्रदेश के सामर्थ्य का जीवंत प्रतीक है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को निवेश और रोजगार के रूप में मनाया था, वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए वर्ष 2027 को हमने युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और कल्याण के लिए हमने इंद्रधनुषी रणनीति का निर्माण किया है, जिसके 7 महत्वपूर्ण पिलर्स है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, स्टार्टअप को सहयोग, खेल कला संस्कृति एवं शोध तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन, नेत्र क्षमता का विकास। हमने 85,000 से अधिक युवाओं की शासकीय सेवाओं में नियुक्तियां की है तथा आने वाले समय में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार अगले 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक युवाओं को ITI में तथा प्रतिवर्ष 10,000 युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में कौशल प्रशिक्षण दिलाने का काम करेंगे। हम कौशल विकास के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक अलग प्लेसमेंट सेल बनाएंगे, जो उद्योग और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करेगा। उद्यम पोर्टल पर विगत 2.5 वर्षों में 3,34,000 से अधिक विनिर्माण इकाइयाँ पंजीकृत हुई है, जिनमें 33,80,000 से ज़्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वृहद औद्योगिक इकाइयों में 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। राज्य सरकार अगले 2.5 वर्ष में उन युवाओं पर विशेष ध्यान फोकस करने जा रही है, जो किसी कारण से 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाए अथवा जिन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। हम ऐसे युवाओं के हाथ में हुनर देकर उन्हें इतना सशक्त बनाएंगे कि वे प्रदेश के लिए और देश में और विदेश में जाकर रोजगार प्राप्त कर सके। युवाओं को केंद्र में रखकर MSME स्टार्टअप का इकोसिस्टम को नई गति देने के लिए प्रदेश में मध्य प्रदेश MSME विकास नीति 2025, स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन नीति 2026 लागू की गई है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 8,000 स्टार्टअप संचालित है। इनमें से 50,000 स्टार्टअप, खास करके 50% स्टार्टअप का नेतृत्व नारी शक्ति कर रही है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के हर जिले में कम से कम 1 इनक्यूबेशन सेंटर हो। हमने आगामी 2.5 वर्ष में स्टार्टअप की संख्या 12,000 से अधिक और 100 से ज़्यादा इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में प्लग एंड प्ले मॉडल पर
को

वर्किंग स्पेस तैयार किए जाएंगे। युवा पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ड्रोन, सेमीकंडक्टर, एआई, स्पेस टेक और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में एमएसएमई की भागीदारी को अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित न्यायालय मामलों की सुनवाई त्वरित और निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय भी हमारे द्वारा किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश ऑरेंज इकोनॉमी के और भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके अंतर्गत मल्टीमीडिया, गेमिंग, कला, मीडिया, मनोरंजन जगत, संस्कृति, आध्यात्म एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियां शामिल है। राज्य सरकार ने समाज को दिशा देने वाले डिजिटल करंट कंटेंट क्रिएटर्स को विभिन्न कैटेगरी में सम्मानित करने का निर्णय किया है। सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण प्रदेश में लगभग हर क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हो रहा है। पिछले 2.5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 34 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। नई तकनीक आधारित उद्योगों में मध्य प्रदेश तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। प्रदेश के टेक सेक्टर में 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। खासकर ग्वालियर में उभरता टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, जबलपुर और शिवपुरी में आगे बढ़ता डिफेंस कॉरिडोर औद्योगिक विकास की कहानी खुद बयां कर रहा है। धार का पीएम मित्र पार्क 21,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ वस्त्र उद्योग की नई कहानी लिख रहा है। राज्य सरकार का विजन है कि प्रत्येक जिले में 80 खास करके 1 एमएसएमई पार्क हम स्थापित करने वाले हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 10 एमएसएमई क्लस्टर भी विकसित किए जाएंगे। भोपाल में इंजीनियरिंग सेक्टर हेतु 30 करोड़ रुपए की लागत से नए केंद्र की स्थापना की जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि औद्योगिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियों को भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा सर्वाधिक निवेश मित्र नीति के रूप में सराहा गया है। मध्य प्रदेश की धरती पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 पुनः भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह समिट मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी। वैसे तो मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्र को नहीं छूती है, लेकिन हमारा संकल्प 7 समंदर पार तक जाता है। हमारे उत्पाद विश्व के बाजार तक पहुँचे, इस लक्ष्य के साथ हम संकल्पित हैं कि हम प्रदेश के हर जिले का निर्यात का हब बनाएंगे। इसी के लिए सभी 55 जिलों में निर्यात कार्य योजनाएँ तैयार कर ली गई है। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है, वोकल फॉर लोकल, लोकल गोज ग्लोबल। मध्य प्रदेश इसमें अपनी पंक्ति जोड़ रहा है। गर्व से कहो, ये मध्य प्रदेश में बना है। भारत जब $1 ट्रिलियन के वास्तु निर्मात निर्यात का इतिहास रचेगा, तो मध्य प्रदेश की धड़कन भी सबसे तेज सुनाई देगी। गांवों का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश निरंतर अग्रणी हो रहा है। आवास योजना में पूर्ण आवासों की संख्या के मान से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। विगत 2.5 वर्षों में जलगंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में एक नई जल क्रांति लेकर आया है। जल संरक्षण और संवर्धन के इस मध्य प्रदेश मॉडल की देश भर में सराहना हो रही है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक महिला सशक्तिकरण के स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है। मध्य प्रदेश में दिनांक 27 अप्रैल 2026 को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण एवं परिसीमन लागू करने संबंधी नारी शक्ति वंदन संकल्प पारित किया गया है। जिस घर में बेटी मुस्कुराती है, उस घर में खुशियां आती है। जिस प्रदेश की नारी आगे बढ़ती, वही धरती नई कहानी गढ़ती है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 1,25,00,000 से अधिक बहनों को जिंदगी में सशक्त बनाने का माध्यम बन गई है। लाडली लक्ष्मी योजना

के माध्यम से 53,55,000 से अधिक बेटियां जुड़ी है। सर्व सुविधा युक्त सांदीपनि विद्यालय अब प्रदेश की पहचान बन गए हैं। इस मॉडल का अनुसरण अन्य प्रदेश भी कर रहे हैं। सांदीपनि विद्यालय के 50

में रिकॉर्ड ई प्रवेश हुए हैं। जब मैं देखता हूं कि प्रदेश में प्रत्येक 100 बेटों की तुलना में 171 बेटियां प्रवेश ले रही है, तो सच में मेरा मन आपके साथ प्रसन्नता से भर उठता है। भाइयों और बहनों, डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हमारी सरकार ने पिछले 3 माह में 1000 नए डॉक्टरों की नियुक्तियां की है और अगले 6 माह में 1000 और चिकित्सकों की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर 2026 से हम मरीजों की जांच को पेपरलेस बनाने जा रहे हैं। इससे रोगी की सभी जानकारियां डिजिटल रूप में संधारित रहेगी। मरीजों की जांच के बाद उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी की पूर्ति हो सकेगी। मरीजों को भी डॉक्टर का परामर्श लेने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए निरंतर नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए एक और चिकित्सा विश्वविद्यालय खोले जाने का निर्णय किया है। इस तरह से प्रदेश में अब 2 चिकित्सा विश्वविद्यालय हो जाएंगे। इसी तरह से हमने प्रदेश में 8 नए आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्माण प्रारंभ कर दिया है तथा नवा कार्य भी शीघ्र प्रारंभ करेंगे। लोक निर्माण से लोक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विगत 2.5 वर्ष में प्रदेश में लगभग 23,000 करोड़ की लागत से 15,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया गया है। इंदौर उज्जैन कॉरिडोर, इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जावरा उज्जैन हाईवे का निर्माण का भूमि पूजन सिमस्त को लेकर के किया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में रिंग रोड परियोजना प्रगति पर है, जिन्हें वर्ष 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। भोपाल एवं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनियोजित विकास के लिए यहां मेट्रोपॉलिटन रीजन के निर्माण का निर्णय किया गया है। कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक के अलावा पर्यावरण अनुकूल आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही है। भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर को भी इसी तर्ज पर मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन के रूप में विचार विमर्श, अध्ययन और संवाद के नए केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम बनने जा रहे हैं सिंहस्थ 2028 के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। संतों और श्रद्धालुओं की आस्था को केंद्र में रखते हुए मोक्षदायिनी छिपरा जी के निर्मल जल में स्नान और अन्य सभी सुविधाओं के विकास के लिए घाट भी बनाए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है वर्ष 2028 उज्जैन का सिमस्त आध्यात्मिक वैभव का पूरी दुनिया के लिए एक अलग प्रकार से निकल कर के आएगा और दुनिया आश्चर्य से चकित होगी। मध्य प्रदेश अब बिजली गुल के पुराने दौर से निकलकर बिजली फुल के युग में पहुंच गया है। बीते रबी मौसम में लगभग 20,000 मेगावाट और इस बार 21,000 मेगावाट से अधिक की मांग की आपूर्ति करने की हमने ऐतिहासिक तैयारियां की है। मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा का नया पावर सेंटर बन रहा है। प्रदेश की विद्युत क्षमता में 30% हिस्सा ग्रीन एनर्जी का है, जिसे हम आने वाले समय में 50% तक ले जाने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सूर्य से ऊर्जा बनाने के अपील से प्रेरणा लेकर हमने न केवल सूर्य से बल्कि पानी से भी और पानी पर भी बिजली बनाई है। प्रदेश में सोलर सह एनर्जी स्टोरेज परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है। नर्मदापुरम में देश का पहला नवकरणीय ऊर्जा उपकरण का विनिर्माण क्षेत्र मक्सी में सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और बुरैना में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रमुख शहरों में 550 से अधिक ई बसों के संचालन का निर्णय भी लिया गया है। हमने इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल की सौगात भी दी है, जो तेजी से विकसित होते इन शहरों के यातायात की दृष्टि में बड़ी भूमिका अदा करेगी। वर्षों बाद मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन की तस्वीर बदलने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना भी शीघ्र उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे धार्मिक
आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार

के प्रयासों का भी परिणाम है कि हम अब आगरा में ताजमहल में एक वर्ष में जितने पर्यटक आते हैं उससे ज़्यादा तो एक माह में उज्जैन में ही आ रहे हैं। पिछले वर्ष प्रदेश में रिकॉर्ड 14 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने पूरे प्रदेश के ओरछा से लगा करके दतिया तक और मांडव से लगा करके ओंकारेश्वर तक जो हमारे लिए उत्साहवर्धक परिणाम दिए हैं, ये हमारी अतिथि देवो भव की परंपरा का उज्जवल मान है। पर्यटकों को आकाशीय ऊंचाई देने के लिए हमने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एमपीएम श्री पर्यटन हेली सेवा की भी शुरुआत की है। प्रदेश में बीते 2 वर्ष में 10 नए हवाई मार्गों की शुरुआत हुई है। उड़ान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को अगले चरण में 5 नए और एयरपोर्ट की सौगात मिल रही है। अब तो इंदौर से अबू धाबी के लिए सीधे ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ हुई है और आने वाले समय में भोपाल से भी शारजाह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने का टारगेट लिया है। राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला सदियों तक ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और संस्कृत भाषा का सबसे प्रखर केंद्र रही है। भोजशाला में राज्य सरकार भव्य सरस्वती लोक बनाएगी तथा राजा भोज संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक आध्यात्मिक अभ्युदय के लक्ष्य के साथ 17 धार्मिक एवं सांस्कृतिक लोगों का निर्माण किया जा रहा है। एकात्म धर्म परिसर ओंकारेश्वर में 2400 करोड़ रुपए के विकास के कार्य प्रगति पर है। श्री राम वनगमन पथ श्री कृष्ण पाथे का निर्माण राज्य की आध्यात्मिक समृद्धि को वैश्विक मंच पर नई पहचान देगा और भावी पीढ़ियों को अपनी विरासत से जोड़ेगा। हमने अपने स्वर्णिम इतिहास से युवाओं को अवगत कराने के लिए सुशासन की उत्कृष्ट परंपरा के नायक सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित नाट्य का मंचन दिल्ली के लाल किले से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तक किया है। भाइयों और बहनों, राज्य सरकार तन मन धन सबसे ऊपर वन की उक्ति को चरितार्थ कर रही है। उज्जैन, सतना, छतरपुर और भोपाल में सांस्कृतिक वन स्थापित किए जा रहे हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान गांधी सागर को मिलाकर प्रदेश में 52 चीतों की आवाज़ें गूंज रही है। काजरंगा टाइगर रिजर्व से 8 जंगली भैंसों को कान्हा टाइगर रिजर्व में प्रतिस्थापित किया गया है। कुल 40 विलुप्त प्राय कछुओं को स्थापित करते हुए 63 घड़ियालों को भी उनके प्राकृतिक आवास चंबल में छोड़ा गया है। हलाली डैम में भी दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध जो हम भोपाल में छोड़ रहे हैं और गिर्गिस्तान तक उड़ान भर रहे हैं। सुशासन और सरकार का धैर्य स्थल भोपाल में पहले साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक ID जनरेट कर 100% प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। सरकार ने स्वामित्व योजना में प्राप्त भू अधिकार अभिलेख के पंजीकरण की पूरी फीस ग्रामीण भाई बहनों के बजाय स्वयं वहन करने का निर्णय किया है। विगत 2.5 वर्षों में पुलिस में बड़े पैमाने पर भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया को गति मिलने के फलस्वरूप पुलिस और पुलिसिंग दोनों की दक्षता और मनोबल में वृद्धि हुई है। साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक अत्याधुनिक साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर की स्थापना करने का निर्णय किया है। पुलिस विभाग में 2.5 वर्षों में अब तक 14,704 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। 9,751 अतिरिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। ग्लासगो में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम्स मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीतकर प्रदेश की शान बढ़ाई है। प्रदेश की क्रिकेट खिलाड़ी सुश्री क्रांति गौड़ इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान में आनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट खिलाड़ी बन गई है। मुख्यमंत्री युवा शक्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा में अब एक एक स्टेडियम बनाने का लक्ष्य हमारी सरकार द्वारा रखा गया है। शासकीय कर्मचारी सच्चे अर्थों में कर्मयोगी है। ये पिछले 10 वर्षों से पदोन्नति की राह देख रहे थे। राज्य सरकार ने इस विषय पर संवेदनशीलता से प्रयास करते हुए
पदोन्नतियों का मार्ग भी प्रशस्त किया है। और अब तक प्रदेश में

0: 63,000 से अधिक पदोन्नतियों का लाभ हमारे कर्मचारियों को दिलाया जा चुका है। हमारी सरकार गरीबों और वंचितों की सरकार है। समाज के सभी वर्गों के कल्याण के साथ ही तेज गति से विकास करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। यदि कल पराकाष्ठा तक पहुंचना है तो आज परिश्रम करना होगा। यदि कल सफल होना है तो आज संघर्ष करना होगा। यदि कल कंगूरे का कलश बनना है तो आज नींव का पत्थर बनना होगा। आइए आने वाले 20 वर्षों में विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए प्रदेश के लोक और सरकार के तंत्र दोनों कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलें। भीतर एक चिंगारी है, आगे बढ़ना जारी है। संकल्प हमारा पक्का है और सिद्धि की तैयारी है। रात अंधेरी छट गई, देखो आज़ादी उजियारी है। लहर लहर लहराए तिरंगा, देखो दुनिया सारी है। जन जन का विश्वास है ताकत, जनता प्राणों से प्यारी है। आने वाला वक्त हमारा, अब मध्य प्रदेश की बारी है। भीतर एक चिंगारी है, आगे बढ़ना जारी है। संकल्प हमारा पक्का है और सिद्धि की तैयारी है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की मेरी अपनी ओर से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।
1: धन्यवाद सर। अब पदक अलंकरण
2: भोपाल के लाल परेड मैदान से राज्य के मुख्य स्वाधीनता दिवस समारोह में समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अभी जनता के नाम संदेश दे रहे थे। एक बार फिर आप सभी श्रोताओं को 80वें स्वाधीनता दिवस की आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। और इसी के साथ मैं अपनी तकनीकी टीम के सिंह, किशन गुप्ता, रेणु टोप्पो और इस कार्यक्रम के समन्वयक मनीष गजबीय के साथ मैं पुरुषोत्तम श्रीवास आपको वापस भोपाल स्टूडियोज में लेकर चलता हूं। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह एवं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रदेश की जनता के नाम संदेश। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं।
4: FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम आज़ादी के शुभ संदेश।

0: है जहाँ स्वर्ग से सुंदर नज़ारे, जिसकी वादी में फैली है मस्त बहारें, है पग पग पर जहाँ संस्कृति का डेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। आओ आओ मिलकर करें देश वंदना, मातृभूमि की आराधना, और मांगे ये वरदान कि कर्म करें हम ऐसे जिनसे हो देश का कल्याण, बने ये भारत देश महान, आओ हम बनाएं फिर से मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। इन पंक्तियों के साथ आप सभी को पुनः स्वाधीनता के आसमान की उड़ान मुबारक। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी उज्जैन से आज के हमारे उस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है आज़ादी के शुभ संदेश। स्वतंत्रता दिवस का उल्लास चारों ओर छाया हुआ है। आकाशवाणी उज्जैन के श्रोताओं और शहरवासियों के दिलों में आज़ादी के इस महोत्सव का जो जज्बा हिलोरे ले रहा है वह सचमुच बेमिसाल है, और इसका सबूत है भारी संख्या में हमें प्राप्त हुए आपके शुभकामना संदेश। तो आइए जानते हैं ये संदेश हमें किसने भेजे हैं। पहला संदेश हमें प्राप्त हुआ है श्री राजेश भट्ट, राज्य सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश, पूर्व कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आइए सुनते हैं।
1: स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आकाशवाणी उज्जैन के सभी श्रोताओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत मंगल कामनाएं। आइए आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि हम राष्ट्र की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़

0: बढ़ाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
1: श्रोताओं, और इसके साथ ही हमें शुभकामना संदेश प्राप्त हुए हैं शब्द प्रवाह साहित्य मंच और शाश्वत सृजन मासिक की ओर से। उज्जैन दुग्ध संघ सांची परिवार ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। महाकाल ज्योतिष केंद्र ज्योतिषाचार्य पंडित सतीश नागर, जिनका फोन नंबर है 9826773135, पद्मावती कॉलोनी उज्जैन, इन्होंने भी हमें शुभकामना संदेश भेजा है। और सनातन संस्कार समूह की ओर से भी स्वाधीनता के शुभकामना संदेश हमें प्राप्त हुए हैं और इनका कहना है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए वीर शहीदों के अमर बलिदान को नमन करें। एक सशक्त, समृद्ध और प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण का हम सब मिलकर संकल्प लें। जय हिंद। और आइए सुनते हैं देशभक्ति की अलख जगाता वो गीत जो हम सभी की रूह में बसा है।

श्रोताओं, अगला जो हमें शुभकामना संदेश भेजा है वो है फ्यूचर विजन कॉलेज उज्जैन से। साथ ही रजवाड़ी अवंती कलेक्शन वीडी क्लॉथ मार्केट उज्जैन से भी हमें शुभकामना संदेश प्राप्त हुआ है। राजेंद्र सिंह चौहान, सीमा चौहान, वैशाली चौहान और युवराज डोडिया, इन्होंने भी उज्जैन से हमें शुभकामना संदेश भेजे हैं। और ब्राइट करियर एकेडमी स्कूल अक्षय श्रीवास्तव जी ने भी हमें स्वाधीनता के अवसर पर शुभकामना संदेश भेजा है। और इन सभी ने हमें संदेश भेजा है कि आप सभी को स्वाधीनता दिवस की ढेरों बधाइयाँ। ये आज़ादी अनगिनत संघर्षों का परिणाम है। आइए देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रण लें। साथ ही कुछ अन्य शुभकामना संदेश

0: भी हैं जो हम आपको सुनवाते हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं निधि तिवारी, साइकोलॉजिस्ट हूँ। उज्जैन आकाशवाणी के माध्यम से भारतीय सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई।
2: नमस्कार, मैं प्रीति साठे, स्वस्तिक हैंडीक्राफ्ट वुमन वेलफेयर एसोसिएशन समिति की अध्यक्ष, आकाशवाणी उज्जैन के सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं।
3: नमस्कार, मैं शरद बजाज, फाउंडर ऑफ श्री एमएसआरबी मसाले, आकाशवाणी उज्जैन के सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद।
0: इन शुभकामनाओं संदेशों के साथ ही आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
1: श्रोताओं, अगला शुभकामना संदेश जो हमें मिला है वह है ग्राहक सेवा केंद्र ब्यावरा से आशीष चौरसिया और चंचल चौरसिया जी ने भेजा है। साथ ही रवि श्रीवास्तव, प्राची श्रीवास्तव जी ने भोपाल से हमें संदेश भेजा है। संस्कृति संवाद लोकभाषा की राष्ट्रीय पत्रिका और पल्स केमिकल प्राइवेट लिमिटेड आनंद गुजरात की ओर से भी हमें शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं। और डॉक्टर शंकर सिंह भाटी, जया भाटी जी ने भी समस्त देश को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। और इन सब ने ये कहा है कि आज़ादी के इस महापर्व पर आपको सप्रेम शुभकामनाएं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आइए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वर्णिम भारत बनाएं। और शुभकामना संदेश जो हमें और भी प्राप्त हुए हैं वो आइए आपको सुनवाते हैं।
2: नमस्कार, मेरा नाम नीरज थोरात है। मैं डायरेक्टर स्पर्श वेलफेयर सोसाइटी और मॉडरेटर उज्जैन वाले फेसबुक ग्रुप आकाशवाणी उज्जैन के समस्त श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
3: मैं सुरेश चंद्र शाह, सेवानिवृत्त तबला शिक्षक, आकाशवाणी के माध्यम से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। जय हिंद।
1: तो चलिए श्रोताओं, फिर से बढ़ते हैं संगीत की ओर और सुनते हैं देशभक्ति से ओतप्रोत ये गीत।

0: श्रोताओं, हर घर तिरंगा अभियान के चलते जगह जगह घरों इमारतों पर शान से लहराते हमारे राष्ट्रीय ध्वज को दिल से सलाम है। तीन रंग का वस्त्र नहीं, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिल का अभिमान है। यही गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। बढ़ते हैं आगे अन्य शुभकामना संदेशों की ओर जो हमें प्राप्त हुए हैं। राधा श्रीवास्तव जी से, GPS बेरछा मंडी से, अभिषेक उपाध्याय और मुस्कान उपाध्याय की ओर से, विकास निगम, पूजा निगम, आद्या निगम, डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस AMNS इंडिया राउटी रतलाम से, और सोनी क्लिनिक विवेकानंद कॉलोनी से डॉक्टर सुरेश सोनी, डॉक्टर मधु सोनी, ऐश्वर्या सोनी बिरछा मंडी से, और रामचंद्र मेडिकल डग बड़ोद वैभव श्रीवास्तव और गौरी श्रीवास्तव का। इन्होंने ये कहा है हमसे कि स्वतंत्रता दिवस की आपको अनंत शुभकामनाएं, तिरंगे की छाँव में हमारा देश यूं ही विकास के पथ पर अग्रसर रहे, आपसी प्रेम और भाईचारे से देश का गौरव बढ़ाएं। आइए साथ ही अन्य शुभकामना संदेश जो हमें प्राप्त हुए वो भी आपको सुनवाते हैं।
1: मैं नीरज राठौड़, एजुकेटर और करियर काउंसलर, आकाशवाणी उज्जैन के माध्यम से सभी शहर और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
2: जय हिंद साथियों, मैं सावन बजाज, अध्यक्ष जिला जिम्नास्टिक एसोसिएशन उज्जैन, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय।
3: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
4: तो फिर सोच कि तेरी

0: सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
1: क्या, कैसे?
0: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
1: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
0: mmsky.mp.gov.in पर। mmsky, सीखो भी कमाओ भी।
2: श्रोताओं, FM 102.5 MHz से आकाशवाणी उज्जैन से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज़ादी के शुभ संदेश और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी रश्मि बजाज। अगले संदेश जो हमें प्राप्त हुए हैं वो हैं प्रारब्ध जैन, सेतु पवनपुत्र जिम एंड फिटनेस हब, वेदनगर नानाखेड़ा उज्जैन की ओर से, कोमल आज़ाद कॉमिक कैफ़े और रेस्टोरेंट रूफटॉप कैफ़े, विद्यापति नगर उज्जैन, सिसोदिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर ढाबला हरदू से महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने, और कन्हैयालाल परमार कल्ला पिपलिया जनपद सदस्य महितपुर स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास सभापति, इन्होंने भी हमें शुभकामना भेजी हैं। गुरुकृपा मेडिकल स्टोर ढाबला हरदू से धन सिंह पवार ने भी शुभकामनाएँ प्रेषित की हैं और इन सभी ने हमें शुभकामनाएँ दी हैं कि स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मंगल कामनाएँ, देश प्रेम की भावना हमारे दिलों में हमेशा प्रज्वलित रहे, आइए मिलकर एक स्वच्छ स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करें। अन्य शुभकामना संदेश जो प्राप्त हुए आइए आपको सुनवाते हैं।
3: मैं उज्जैन जिला के सेंट रजिस्ट्रेशन का अध्यक्ष राधेश्याम त्रिपाठी आकाशवाणी उज्जैन के माध्यम से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मेरा राष्ट्र दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे, यह मैं अपेक्षा करता हूँ राष्ट्र के प्रति। जय श्री राम।
4: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों की पसंद रोजगार विद अंकित परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: और अब समय है कार्यक्रम के अगले गीत का।

आइए बढ़ते हैं अगली शुभकामनाओं की ओर। पल्स केमिकल प्राइवेट लिमिटेड आनंद गुजरात ने हमें भेजे हैं संदेश, और निर्मल इंटरनेशनल स्कूल बिछड़ौत के अध्यक्ष वीर सिंह राणा, डायरेक्टर प्राचार्य मैनेजमेंट एवं शिक्षकों की ओर से शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं। सुरेश राठौर, श्री गंगा मेडिकोस, इंदिरा नगर, उज्जैन की ओर से प्राप्त हुई हैं शुभकामनाएं। मनोज चौरसिया, मनोज ट्रेडर्स, इंदिरा नगर, उज्जैन की ओर से भी

0: शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं। और दीपक चौहान, शिवांजलि गेस्ट हाउस हीरा मिल आनंद नगर ने भी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। इन सभी की शुभकामनाएं हैं कि आज़ादी के इस जश्न पर आप सभी को शुभकामनाएं, शहीदों की चिताओं पर लगने वाले मेलों की यादें हमें देशहित में कार्य करने की प्रेरणा देती रहें, वंदे मातरम। और अन्य शुभकामना संदेश आइए आपको सुनवाते हैं।
1: जिला अध्यक्ष उज्जैन जिला माहेश्वरी महिला संगठन, आकाशवाणी उज्जैन के सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं।
2: नमस्कार, उमेश भटाना, निदेशक कला स्तुति संगीत अकादमी की ओर से समस्त देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां।
0: आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ बीएसएनएल लाया है मोबाइल ग्राहकों के लिए ₹1 फ्रीडम प्लान का प्यार। फाइबर के साथ तेज रफ्तार के लिए ₹1111 का बीएसएनएल फाइबर फ्रीडम प्लान। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भारत नेट का 259 का प्लान। मनोरंजन के लिए बीएसएनएल एंटरटेनमेंट टीवी का साथ, और जहां जमीन का नेटवर्क भी साथ ना दे, बीएसएनएल सैटेलाइट फोन सर्विसेज उम्मीद की आवाज बने। जय हिंद, जय भारत।
1: श्रोताओं, वतन की मिट्टी से ही पहचान हमारी है, भारत माँ के चरणों में अर्पित श्रद्धा हमारी है। तिरंगा यूं ही आसमान में लहराता रहे, बस इतनी सी इस दिल में चाहत हमारी है। आइए बढ़ते हैं अगले शुभकामना संदेशों की ओर जो हमें भेजे हैं यक्षेंद्र, सोनू भैया, शिवांजलि केटर्स इंदिरा नगर उज्जैन से, और प्रीति अवधेश भट्ट उज्जैन से, इन्होंने भी हमें शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। श्वेता शेखर व्यास और शांति भगवती वल्लभ दवे, इन्होंने भी शुभकामनाएं हमें भेजी हैं। ईशा आदित्य उपाध्याय श्री बालाजी मार्केटिंग, इनकी ओर से भी हमें शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं, और इन सभी में हमें शुभकामनाओं में कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ये राष्ट्रीय पर्व हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है। आइए भारत माता की सेवा में अपना हर पल समर्पित करने का सच्चा संकल्प लें। साथ ही अन्य शुभकामना संदेश आइए आपको सुनवाते हैं।
2: मैं डॉक्टर चित्रा जैन, प्राचार्य शासकीय आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहन नगर उज्जैन, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं।
3: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों की पसंद रोजगार विद अंकित परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: इन शुभकामनाओं के साथ ही आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
2: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
2: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, स्वागत है आपका पुनः उस कार्यक्रम में।

0: जिसका नाम है आजादी के शुभ संदेश। ये है आकाशवाणी उज्जैन केंद्र FM 102.5 MHz पर और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी रश्मि बजाज। और अब हम बढ़ते हैं अगले शुभकामना संदेशों की ओर जो हमें भेजे हैं सौम्या कल्याणम होटल शिव कल्याणम उज्जैन से। सनातन संस्कार समूह की ओर से हमें शुभकामना संदेश प्राप्त हुए हैं और इब्रार कुरेशी जी ने भी सदर बैतूल से हमें शुभकामना संदेश भेजे हैं। साथ ही अन्य शुभकामना संदेश आइए आपको सुनवाते हैं।
1: मैं सुशील श्रीवास पार्षद एवं अध्यक्ष जोन क्रमांक 3 नगर पालिक निगम उज्जैन अपनी ओर से एवं अपने परिवार की ओर से समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को 80वें स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भारत माता की जय, जय हिंद।
0: दोस्तों आज की सुबह कोई आम सुबह नहीं है बल्कि आज़ाद फिजाओं में सांस लेते एक स्वाभिमानी राष्ट्र के गौरव की सुबह है। आज 15 अगस्त है वो दिन जब इतिहास के पन्नों पर हमारे शूरवीरों ने अपने लहू से आज़ादी की इबारत लिखी थी। आज हम उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को पूरे दिल से नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जवानी फांसी के फंदों और जेल की कालकोठरियों में गुजार दी ताकि हम और आप इस खुली हवा में आज़ादी का जश्न मना सकें। उनकी शहादत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वो अमर नींव है जिस पर हमारे आज के सशक्त भारत की भव्य इमारत खड़ी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोताओं, अगला शुभकामना संदेश हमें भेजा है इंदौर उज्जैन रोड पर शानदार व मुनाफे वाले प्लॉट्स उपलब्ध, कॉल करें के शुक्ला 9977703757। इनकी ओर से हमें शुभकामना संदेश प्राप्त हुआ है। साथ ही डॉक्टर प्रकाश कड़ोतिया प्राचार्य शासकीय संगीत महाविद्यालय इंदौर जो कि उज्जैन निवासी हैं, इनकी ओर से भी हमें शुभकामना संदेश प्राप्त हुआ है। और ये संदेश में हमें कहना चाहते हैं कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की आत्मीय बधाइयाँ। स्वतंत्रता का ये सुनहरा सवेरा हमारे जीवन में नई उमंग लेकर आए, देश के विकास में हम सभी भागीदार बने, जय हिंद। चलिए आपको एक शुभकामना संदेश और सुनवाते हैं।
1: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को यूनिसेक्स हेयर स्टूडियो की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जय हिंद।
0: और इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: तो श्रोताओं, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली शुभकामनाओं की ओर जो हमें भेजे हैं अक्षत सक्सेना, शिवाक्ष फोटोग्राफी एंड ट्रेनिंग सेंटर मंडी से, राजेंद्र सिंह चौहान, सीमा चौहान और वैशाली चौहान ने, साथ ही साई सनातन इंटरनेशनल स्कूल प्रशांति धाम इंदौर रोड उज्जैन से भी हमें शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं। और ये सभी अपनी शुभकामनाओं में हमसे कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता के इस अमृत पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, आज़ादी की खुली हवा में सांस लेते हुए हम उन महान बलिदानों को कभी न भूलें, राष्ट्र निर्माण में सदैव तत्पर रहें। और साथ ही एक और शुभकामना संदेश आइए सुनते हैं।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों की पसंद रोजगार विद अंकित परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: श्रोताओं, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: श्रोताओं, आइए कुछ शुभकामना संदेश और आपको सुनवाते हैं।
1: नमस्कार, उमेश भट्ट आनंद, निदेशक कला स्तुति संगीत अकादमी की ओर से समस्त देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां।
2: मोनालिसा ब्यूटी सलोन फ्रीगंज उज्जैन की ओर से आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: इसी के साथ आज का ये विशेष कार्यक्रम आज़ादी के शुभ संदेश अब यहीं संपन्न होता है। आप सभी को पुनः आकाशवाणी उज्जैन की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका प्यार और साथ हमेशा हमारे साथ यूं ही बना रहे, इसी आशा के साथ मैं रश्मि बजाज अब आपसे विदा लेती हूं। देशभक्ति की लौ दिल में जलाए रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब आपको ले चलते हैं विविध भारती मुंबई की ओर, जहां से आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रस्तुत है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: प्राचीन काल से हिंदुस्तान में भाषा, धर्म, आहार विहार और भौगोलिक परिस्थिति में विविधता पाई जाती है। ब्रिटिश काल में भी राजकाज की सहूलियत को देखते हुए प्रांत रचना सीमित संख्या में थी। फिर भी सार्वजनिक रूप से आम जीवन में बोली जाने वाली 15 से अधिक ऐसी भाषाएं तो थीं जिनकी अपनी अधिकृत लिपि थी।
1: वंदे मातरम, इस रचना की और उसके रचयिता की बात करें तो मातृभाषा बांग्ला और अंग्रेजी के ज्ञाता तो वे थे ही। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय गीरवाण भाषा संस्कृत के भी अध्येता थे। संस्कृत साहित्य का प्रभाव उनके साहित्य पर था। वंदे मातरम गीत का निर्माण एक सहज

0: उमंग से हुआ था, इसलिए उसे भाषा के बंधन स्वयं बंकिम चंद्र भी नहीं लगा सके। यह गीत बांग्ला और संस्कृत भाषा का मिश्रण है, पर इसमें हर वाक्य में एक शब्द बांग्ला और एक शब्द संस्कृत ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ वाक्य पूरे पूरे बांग्ला हैं। ऐसा होने पर भी इसकी प्रभावकारिता कहीं भी खंडित नहीं होती। वंदे मातरम का पहला अनुवाद बंकिम चंद्र जी के जीवन काल में ही हुआ और यह अनुवाद संस्कृत में किया गया था। विजयलाल दत्त द्वारा रचित जागो मां आमार इस कविता में शुरुआत की कुछ पंक्तियों को जोड़कर वंदे मातरम का संस्कृत अनुवाद लेकर और फिर अंत में उन्होंने वंदे मातरम के महत्व को बताने वाली पंक्तियां जोड़ी। मूल गीत में जो पंक्तियां या शब्द बांग्ला के हैं, केवल उन्हीं पंक्तियों को संस्कृत में बदला गया था। उदाहरण के लिए, के बोले मा तुमी अबले, इसकी जगह कोह भिदंते मातर बले। उसी प्रकार बाहुते तुमी मा शक्ति के स्थान पर भुजयो स्तबम मसी शक्ति चेतसी त्वमसी भक्ति ही सृजामिते प्रतिमूर्ति ही मंदिरे मंदिरे, ऐसी पंक्तियां आई हैं। ऋषि बंकिम चंद्र द्वारा लिखे गए वंदे मातरम गीत में अधिकांश शब्द रचना संस्कृत में ही है, इसलिए इस अनुवाद में सभी पंक्तियां संस्कृत भाषा में रूपांतरित हो गई हैं और इसीलिए इसे पूरी तरह से स्वतंत्र पहला अनुवाद नहीं माना जा सकता।
1: ১৮৭৫ में ऋषि बंकिम चंद्र जी ने बंगाली मिश्रित संस्कृत में वंदे मातरम की रचना की, लेकिन उसमें निहित आशय के कारण मात्र बंगाल तक सीमित न रहकर वो काव्य पूरे देश का गीत बन गया। मूल गीत तो लोकप्रिय हुआ ही, परंतु अनेक भाषाओं के कवियों ने ये महसूस किया कि ये गीत उनकी अपनी प्रांतीय भाषा बोलने वाले सामान्य जनों तक पहुंचना चाहिए। अतएव उन कवियों ने अपनी अपनी भाषा में इसका अनुवाद भी किया।
2: गुजराती, तेलुगु और उर्दू जैसी भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी 9 से अधिक अनुवाद हुए। हर भाषा की अपनी विशेषता, अपना निरालापन होने पर भी बंकिम बाबू के मूल गीत की मधुरता बनाए रखने का प्रयास सभी ने किया।
3: आश्चर्य की बात यह है कि वंदे मातरम का पहला अनुवाद 1888 में यानी बंकिम चंद्र जी के जीवन काल में ही श्री अरविंद के दादा राज नारायण बसु ने अंग्रेजी में किया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसी अनुवाद के कारण वंदे मातरम के भाव पर शंका जताई गई। अंग्रेजों ने वंदे मातरम का संज्ञान इसी अंग्रेजी अनुवाद के कारण लिया। बाद में लगभग 17-18 साल बाद राज नारायण बसु के ही नाती क्रांतिकारी अरविंद घोष ने वंदे मातरम के 2 अंग्रेजी अनुवाद किए।
4: मदर, I bow to thee।
0: उसके बाद 6 और अनुवाद प्रकाशित हुए। उनमें से एक अनुवाद बंगाल के विभाजन की पृष्ठभूमि में 11 दिसंबर 1905 के इंडियन मिरर के अंक में प्रकाशित हुआ। उस पर कवि का नाम नहीं था। एक और अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट्समैन के 1905 के अंक में प्रकाशित हुआ और उस पर ट्रांसलेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल काउंसिल इन अमेरिका ऐसा छपा था।
3: इन अंग्रेजी अनुवादों की एक विशेष बात यह है कि इनमें से एक अनुवाद ब्रिटिश अधिकारी W.H.L. लेफ्ट ने किया था, जिसमें विंध्य, दुर्गा, लक्ष्मी और वाणी इन शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग उल्लेखनीय है।

0: सबसे अधिक अनुवाद अंग्रेजी में हुए। हिंदी साहित्यकारों पर भी वंदे मातरम का प्रभाव पड़ा। प्रसिद्ध हिंदी कवि मदनलाल वर्मा कांत और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सुंदर अनुवाद किए हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी वंदे मातरम के कोटि कोटि कंठ वाले छंद का अनुवाद सुंदर हिंदी में करते हैं।
1: 30 कोटि लोगों की कलकल सुनी जहां पर जाती है, उसके दुगुन खड्ग धारा की द्युति विकास जहां पाती है, तिस पर भी तू अबला है, ये बात व्यथा उपजाती है। हे तारिणी, हे बहुबल धारिणी, रिपु तू काट गिराती है, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: उर्दू भाषा में भी वंदे मातरम के 3 अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनमें से पहला काजी अब्दुल गफ्फार द्वारा किया गया अनुवाद दैनिक पयाम के उर्दू अंक में 7 अक्टूबर 1937 को प्रकाशित हुआ। प्रसिद्ध उर्दू शायर सीमाब अकबराबादी तथा कवि भानु ने भी उर्दू में अनुवाद किए हैं। उनमें से भानु द्वारा किया गया अनुवाद ये रहा।

तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। विख्यात कवि सुब्रमण्यम भारती ने दक्षिण में वंदे मातरम शब्दों का प्रचार अपने काव्य और कार्य से किया। भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मी ने भारती द्वारा किए गए अनुवाद को अपने मधुर स्वरों से सजाया था।

संध्या दीक्षित के कन्नड़ अनुवाद में मूल वंदे मातरम की नाद मेहता बहुत सुंदर ढंग से प्रकट हुई है। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म का अनुवाद करते हुए वे लिखती हैं, नी विद्ये नी ने धर्म, नम हृदय दी नी ने मर्म।

बड़ौदा के सावरकर अध्येता और युवा लेखक चिरायु पंडित ने मूल वंदे मातरम के समवृत्त में ही गुजराती अनुवाद अभी हाल ही में किया है। गायक जयदीप बेहरे, संगीतकार निखिल पालकर।

0: अंग्रेजी अनुवाद के बाद सबसे अधिक यानी 5 अनुवाद मराठी भाषा में हुए हैं। विष्णु रंगाजी शेल्डेकर, जो गोवा के प्रसिद्ध कवि थे, उनके द्वारा किया गया अनुवाद संभवतः 1910 से पहले का है। वहीं पर वंदे मातरम के 125वें वर्ष के अवसर पर डॉक्टर प्रदीप आगाशे ने मुक्त छंद में वंदे मातरम का अनुवाद किया।
1: वंदितो माते तुलामी मातृभूमि आमुची, वर्णिता शब्द ही सुचेना ही अवस्था आमुची, पाणी आणि धान्य विपुल ही देसी सततची तू आम्हा, वायु लहरी शीतल अशा मलय शिखरा वरुणी ज्या, विपुल शेती शीत लहरी यामुळे श्यामल अशी, वंदितो माते तुलामी मातृभूमि आमुची।

वंदे मातरम के इन अनुवादों के अलावा वंदे मातरम से प्रेरणा लेकर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, कविवर बीनी माधव, क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद के पुत्र कवि इंद्र, सरला देवी चौधरानी, मराठी में ग दी माडगुलकर, गुजराती कवि नानालाल और महाकवि वल्लतोल नारायण मेनन ने भी वंदे मातरम से प्रेरित होकर मातृ वंदना करने वाले गीत लिखे हैं। उनमें से मलयाली कवि महाकवि वल्लतोल का ये

और अब वंदे मातरम का वो हिंदी अनुवाद संवित स्वरों में प्रस्तुत है जो रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष के इस विशेष संस्करण के लिए रचा गया है। अनुवादक कवि जयंत पात्रिकर, संगीतकार अजय पराड़।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम के विषय में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा है,
1: वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक गान नथी आ शान बान अने आन आपणी आजादीना महायज्ञनी आहुति आ राष्ट्रभक्तिनी आहले का।

आपनो आजादीनी ऊर्जानो धबकार आपनो विकासनो आ राजमार्ग छे संकल्पित आ राष्ट्र जीवननो महामार्ग छे प्रजा जीवननी प्रत्येक प्रत्येक प्रभातनी प्रत्येक प्रबुद्ध चेतनानो स्वर आछे वंदे मातरम आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय मन में नहीं कोई भरम वेदों से भी वंदनीय है जय घोष वंदे मातरम वंदन है वंदे मातरम जय घोष वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर, ममता सिंह, मंदाकिनी जोशी और यूनुस खान। अंग्रेजी, उर्दू और तमिल अनुवादों के रिकॉर्डिंग स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित जन गर्जय इस एल्बम से साभार। हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ अनुवादों के संगीतकार अजय पराड़, हिंदी अनुवाद के गायक भाग्यश्री अभ्यंकर, मानसी दीक्षित, ऋषिकेश केलकर और धनंजय पवार, तेलुगु अनुवाद गायिका अपर्णा केलकर, कन्नड़ अनुवाद गायिका अनुष्का आपटे, तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल और समृद्धि नाइक, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता से अधिक विकसित, समृद्ध और उज्जवल पश्चिम बंगाल के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। श्री अधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए

0: न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेबनान और इसराइल में इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिणी लेबनान के इसराइली सैनिकों को लौट जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरबिंदो की जयंती पर स्मरण किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अरबिंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रवादी कवि और विचारक बताया। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान ने देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। गाल में श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विविध भारती परिवार की ओर से हमारे सभी सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: शंकर जयकिशन की तर्ज थी, शैलेंद्र का लिखा गीत आपने सुना, मुकेश की आवाज में फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: तो इन पुजारी फिल्म का ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
1: बैठ जा, खड़ी हो जा,
2: खड़ी हो गई।
3: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
4: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
3: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
4: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
3: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सेहतनामा।

आप सुन रहे थे शहीद फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफी और साथियों का गाया, प्रेम धवन की रचना थी और संगीत भी था प्रेम धवन का ही। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ख्याल के।
1: जागृति फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में प्रदीप की रचना थी श्रोताओ, और हेमंत कुमार की तर्ज थी ये।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
3: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
3: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
3: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गंगा की सौगंध इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आरती मुखर्जी, मोहम्मद रफी, अमित कुमार और साथियों की आवाजों में अनजान के बोल थे। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। श्रोताओं, यादों की महफिल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी

0: एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा सुरीला सफर। यह कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

विविध भारती से लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में हम अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोता, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश सलाम कर रहा है श्रोताओं, उन सभी वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने देश को सर्वोपरि रखते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। मां भारती को परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए जाने कितनी ही यातनाएं सही, उन्हीं वीरों का गुणगान कर रही है आज चारों दिशाएं। ये स्वर्णिम दिवस हमारे शहीदों और स्वतंत्रता के दीवानों की याद से आज जगमगा रहा है। केसरिया बाने से सजे तिरंगे की शान चौकत को हम निहार रहे हैं और सलाम कर रहे हैं माँ भारती के उन होनहारों को, उन फौजी साथियों को जो आज सरहद पर डटे हैं, और साथ ही हम सलाम करते हैं उन कवियों को जिन्होंने ऐसे गीत लिखे, ऐसी कविताएं लिखी जो स्वतंत्रता सेनानियों में देशभक्ति और वीरता का जज्बा जगा देती थी, एक ओज भर देती थी कह सकते हैं। ये आजादी के रंग का गुलाल है साथियों जो आज सबके मुख पर है। यकीन न हो तो देख लीजिए, इसी गुलाल में सराबोर सुरीला सफर के गीत आ गए हैं आपके रेडियो सेट पर। तो आज की इबारत जो इस खास दिन को लेकर हमने लिखी है, आपकी नजर करते हैं। आज मातृभूमि के श्वेत बादलों में केसरिया बाना पहने विजयी विश्व तिरंगा अपनी पूरी आन बान और शान के साथ लहरा रहा है। सलाम इस जानशीन तिरंगे को, आज हवाओं में बसंती बयार है। ओढ़ कर धानी चुनर सजा कर आजादी की मेहंदी जैसे दुल्हन चली, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु का शंखनाद, ऋषियों के कमंडल जल से सिंचित आर्यावर्त हमारा प्यारा वतन हम सबकी शान है। वंदे मातरम की गूंज से आह्लादित चारों दिशाएं वंदन करती हैं उन वीर सपूतों का जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये लहू आज गुलाल बनकर आसमां पे छाया है क्योंकि वीर कभी मरते नहीं, वो खुश हैं हमारी मुस्कुराहटों में जैसे पैगाम देते हों कि आजादी तूफान में कश्ती का सफर है। याद रहे जान तन रहे न रहे, हाथ से तिरंगा न छूटे याद रहे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वाले

दोनों का यही बाकी निशान होगा। वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

हंसराज बहेल की तर्ज थी राजेंद्र कृष्ण की ये रचना। आपने सुनी सिकंदर आजम फिल्म से मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। श्रोताओ, इस गीत में आपने देखा होगा कि दो कलाकार नजर आते हैं रथ पर। ये कौन से कलाकार हैं आपको बताना है। स्वतंत्रता दिवस की हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं, देश को भी, हमें भी, और हम भी यहां से तमाम शुभकामनाएं आपको प्रेषित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की यादों की अगर बात करें श्रोताओ, तो जिनसे दिल कभी खाली नहीं होता ऐसा कह सकते हैं, आज मौका है, कह दीजिए अपने दिल की बात। तिरंगे की यादों, स्वतंत्रता दिवस की यादों में आपके दिलों में क्या क्या खजाना आज छुपा है ये आप बता दीजिए, और बचपन की बातें भी, स्कूल की बातें भी जरूर बताइएगा, और साथ ही आजादी के जो मायने हैं वो आपके लिए क्या हैं ये आपको बताना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, 15 अगस्त वो दिन है जब सदियों की गुलामी के बाद हमारे शहीदों के बलिदान से तिरंगा आजादी की सांस ले पाया था। आज हम खुली हवा में जी रहे हैं, वो किसी की आंखों का सपना और किसी माँ के बेटे की कुर्बानी। आजादी सिर्फ छुट्टी नहीं, एक जिम्मेदारी है देश को ईमानदारी, एकता और मेहनत से आगे बढ़ाने की। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर झंडे को हम सलाम करते हैं और साथ ही साथ मान रखते हैं उन सभी शहीदों का और हर कर्म में जिन्हें हमें जिंदा रखना है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज हमारी हवाओं में जो स्वतंत्रता है वो हमारे वीरों के बलिदान की सुगंध है। जब चारों ओर दिशाओं से वंदे मातरम की गूंज उठती है तो ऐसा लगता है मानो साक्षात प्रकृति उन वीर सपूतों की आरती उतार रही है। वंदे मातरम की तान लिए चारों दिशाएं डोल रही हैं, वीर सपूतों के शौर्य की गाथाएं खुद बोल रही हैं। मातृभूमि की रक्षा जिन्होंने शीश अपने कटाए, आज झुककर शीश वतन उनके वंदन को आए हैं।

बंकिम चंद्र की ये रचना आपने सुनी हेमंत कुमार की तर्ज थी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, आनंद मठ फिल्म का ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने पिछले सवाल के जवाब में लिखा है कि प्रेमनाथ और प्रेम चोपड़ा नजर आते हैं रथ पर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने बताया है। और इस गीत को किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया, जो अभी हमने आपको आनंद मठ फिल्म का सुनवाया। और आनंद मठ जो है श्रोताओं, ये एक रचना है, इस बारे में अगर आप हमें बताएं तो क्या ही बात है कि किसने लिखी। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि स्वतंत्रता, एकता और गौरव के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी पहचान है, वीरों के बलिदानों से मिली आजादी हम सब के लिए अनमोल वरदान है। एक और श्रोता ने लिखा है सुमधुर सुरीले गीतों और जो आज संदेश हैं वो पढ़े जाएंगे। और एक और श्रोता ने एक कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि दुल्हन चली पहन चली और जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। तो ये सारे गीत ये लिखा है इन्होंने। एक और श्रोता ने लिखा है कि देश की आजादी के लिए वीर शहीदों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उनके बलिदान को हम शत शत नमन करते हैं। हमारा भी कर्तव्य है देश के हित के लिए कार्य और ईमानदारी से हमें करना चाहिए। आपसी भाईचारा प्रेम सौहार्दपूर्ण व्यवहार से ही हम शांतिपूर्वक जी सकेंगे। और कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि रेगिस्तान की सरहदों पर मुस्तैदी से तैनात चौकस दृष्टि लिए हुए हमारे वीर जवान चट्टान की तरह अडिग रहते हैं। उन्हीं के कारण हम सभी भारतवासी सुरक्षित अपने घरों में चैन की नींद ले पाते हैं। आजादी के लिए हमारे कई जवानों ने देश की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे, हमारा इस गीत को इन्होंने याद किया है। और आपको श्रोताओं, जो बचपन की यादें हैं वो हमसे आज साझा करनी हैं। और साथ ही साथ आज स्वतंत्रता दिवस किस खास अंदाज में आपने मनाया, ये भी आप हमसे जरूर बताएं। ये किस फिल्म का गीत है और संगीतकार कौन है?

हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है, शहीद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी मन्ना डे और राजेंद्र भाटिया की आवाजें थी, यानी तीन स्वर थे श्रोताओं और तीन कलाकार भी थे इस फिल्म में जो आपको बताने हैं। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप जरूर बताएं। और एक श्रोता लिखते हैं कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा देश मेरा है, मेरा स्वाभिमान सम्मान है, आज भी सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। देश के सम्मान को आंच लगे ऐसा होने न दें, मान सम्मान मिला है उसे टिकाना है। देश भक्ति गीत बहुत हैं लेकिन सुंदर हमारा वंदे मातरम है, हमारी धरोहर है भारत माता का, हमें रक्षण करना है, माँ है तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे, जय हो, ऐसा ये लिखते हैं। और हमारे कुछ श्रोता जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने देश प्रेम में कुछ न कुछ इबारत या कविता जरूर लिखी होगी, तो कुछ पंक्तियों में जो कविता आपने लिखी है वो आप हमें जरूर भेज सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज हम सुबह से ही देशभक्ति गीत सुन रहे हैं और कुछ ऐसे गाने जो हमारे भीतर साहस जज्बा हौसला मजबूती के साथ जो है इरादे हमारे उत्पन्न करते हैं। और अपने देश भारत के गायक गायिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने लगन और भाव से इन गानों को गाया है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पता नहीं लिखते हैं कि आज तमाम सारे शब्द जो हैं वो इबारत में हैं, बसंती दुल्हन विजय विश्व तिरंगा ब्रह्मा वतन पैगाम तूफान जानोतन और तमाम शब्द के बारे में शब्दों के बारे में इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि भारत भूमि के वीर सपूतों के बलिदान को शत शत नमन, हजारों बरस आपको सच्ची आंखों देखी कहानियों में गाथाएं आने वाली पीढ़ी को सुनाई जाएंगी, सरहद के जांबाज सैनिकों को नमन जो देश की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और सब देशभक्ति गीत मुझे पसंद है, मेरा रंग दे बसंती चोला, इंसान का इंसान से हो भाईचारा और किसी की मुस्कुराहटों पर, तमाम गीतों के बारे में इन्होंने लिखा है। आप ये गीत सुनिए श्रोताओं और बताइए जो हमने आपसे पूछा है कविता के बारे में, अपने स्कूल के समय के बारे में, आज आपने किस खास अंदाज में स्वतंत्रता दिवस को मनाया या मना रहे हैं, और क्या कभी आपका सपना रहा भारतीय फौज में जाने का।

प्रदीप की यह रचना आपने सुनी हेमंत कुमार की तर्ज से, जागृति फिल्म का यह गीत था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि भारतीय स्वाभिमान मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम और त्याग की वो पावन ज्योति है जिसने गुलाम भारत के प्राणों में स्वतंत्रता की अद्भुत और अमिट अलख जगाई थी। ऐसा हमारे ये श्रोता लिखते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि रक्त प्रवाह तप्त और तीव्र हो जाती है ये गाना सुनकर, बहुत हुवी रसपूर्ण गीत है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि न जाने कितने ही वीर शहीद हुए तब जाकर हम आजाद हुए, हंसते हंसते जान लुटा दी, भारत माँ को खुश कर दिया, तिरंगा लहराए हर घर में गूंजे जय हिंद, और अपनी तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आनंद मठ बंकिम चंद चट्टोपाध्याय की रचना है, वंदे मातरम उसी उपन्यास से लिया गया है। जी हाँ, ये सवाल हमने आपसे पूछा था। एक और सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, क्या कभी भारतीय फौज में जाने का सपना आपका रहा, तो आप जरूर हमें बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस बचपन में स्कूल में मनाते थे, वो राष्ट्रगान राष्ट्रीय गान और राष्ट्रध्वज को सलामी देना, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने का मजा, और पूरे गांव में रैली में निकालना, और फिर खाने को मिश्री चीनी मिलती थी, बहुत ही मजा आता था। आज तो बस मोबाइल पर ही मना लेते हैं, ऐसा नहीं है, आप बाहर निकलकर देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, देश वही और राष्ट्र वही, हमारा तिरंगा वही गुरूर से फैल रहा है। और आपको ये बताना है श्रोताओं कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर जो थे वो मनाए जाते थे और बच्चे उसमें भाग लेते थे, तो क्या आपने भी कभी भाग लिया है ये आप बताएं। और एक सवाल जो हमने आपसे पूछा है, भारतीय फौज में जाने का आपका सपना, ये आपको जरूर बताना है। और स्कूल में क्या क्या मिठाइयाँ मिलती थी, बहुत सारे स्कूल में तो चॉकलेट्स भी मिलती थी, तो आपके यहाँ क्या मिलता था, क्योंकि लड्डू तो बहुत मिलते थे। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज देशभक्ति के गीतों से सराबोर रहेगा और जिन वीरों ने इस देश के लिए बलिदान दिया उनको सादर नमन, और अब हमारी जवाबदारी है कि इसको सहेज कर रखना। एक और श्रोता लिखते हैं कि अभी स्कूल से लौटा हूं, देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस बच्चों के बीच मनाया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी दी, कितना गौरवशाली दिन है आज, दिलों में जोश है, चारों ओर हवा में नई ऊर्जा नए प्राण की अनुभूति हो रही है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दुल्हन चली पहन चली तीन रंग की चोली और क्रांति फिल्म के गीत को इन्होंने याद किया है, तो देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत शामिल हैं कार्यक्रम में। वो कौन से कलाकार हैं श्रोताओं जिन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता है।

गीत के साथ आपकी क्या यादें हैं श्रोताओं, आप हमसे बता सकते हैं। क्या ये फिल्म आपने देखी है तो उसकी यादें भी आज आप ताजा कर सकते हैं।

भारत कुमार किन अभिनेता को कहते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। जी हाँ, मनोज कुमार, बिल्कुल ठीक आपने बताया है श्रोताओं। और फौज का जो सवाल हमने आपसे पूछा था, सपना क्या आपने सजाया था, तो हमें जरूर बताएं।

0: और फौजियों का एक खास ड्रेस कोड होता है श्रोताओं, यानी वर्दी जो उनकी होती है वो आपको कितना प्रोत्साहित करती है देश सेवा के लिए, ये आपको बताना है। एक हमारी श्रोता ने कविता की तरह से लिखा है कि नमन करूं वंदन कर लूं मैं, ये माटी है वीर वीरांगनाओं की, इसे माथे से लगाकर चंदन कर लूं मैं, सदा सर्वदा अटल रहे मेरे भारत की प्रतिष्ठा, केसरिया श्वेत हरित वर्ण से सुशोभित ये तिरंगा प्यारा, गौरवान्वित इन क्षणों में इस ध्वजा को लहराकर अभिनंदन कर लूं मैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। और बड़ी ही सुंदर एक कविता की तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने बनाया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मनोज कुमार पर फिल्माया गया, उपकार फिल्म का बड़ा ही प्रसिद्ध गीत है, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आजादी का मतलब केवल राजनीतिक रूप से देश को अंग्रेजी या किसी बाहरी शासन के से मुक्त कराना नहीं, इसका वास्तविक अर्थ बहुत ही व्यापक है, जिसमें वैचारिकता, स्वतंत्रता, मानसिक मुक्ति और संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, ताकि हर नागरिक बिना डर के सम्मान से जी सके। जी हाँ, और संविधान का हम सभी को भी जो है बहुत बहुत सम्मान रहे। और एक और श्रोता लिखती हैं कि जब भी इन देशभक्ति गानों को सुनते हैं तो बचपन में वो स्कूल का नेशनल त्यौहार और स्कूल में दिखाई जाने वाली फिल्मों की याद आ जाती है। जी हाँ, स्कूल में तो बहुत सारी फिल्में दिखाई जाती थी श्रोताओं, और स्वतंत्रता को लेकर जो फिल्में बनी हैं हमारे देश में, उनमें सबसे ज्यादा पसंदीदा आपकी कौन सी फिल्म है, ये आप बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि अब की बार हमें मौका मिला भारत भूमि का ताज श्रीनगर कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक और बलिदान स्तंभ पर मेरी धर्मपत्नी और मैंने स्वयं तिरंगा को सलामी दी, तिरंगा वहां फहराया, वंदे मातरम गीत गाया, वहां तैनात सुरक्षा फौजी जवानों को जय हिंद और जय बाबा अमरनाथ कहा, और वीडियोज भी और फोटोज भी हैं इसके। एक और श्रोता ने लिखा है कि स्कूल के समय मूल राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने का सौभाग्य सदैव मुझे प्राप्त रहा, आज भी सुबह पुणे में अपनी सोसाइटी में ध्वजारोहण भाषण में व्यस्त रहा और दिन भर रहेंगे। इस गीत को आप पहचानिए श्रोताओं।
1: करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बा

ये रचना किस फिल्म से है और किन की है ये आपको बताना है श्रोताओं। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन के उत्साह का तो कहना ही क्या, उस दिन स्कूल की तरफ जाने वाला रास्ता कुछ अलग ही लगता था, सब कुछ नया धुला धुला, और फिर उस दिन मिलने वाले लड्डुओं का अनोखा स्वाद, क्या फिर कभी जीवन में दुकान से खरीदने पर मिला वो स्वाद। आज के दिन उन वीरों को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपनी शहादत से देश की रक्षा में अपने को तज दिया, उन वीर सैनिकों को सलाम जो कड़ी गर्मी, ठिठुरती ठंड और बारिश में सीमा पर प्रहरी बनकर खड़े रहते हैं, सबको मेरा नमन, ऐसा ये लिखती हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज़ादी के जश्न में सबसे अधिक कोई इठलाता है तो वो है गोल गोल जो जलेबियां हैं वो, और तनो जलेबी जो है वो जगह जगह, यानी बिहार के बारे में खास इन्होंने लिखा है कि बिकी होगी, ऐसा होता होगा वहां, और सोसाइटी की तरफ से केसरिया रंग वाली घी की जलेबी ही आई। जय भारती, इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन भोर की बेला में बचपन में एक अलग ही उमंग लेकर आती थी, सुबह सुबह जल्दी जागना, साफ सुथरे स्कूल ड्रेस को पहनना, सीने पर तिरंगे का बैच लगाना और प्रभात फेरी में गूंजते वंदे मातरम के नारे अपने स्कूल के दोस्तों के साथ लगाते, और आज भी मन को पुरानी यादों से भर देती हैं ये सभी बातें। और बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं कि स्कूल के सहपाठियों के साथ हाथ में राष्ट्रीय झंडा लेकर पूरे जोश और जुनून के साथ देशभक्ति के का नारा लगाना। एक और श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, 2.5 महीने अमेरिका में बिताने के बाद आज इस पावन पर्व पर ही घर वापसी हुई है, तो बहुत बहुत आपको भी बधाई। और हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी बधाइयां दी हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था देशभक्ति कविताएं सुनाता था, मैं 15 अगस्त के पर्व पर स्कूल के हर प्रोग्राम में भाग लेता था, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 15 अगस्त का दिन किसी त्यौहार से कम नहीं होता था, सुबह सुबह स्त्री की हुई स्कूल ड्रेस पहनकर हम हाथ में तिरंगा लिए बेहद उत्साह से स्कूल पहुंचते, प्रभात फेरी में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने का मजा ही अलग था, ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान के समय गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था, देशभक्ति गीत, पीटी परेड और अंत में मिलने वाले जो समोसे थे वो बूंदी के लड्डू उस खुशी को दुगना कर देते थे। तो आज आप बताइए कि आज ये जो मिठाइयां हैं वो किस तरह से आप खा रहे हैं, और क्या यादें हैं आज खास, क्या आज वापस बूंदी के लड्डू और जलेबियां मिली।

लीडर फिल्म का ये गीत किस कलाकार पर फिल्माया गया है श्रोताओ, ये आपको बताना है, और किन्हीं तीन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आप बताएं, और उनका नाम तो अवश्य बताएं जो 1857 में शहीद हुई और जिन्होंने झांसी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो ये नाम आपको बताने हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज स्वतंत्रता दिवस पर बस इतनी सी इच्छा है कि हमारा देश यूं ही प्यारा, भाईचारे और खुशियों से भरा रहे, और छोटे छोटे काम हम अपने देश के लिए करते रहें, थोड़ा और सुंदर इसे बनाएं और कोशिश करते रहें, और सिर्फ सलाम नहीं करना है बल्कि हर दिन अपने हिस्से का प्यार और जिम्मेदारी निभाना है, और देश के लिए अच्छे अच्छे काम करें, कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक आध कमेंट्स की और गुंजाइश बाकी है। तो ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस

की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है स्वतंत्रता दिवस की हमारे जितने भी साथी हैं उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मनोज कुमार वाली फिल्म शहीद मुझे स्कूल में दिखाई गई थी जब मैं चौथी कक्षा में

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उपकार फिल्म बचपन में सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से रोड पर सफेद पर्दा लगाकर दिखाई जाती थी, जिसे सड़क पर बैठकर घर से ही देखा जा सकता था। आज वह सब याद आ रहा है।

यशोदा ने प्यारा सा कमेंट लिखा है कि मैं एनसीसी में थी और बचपन से ही देशभक्ति का जज्बा है, मेरा सपना था मेरे घर के बच्चे फौज में जाएं और मैं अपने पापा के साथ झंडा फहराने जाया करती थी।

शुभता से भरा स्वतंत्रता दिवस का ये खूबसूरत दिन आप सबको मुबारक हो। श्रोताओं, तिरंगे को हम एक बार फिर सलाम करते हैं।

मोहम्मद रफी के गाये फिल्म हकीकत के इस गीत के साथ ही सुरीला सफर कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, आप सभी को एक बार फिर विविध भारती परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

दिन के 2 बजे हैं, ले जाइए सुनते हैं देशभक्ति गीत। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं जिगरी दोस्त फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी।

कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है सच का साथ। आवाज, गीत और संगीत त्रिलोक लुम्बा का है।

0: मुकेश की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का ये प्यारा सा गीत। शैलेंद्र गेपूल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है। हर घर तिरंगा है, मन तिरंगा है और देश उत्साह तथा उमंग के साथ नए संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ा है। श्री मोदी ने कहा कि देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने हजारों की संख्या में अनुपालन खत्म किए, सैकड़ों पुराने कानून खत्म किए। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचागत विकास को नई ताकत दी गई। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: वहीं श्री मोदी ने लाल किले से एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग देने की घोषणा की।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: इधर प्रदेश में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में तिरंगा फहराया। इस दौरान प्रदेश को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का जो मंत्र दिया था, उसमें इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर हमने ज्ञानी के रूप में उसका विस्तार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के खेत सरकार लिए देवस्थल है और खेत में उपजा एक एक दाना प्रसाद के समान है, इसलिए सरकार प्राथमिकता से किसानों की उपज खरीद रही है। उन्होंने प्रदेश के ऐतिहासिक बजट का भी जिक्र किया।
2: हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 10% अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर पिछले वर्ष की तुलना में 9% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। त्रिवर्षीय रोलिंग बजट की अवधारणा को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है।
0: प्रदेश में जिला स्तर पर भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास धूमधाम एवं गरिमामय ढंग से मनाया जा रहा है। ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने परेड की सलामी ली। जिले के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का सीधा प्रसारण हुआ। खंडवा में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जनजाति कार्य विभाग के मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने ध्वजारोहण किया। सतना में मुख्य समारोह में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने परेड की सलामी ली। रायसेन में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर छात्राओं के साथ मध्याह्न भोजन किया। कटनी में जिला कलेक्टर आशीष तिवारी के मुख्य आतिथ्य में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम हुआ। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर आज आयोजित हुए स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छतरपुर, शहडोल, शिवपुरी, बड़वानी, नीमच में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को 9 विशिष्ट सेवा पदक, 33 सराहनीय सेवा पदक एवं होमगार्ड के अधिकारियों कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए 3 पदक प्रदान कर सम्मानित किया। जबलपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्री तट पे समुद्र के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट

0: रास्ते होंगे हर किसी में। चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो, और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें PM विश्वकर्मा योजना के कारीगर, PM मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, PM स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्रध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
3: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें PM सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल RN रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
4: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने

0: राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
1: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
2: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रूवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कौसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कुलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वाले और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नारायण दत्ता की तर्ज राजा मेहदी अली खां के बोल आशा भोसले और साथियों की आवाजें। फिल्म थी भाई बहन, इसी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

दीदी फिल्म का ये दो गाना आपने सुना, आशा भोसले मोहम्मद रफी का गाया, साहिल जाह्नवी के बोलों को सुरों में ढाला एन दत्ता ने। फिल्म सीमा का ये गीत है मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: मोहब्बत जिंदगी है, सुनकर गीत आपने सुना। महेंद्र कपूर, आशा भोसले का गाया, सज बिहारी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। श्रोताओं, यही थी आज के कार्यक्रम सदाबहार नगमे की आखिरी पेशकश।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे

लीजिए आ चुका है आपके रेडियो सेट पर विविध भारती का कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हवाओं में खास रवानी है, आज दिलों में खुशियों का रंग है और आपके भेजे पत्रों में भी मन चाहे गीत का कुछ ऐसा ही इंद्रधनुषी रंग नजर आ रहा है। ये गीत आपकी पसंद के यकीन मानिए श्रोताओं रंग भरते हैं हमारे मन चाहे गीत कार्यक्रम में। तो देखते हैं आज हमारे किन श्रोताओं की पसंद मन चाहे गीत कार्यक्रम में झलकती है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा

हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये दो गाना था लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। और फरमाइश भेजने वाले हमारे ये श्रोता हैं जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से चंदू हातोले और सीमा हातोले की ये फरमाइश है। हमारे ये श्रोता हैं एम फारूख, पप्पू शेख और अल कुमार अफसानो महजवी मिर्जा, इनकी फरमाइश आई है गणेशपुर गंज डुंडवारा से। और सुब्रत चौधरी बेबी अनीशा मनीषा चौधरी ने कोलकाता से इसी गीत को सुनना चाहा था। महावीर जैन रूपाली प्रीति निधि और परी और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश आई है जैन गली कसूना से और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। पुरानी सुनना चाहते थे पुरानी बस्ती ब्राह्मण पारा से चिंतामणि शुक्ला।

शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया लता मंगेशकर ने। आप सुन रहे थे झुक गया आसमान, फिल्म का गीत शैलेंद्र का, लिखा श्रीनगर से सहारनपुर से ये पत्र है श्रोताओं। उत्तर प्रदेश से सुरेश नारंग, आशु नारंग, प्रतीक और सोनाली ने ये पत्र भेजा है। और धमनी मनोरा से हमारे श्रोता हैं तुलसीराम, संदेश, किरण, मायावती, आदेश और प्रज्वल डेरे की फरमाइश है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने पत्र लिखा है। वरोरा चंद्रपुर से हमारे श्रोता हैं लवकुश खाडिलकर, उमा देवी खाडिलकर, रोहित और प्रणीत खाडिलकर और चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश, शुभम और सावित्री की ये फरमाइश आई है धमतरी छत्तीसगढ़ से। और शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा ने इसी गीत को सुनना चाह रहा। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

प्रेम धवन की रचना आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। फिल्म काबुलीवाला के इस गीत को सुनना चाहा था बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, निखत परवीन, शहनवाज फद्दीन और आफान अब्बासी की फरमाइश थी। बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र सुभाष, दिगंबर राजेश और शुभांग की फरमाइश ये है। श्यामनगर दुर्ग से प्रदीप खांडेलवाल और नीता खांडेलवाल इस गीत को सुनना चाहते थे। सुलेमान भाई, खलील इकबाल और महबूब ये हमारे श्रोता हैं चलाला कठियावाड़ के, और इसी गीत को सुनना चाहा गुरप्रीत सिंह तंगोरी जसवीर कौर ने, ये हमारे श्रोता हैं तंगोरी, अच्छा ये जगह का नाम है तंगोरी मोहाली पंजाब से हमारे ये श्रोता हैं गुरप्रीत सिंह और जसवीर कौर। और ये एक और इस गीत की फरमाइश है कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर और श्रीमती रजनी मलमकर की फरमाइश।

ये गीत आप सुन रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम इस फिल्म से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, मुकेश की आवाज थी। संबलपुर कांकेर से फागुन राम और ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और ईशिका यादव ने इस गीत को सुनना चाहा था। अलीवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवीराम इनवाती और दामिनी इनवाती की फरमाइश आप सुन रहे थे। जमशेदपुर से चिन्मयी महतो, रेखा महतो ने इस गीत को सुनना चाहा। और ये हमारे श्रोता हैं लोहारा बालोद के अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तमूरिया, राधिका प्रभा देवी और ये हमारे श्रोता हैं हिच्छा महासमुंद से, अदालत दास मानसी, शांति ऋचा गायत्री।

खानदान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर का गाया, नक्शलालपुरी के बोल थे, खयाम का संगीत था, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, अभिषेक नायडू की फरमाइश आई इस्लामपुर जिला बुलढाणा।

सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर ने इस गीत के लिए पत्र लिखा। लोहेड़ी महोबा के हमारे श्रोता हैं उत्तर प्रदेश से, जयपाल यादव, इंद्रपाल, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, देव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव ने इस गीत को सुनना चाहा। शीतला नगर दुर्ग के हमारे श्रोता हैं शिव चंद्राकर, भगवान और पार्वती, राधा चंद्राकर भी यहीं से, और इस गीत के लिए एक और पत्र भेजा अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू, शालराज और वंशराज ने। ये हमारे श्रोता हैं गर्ल्स स्कूल रोड बनिहारी से।

चिराग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था, रिधोरा से बाबूलाल बुराकड़े, गोकुला बुराकड़े, मंगेश की फरमाइश थी, अकोले महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा नैन्सी सुमित की फरमाइश थी, लचनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति और अनल साहू की फरमाइश ये थी, और हमारे डव्वाली हरियाणा के श्रोता हैं जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, मीनू बकोलिया और जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति शुभम और भावना, ये हमारे श्रोता हैं मोटक्का मूर्ति जिला खंडवा के। और इन्हीं गीतों के साथ संपन्न होता है आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। भेजते रहिए अपने पत्र श्रोताओं, क्योंकि आपके पत्रों का रहता है हमें इंतजार। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ लेते हैं इजाजत इस कार्यक्रम से। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: भाई भाई शेखर, ये सर्दी तो लगता है फिर से पलट गई है। इतनी ठंड तो दिसंबर में भी नहीं थी।
1: कल रात से रुक रुक कर पानी बरस रहा है, बाहर निकलने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। मिस्टर निगम, आप एक कॉफी और लेना पसंद करेंगे?
0: क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। लेकिन सुनिए, बस दूध की कंजूसी मत कीजिएगा। आई लाइक कॉफी विद लॉट ऑफ मिल्क, कॉफी और लै।
1: मतलब
0: कॉफी विद मिल्क। आई सेड इट इन फ्रेंच।
1: फ्रेंच। अच्छा एक बात बताइए, ये फ्रेंच पढ़ना छोड़ क्यों दिया आपने?
0: जब मेरी जगह उस थुल थुल बनर्जी को फ्रांस भेजा गया तो फ्रेंच पढ़ना तो छोड़ना ही था।
1: ये लीजिए गर्मा गर्म अपनी कॉफी और ले।
0: थैंक यू वेरी मच। भाई लगता है कि मौसम इस बात से बहुत नाराज है कि आखिर हम इस ठंड को चुपचाप सहने की बजाय कॉफी के प्याले को हथियार बनाने पर क्यों तुले।
1: निगम साहब, प्रकृति ने जब चाहा बेरहमी से कुचला ही है हमें।
0: नो मिस्टर शेखर, हियर यू आर रॉन्ग। कितनी बेरहमी आदमी ने प्रकृति पर दिखाई है तो क्या कम है? जस्ट फॉर सम पक्स वी हैव वर्चुअली रेप्ड एनवायरनमेंट। पहाड़ों पर पूरे के पूरे जंगल काट डाले, पूरे के पूरे जंगल। बरसात का पानी है कि रुकता ही नहीं। बाढ़ आने का एक बड़ा कारण है ये, और उधर जंगलों में पूरा का पूरा मैदान साफ कर दिया। तुम्हें याद है ना वो क्या नाम था उसका, वो सिन्हा के लड़के प्रदीप का केस?
1: हाँ, वो फॉरेस्ट ऑफिसर
0: जी, वो इस सब के खिलाफ था, रोकना चाहता था ये सब। मगर जब एक बार उसने अवैध लट्ठों से भरे हुए ट्रक को पकड़ा तो जानते हो क्या हुआ? न जाने लट्ठों को बांधने वाली रस्सी कैसे खुल गई और लट्ठे भारी आवाज के साथ उसे रौंदते हुए आगे तक फिसलते चले गए। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, यू नो, ही वॉज किल्ड।
1: पुअर चैप। निगम, ये जो डेजर्ट है ना अफ्रीका का, सहारा, इसके बारे में भी कहते हैं कि यहां पर पहले मीठे पानी का सोता था, हरा भरा जंगल था।
0: ये सब बातें सुनकर के तो ऐसा लगता है शेखर, मानो हम सब मेज कुर्सी पर नहीं, हड्डियों को छील कर बनाए गए ढांचे पर बैठे हो।
1: एक बात कहूं, प्रदीप की बीबी सोनाली के साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया सिन्हा ने।
0: अरे भाई, सास ससुर थे ना वे, और प्रदीप का मरना तो मानो मानो सोनाली की मर्जी से हुआ।
1: अब तो सोनाली ने शादी कर ली।
0: उसका हस्बैंड एक्सपोर्टर है, अच्छा काम है उसका दिल्ली में, और भाई वो भी बहुत खुश है। लेकिन एक बात बताऊं शेखर, वो प्रदीप को भूल नहीं पाई।
1: प्रदीप ऐसा था ही नहीं जिसे भूला जा सके।

0: अरे कौन है बाहर?
1: कौन है बाहर? ए कौन है बाहर? अरे कौन है बरामदे गए? मैंने पूछा कौन है भाई, बोलता क्यों नहीं है?
2: अरे हाँ मैं बाबूजी, बरसात से बचे के खाते।
1: अरे हद होती है, बरसात से बचना है तो कहीं और जाओ भाई। और साथ में कौन है तुम्हारे?
2: चलो चलो यहाँ से चलो। हजूर हमारे घर के ही बच्चे हैं।
1: अरे भाग जाओ तुम लोग, चलो भागो यहाँ से।
2: हजूर तेरी बरसात खत्म हो जाए।
1: मैं कहता हूँ अभी बाहर जाओ, इडियट्स निकलो बाहर।
3: अरे अरे भाई शेखर, जरा बरसात तक
1: नहीं यार,
0: तुम समझते नहीं हो, बरामदे में तमाम तरह के गुलाब लगा रखे हैं मैंने, एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ये लोग। अरे देखो तो इनकी हिम्मत तो देखो, गेट खोलकर अंदर आ गए।
3: अरे भाई दरअसल ठंड इतनी ज्यादा है बाहर की।
0: करते हो निगम तुम भी, ठंड है तो कहीं और जाए।
1: अरे सुना नहीं तुम लोगों ने, कुत्ता है घर में, छोड़ो क्या?
2: जाते हैं बाबूजी, जाते हैं, चलो कहीं और।
1: बताओ भला, हाँ गेट खोलकर अंदर घुस आए थे? कम से कम आठ तो बच्चे होंगे साथ में, वो क्या पता बच्चे चुराने वाला ही हो। लो अब इन चक्करों में आग ही बुझने लगी, एक दो लकड़ियां और डालनी पड़ेंगी। निगम ये क्या बजाने लगे तुम?
3: क्यों उस खांसने वाले आदमी की तरह ये भी तुम्हें नापसंद है क्या?
0: अरे नहीं नहीं, क्या बात करते हो, वाकई ये तो बड़ा खूबसूरत म्यूजिक है।
3: शेखर मैं जब मध्य प्रदेश में था तो वहां के आदिवासियों का लोक संगीत टेप किया था मैंने।
0: हाँ हाँ वो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के
3: डॉक्टर मूले।
0: ओह यस।

0: भाई गाना बजाना इन आदिवासियों के जीवन का सबसे चटक और पक्का रंग है।
1: निगम, इन लोगों को देखकर हमेशा हमेशा मुझे ऐसा लगा मानो आज भी इस देश का एक टुकड़ा आदिम युग में जी रहा हो।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं शेखर, ऐसा नहीं है। हर जगह एक वर्ग जरूर अपनी सोच और मानसिकता की वजह से आदिम युग में ही है। अब सोनाली के सास ससुर सिन्हा को क्या कहोगे तुम? बोलो, विल यू कॉल देम मॉडर्न?
1: नो, कम से कम मैं तो नहीं कहूंगा।
0: अरे ये क्या हुआ?
1: लगता है इस तूफान की वजह से कोई पेड़ गिरा है।
0: हाँ, ऐसा तो नहीं कि कोई ट्रक या बस खड्ड में गिर गई हो?
1: वैसे आवाज तो बहुत भीषण थी, अब इतनी बारिश और तूफान में जाकर देखना भी असंभव। अब छोड़ो यार, सुबह पता चल जाएगा।
0: मामला तो कुछ सीरियस लगता है यार।
1: वो कोयला खदान में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई?
0: नहीं नहीं, फॉर गॉड से ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। अरे भाई इंजीनियर मैं हूं, मुझे ही धरा जाएगा।
1: शोर तो बढ़ता ही जा रहा है।
0: वैसे खदान में अगर कुछ होता तो
2: साहब, साहब, साहब,
0: मर गए।
2: साहब, क्या बात है बहादुर साहब?
0: हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बहादुर?
2: साहब,
0: क्या हुआ, क्या बहादुर?

0: अरे भाई बहादुर, इतने घबराए हुए क्यों? कुछ बोलो भी।
1: साहब साहब साहब वो
0: क्या साहब? वहाँ वहाँ वहाँ कहाँ?
1: साहब साहब साहब साहब वहाँ।
0: अरे भाई रो क्यों रहे हो? हुआ क्या? अरे कुछ बोलोगे भी?
1: साहब साहब
0: वहाँ कहाँ बहादुर?
1: अरे साहब साहब वहाँ कोयला खान में। साहब
0: कोयला खान में क्या हुआ? कोयला खान में
1: साहब कोयला खान में हाँ। अंदर की दीवार से पानी आ गया साहब।
0: पानी आ गया?
1: मजदूर लोग वहां अंदर फंस गया है साहब।
0: कितने होंगे
1: साहब? बहुत साहब, मर गया होगा साहब।
0: अरे मरेंगे तो अब हम
1: क्या बोले साहब?
0: नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुनो, तुम चलो मैं भी आता हूँ। चलो जल्दी आ साहब। चलो वहां लोगों से कहो मैं भी फौरन ही पहुंच रहा हूँ।
1: जल्दी आ साहब, जल्दी आ साहब।
2: गॉड, जो सोचा था वही हुआ।
3: मेरे ख्याल से बरसात की वजह से कोई खान ढह गई है।
2: नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है अंडरग्राउंड वाटर किसी दीवार को फाड़ कर खान में घुस आया हो।
0: मेरे ख्याल से तो हम शायद ही बचा पाए किसी को। रेनकोट भी नहीं है यहाँ पर।
3: ये लो छाता, मैं भी साथ आऊं।
0: नहीं नहीं रहने दो, मैं चलता हूँ।
2: लेकिन इस आधी तूफान में बाहर निकलना, जिसका डर था वही। हजार बार मना किया था कि इस खान में काम बंद कर दो, बंद कर दो, पानी भरने का खतरा है। लेकिन जब तक कोई मरे नहीं, किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। और अब सब मुझे ही नोच डालेंगे। खैर जाना तो पड़ेगा ही।
0: अरे साहब आ गए।
4: अरे मनोहर, अरे भाई मनोहर कैसे हुआ ये सब?
5: अरे क्या बताएं साहब, खान नंबर 3 में पानी भर गया है। बगल की दीवार ढह गई, वहीं से जमा पानी अंदर आ गया साहब। हम तो पहले ही कहते थे साहब, दीवार से पानी रिश्ता दिख रहा है, खतरा है।
0: अच्छा ये बताओ कुल कितने लोग फंसे?
5: अरे साहब होंगे करीब 35।
0: 35?
5: साहब कुछ कीजिए। हाँ साहब कुछ कीजिए, नहीं तो एक नहीं बचेगा अंदर।
0: अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। ये बताओ चीफ साहब को खबर की कि नहीं?
5: जी साहब वो शंकर गया है।
6: अरे निगम साहब कहाँ गए आपके सेफ्टी मेजर? धान में पानी भर चुका है, कैसे निकालेंगे उन्हें बाहर?
0: देखिए देखिए देखिए मैं
6: आपसे कह चुका हूँ कि इस खदान के बगल में पानी भरा है, यहाँ पर काम बंद करवाइए। सुना
0: देखिए वो मेरी भी कुछ मजबूरी।
6: हमारा एक भी आदमी मरा तो हम दिखाएंगे आपको कि मजदूर की ताकत क्या
0: है। अरे भाई देखिए देखिए काम बंद करना है न करना चीफ साहब के ऊपर था।
6: अरे तो आप किस लिए हैं? चीफ कभी नजर आते हैं?
0: भाई देखिए देखिए मेरी एक बात
6: सुनिए। देखिए क्या देखे? एक तो रहे 35 लोग फंसे पड़े, उनको निकालने का कोई साधन किया है आपने?
0: मैं पूरी कोशिश करता हूँ
6: मनोहर, हम लोग खुद कर लेंगे।
0: मनोहर जी साहब, भाई लिफ्ट का क्या हाल है? चालू हालत है कि नहीं?
5: साहब लिफ्ट है तो चालू हालत में, मगर मुसीबत यह है कि मजदूर काफी अंदर फंसे हैं साहब, और आगे की सुरंग काफी नीची है, वहाँ पानी छत तक भर गया है। ऐसे में साहब लिफ्ट तक उन लोगों को कैसे लाएंगे?
0: क्या पानी अभी भी अंदर आ रहा है?
5: जी इस तरफ का पानी तो खान में उतर चुका है, पर लगातार बरसात से अगर मिट्टी पोली पड़ गई तो बगल के ताल का पानी भी अंदर आने लगेगा। साहब तब किसी को भी बचा पाना बहुत मुश्किल होगा।
0: क्या करूँ? अच्छा सुनो, कितनी गहराई पर होंगे लोग?
5: होंगे यही करीब करीब 450 फीट पर। शंकर आ गया साहब।
7: नमस्ते सर।
0: नमस्ते शंकर, वो तुमने चीफ साहब से बात की कि नहीं?
7: जी चीफ साहब ने कहा है कि आप उनसे बात कर लें।
0: मैं बात कर लूं?
7: जी।
0: अच्छा ठीक है, वो आने के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने? मतलब आ रहे हैं या नहीं?
7: जी नहीं अभी तो घर ही पर है।
0: अच्छा मनोहर, मनोहर तुम जाओ और 4 जनरेटर और पानी निकलवाने के लिए पंप और पाइप गोदाम से निकलवाओ जल्दी। और सुनो शंकर, तुम भी मनोहर के साथ जाओ, मैं चीफ साहब से फोन पर बात करता हूँ।
6: शायद ऊपर तक जानी चाहिए।
3: कमाल है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और चीफ यहाँ तुरंत आने की बजाय कह रहे हैं बात करो। पता नहीं बात क्या करनी है।
0: लीजिए साहब, चीफ साहब से बात कीजिए। हेलो हेलो सर, सर मैं निगम, मैं यहाँ पर सर खदान नंबर 3 से बोल रहा हूँ। सर खदान में पानी भर गया है, करीब 35 लोग अंदर फंस गए हैं।
8: कब हुआ ये
0: सर? करीब आधा घंटा पहले। सर यहाँ पर लोग बुरी तरह से एजिटेटेड हैं, मुझे तो लगता है कि ऑफिशियल्स का घेराव करने वाले हैं।
8: अंदर फंसे सब जिंदा हैं या मर गए?
0: मर गए सर? मतलब
8: निगम मरने से बेकार का पकड़ा खड़ा होगा।
3: सर वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन आप यहाँ सर तुरंत पहुँच जाइए प्लीज।
8: निगम डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई डोंट थिंक आई नीड एडवाइस फ्रॉम यू।
3: आई एम सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, पर सर मेरा

0: मतलब था इतनी बड़ी दुर्घटना सर, अगर अगर आप होते सर तो
1: ये सब हुआ ही करता है, कोई नई बात नहीं है। उनको निकालने का कोई इंतजाम वगैरह करो, बस कोई मरे नहीं। यू कॉन्टैक्ट आई ओन बियर एनी कैजुअलिटी निगम।
0: बट सर सर सर हेलो हेलो हेलो हेलो नो, फोन भी रख दिया। आई वॉन्ट बियर एनी कैजुअलिटी, नॉन सेंस, जैसे जैसे मरना जीना भी मेरे हाथ में है। ओह गॉड, इन लोगों के परिवार वाले भी पहुंच गए लगते हैं। अब तो लगता है पुलिस बुलवानी ही पड़ेगी। सर चीफ साहब आ रहे हैं ना? आने की सोच रहे हैं अभी। सर जनरेटर वगैरह मिला?
2: सर सर वहाँ गोदाम में ताला पड़ा है।
0: What?
2: जी चौकीदार के पास चाबी है, दो लोगों को भेजा है चौकीदार को बुलाने।
0: ओ अब ये चौकीदार कहाँ गायब हो गया इस समय?
2: अरे सर बरसात की वजह से शायद अपने क्वार्टर में हो, मनोहर भी गया है उसे लेने।
0: देखो यहाँ तो भीड़ बहुत बढ़ने लगी है, अब तो मुझे लग रहा है कि इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
2: सर सर मैंने मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को फोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी।
0: पुलिस?
2: जी
0: अच्छा ठीक है, अच्छा चलो हम लोग चलते हैं।
2: चलिए।
3: अरे भेजे,
4: अरे अरे बचा लो मेरे बच्चे को, कोई बचा लो रे, कोई निकालो उसे, मेरे बच्चे को कोई निकालो, मेरे बच्चे को कोई निकालो रे।
0: देखिए देखिए आप लोग बड़ा शांत रहिए भाई, आप लोग शांत रहिए, देखिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हंगामा शुरू हो गया आखिर, और ये चौकीदार भी चाबी लेकर पता नहीं कहां मर गया है। औने दो सस्पेंड कर दूंगा बदमाश को। अब तक तो काम शुरू भी हो गया होता, इधर ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।
2: वो देखिए साहब मनोहर वगैरह आ गए।
0: अरे भाई मनोहर वो क्या हुआ, चाबी अभी मिली?
5: अरे साहब वो चौकीदारी का पता नहीं चल पा रहा है, उसके दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है, शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक गया साहब।
0: माय गॉड, लेकिन भाई जनरेटर वगैरह तो निकालना ही पड़ेगा ना। मनोहर तुम ऐसा करो, जाकर के गोदाम का ताला तोड़ दो।
5: ताला तोड़ दे?
0: हाँ हाँ भाई तोड़ दो उसे।
5: अरे मगर साहब गोदाम की बाकी माल की गारंटी।
0: साहब अगर आप साथ चले तो ठीक रहेगा। देखिए साहब हम तो मामूली कर्मचारी हैं साहब, आप भाई अब मैं यहाँ देखूँ या वहाँ चलूँ?
2: साहब चले चलिए,
0: अच्छा ठीक है आओ चलो चलता हूँ मैं।
6: इन लोगों को तो शोर शराबे के अलावा और कोई काम ही नहीं है।
0: सुनो
6: जी,
0: हथौड़ा वगैरह तो है ना पास में?
2: हाँ साहब है।
6: साहब ये जो आदमी आपसे बहस कर रहा था ना, लक्ष्मण है, एक नंबर का बदमाश है। दो तीन बार तो साहब इसे कोयला चुराते मैंने खुद पकड़ा।
0: हाँ साहब। अच्छा तो मुझे बताया क्यों नहीं?
6: अरे क्या बताएं साहब, रोने गिड़गिड़ाने लगता है, और फिर इसके साथ साथ बच्चे, और इसकी जोरू बहुत भली है साहब।
0: क्या सात बच्चे?
6: जी सात बच्चे। वो जो जूट मिल है ना साहब भवानीपुर वाली, वहीं पहले वॉचमैन था, वहीं से निकाला गया है, चुराया होगा कुछ वहां भी। लो शंकर चलो ऊपर से हथौड़ा निकालो तो भाई।
2: अच्छा
6: आइए साहब। अरे ये तो काफी मोटा ताला है, कम वक्त ये पाजी चपरासी इसी वक्त गायब होना था इसे। शंकर यार लगाओ तो चोट पे।
2: हाँ हाँ लीजिए साहब, टूट गया।
0: अच्छा चलो जल्दी से फाटक तो खोलो।
2: हाँ सर। अरे यहाँ तो बत्ती भी नहीं आ रही, यहाँ तो कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा।
6: हाँ कुछ,
2: अरे मनोहर
6: हाँ
2: टॉर्च है तुम्हारे पास?
6: टॉर्च मेरे पास तो नहीं है, देखें शायद शायद इस अलमारी में।
2: हाँ ढूंढो।
6: मिल गई टॉर्च मिल गई।
2: अच्छा साहब
6: टॉर्च मिल गई।
0: देखो वो रहा जनरेटर, शंकर तुम पाइप उठाओ।
2: जी अच्छा।
0: अगर दो चार लोग और होते तो सहूलियत रहती। शंकर
2: जी
0: अभी देखो, अगर दो तीन लोग और अगर मिल जाए तो जरा सा बुलाओ दो उन्हें।
2: जी अच्छा जी अच्छा।
7: अरे ओ बाबू हसो,
0: अरे भैया
7: हाथ लगा दो।
0: अरे भैया
3: जरा जनरेटर और मोटर बाहर निकलवाने में हमारी मदद तो कर दो।
2: अब बैठो भैया।

0: आप रहने दें, हम निकाल लेंगे।
1: नहीं नहीं कोई बात नहीं बाबू, बाबू तुम पाइप ले चलो, लगाओ जोर। ये तो घूमता ही नहीं है शंकर। हाँ। अरे भाई देखो ये पहिए के नीचे पत्थर तो हटाओ। मैं भी कहूँ कि जनरेटर आगे खिसक क्यों नहीं रहा। हाँ लगाओ जोर, चलो शाबाश। अरे अब ये नारे क्यों लगने लगे साहब? लगता है चीफ साहब आ गए। अरे साहब लोग तो बेकाबू होते जा रहे हैं, अगर कोई मर गया तब तो लोग मरने माने पुतार हो जाएंगे। अरे मनोहर जल्दी जल्दी पाए बिछाओ। चीफ तो आए नहीं लगते। हाँ सर वो तो नहीं आए, तो क्या सर चीफ साहब के आने तक इंतजार करें?
2: नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मनोहर तुम मिलकर पाइप नीचे उतारो।
1: जी अच्छा
2: शंकर चलो जल्दी खींचो पाइप।
1: जी समझिए मनोहर जल्दी करो, पाइप नीचे लटकाओ। हाँ। और सुनो कम से कम चार पाइप का इंतजाम और करना होगा।
2: ठीक है सर, मैं और बाबू जाकर इसका इंतजाम करते हैं।
1: शंकर शंकर पाइप नीचे लटकाना शुरू करो।
0: ये लीजिए सर,
1: पाइप छोटा ना पड़ जाए। सुनो कितने कितने फीट नीचे होगा पानी?
0: अरे साहब करीब 400 फुट तो होगा ही।
1: 400 फुट?
0: पाइप 600 फुट लंबा है।
1: अच्छा
0: छोटा नहीं पड़े साहब। अरे बाबू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
3: अरे निगम साहब जब लोगों की जान चली जाएगी।
2: अरे भाई अब क्यों शोर कर रहे हैं आप लोग? देखिए पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
1: शाबाश शाबाश मनोहर, और तेजी से नीचे पहुंचाओ।
2: जी सर जी सर। सर लगता है पाइप पहुंच गया नीचे तक।
1: वेरी गुड वेरी गुड, चलो और थोड़ी सी मेहनत और करो।
2: अरे अरे अरे अरे अरे भाई अरे अरे अरे ये पत्थर कौन देख रहा? अरे कौन? अरे भाई पत्थर क्यों चला रहे हैं आप लोग? अरे पागल हो गए क्या? अरे देखिए बस आधे घंटे की बात है, पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
1: अरे पागल हो गए आप क्या?
2: जाने कौन भड़का रहा है इन्हें। साहब मुझे लगता है लोग बढ़ते जाएंगे। आइए इधर आइए।
1: वो तो ठीक है लेकिन अगर कहीं पुलिस ने हल्का सा भी लाठी चार्ज कर दिया तो ये लोग तो और भड़क जाएंगे। सुनो तुम लोग पानी निकालते रहो, मैं जाकर के समझाता हूँ।
2: नहीं साहब नहीं साहब, अरे आप मत जाइए साहब।
3: आप मत जाइए।

0: अरे कितना मना किया था साहब को,
1: भीड़ तो जैसे बेकाबू हो गई थी।
0: डॉक्टर कह रहा था खून बहुत निकल गया है।
1: उनके बेहोश होकर गिरने के बाद भी लोग उन्हें पांव से ठोकर मारते रहे। बच जाएं बस, और क्या चाहिए।
0: हम उन्हें चाहकर भी भीड़ से नहीं निकाल पाए।
2: डॉक्टर क्या कह रहा था?
1: सीरियस बता रहा था, सिर पर गहरी चोट है। अरे डॉक्टर साहब कमरे से बाहर आ रहे हैं।
3: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
4: ये मनोहर और शंकर कौन है?
0: हम हैं डॉक्टर साहब।
4: आप मनोहर हैं?
0: जी हाँ डॉक्टर साहब, और ये है शंकर
4: जी। देखिए उन्हें होश आ रहा है, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं।
0: अच्छा, होश आ गया।
4: मगर ध्यान है
0: जी,
4: ज्यादा बात मत कीजिएगा।
0: जी जी जी,
4: आइए
0: चलिए जी, आइए आइए।
4: निगम, मिस्टर निगम, देखिए आपसे मिलने कौन आया है।
0: साहब, साहब, नमस्ते साहब,
3: नमस्ते साहब।

0: तबीयत कैसी है साहब? मैं शंकर साहब। शंकर? हाँ साहब।
1: शंकर?
0: हाँ साहब।
1: शंकर
0: जी
1: मनोहर?
0: हाँ साहब।

0: सभी को बचा लिया गया।
1: निगम, निगम, ये क्या हो गया है तुम्हें? हाँ निगम, निगम, तुमने तो हद कर दी उन लोगों के लिए अपनी जान।
2: शेखर, तुम समझते नहीं हो। शेखर, शेखर, शेखर, तुम समझते नहीं हो। शेखर, बरामदे में तरह तरह के गुलाब लगा रखे हैं मैंने, एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ना, सब तोड़ ले जाएंगे।
1: निगम, I'm sorry यार, मैंने तो यू ही कह दिया था। Really, I'm very sorry।
2: ठंड ठंड है तो कहीं और जाए ना।
1: निगम,
2: कहीं
3: अब आप लोग इन्हें आराम कर लेते, इनकी हालत अच्छी नहीं।
1: ओह गॉड,
3: नर्स भैया, इंजेक्शन। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। मेरे साहब को बचा लीजिए, मेरे साहब को बचा लीजिए।

अभी आप सुन रहे थे नाटक लगन। इसके लेखक थे रोमी सिराज, निर्देशन किया मुद्रा राक्षस ने। आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: साउंड, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है। उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है।
2: प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, मत मिलन की लायो, प्रेम रतन।
1: आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान। इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का दूसरा भाग।
3: चलते रे इश्कों में पड़ जाते हैं।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने सुना कुछ ऐसी बातों

0: को जो बातें बड़ी खूबसूरत थी। हम सुन रहे थे कैसे नृत्य करते हैं हमारे बड़े बड़े कलाकार और कैसे होती है शूटिंग और उसकी ढेर सारी बातें। जी, हम आज फिर से बात करने वाले हैं अपनी कला के साथ एक फिल्म को बड़े सुंदर से मोड़ तक लाने वाली एक बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से।
1: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
0: जी, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
1: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
0: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो इस सब में आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस के लिए काम किया है, इवन एक्ट्रेस को भी डांस करवाया है, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम हमने पढ़ा था, नाम था अमिताभ बच्चन।
1: बिल्कुल।
0: और उनके साथ कुछ तो बहुत अच्छे डांसर्स हैं जो अच्छा करते हैं, उनके नाम हमने पढ़े थे, पर उन नामों में कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्हें डांस करते हुए शायद हम देखते भी हैं तो उतना समझ में भी नहीं आता है। उनसे भी आपने डांस करवाया, सनी देओल हैं, संजय दत्त हैं या और भी बहुत सारे, अनुपम खेर को भी आपने डांस करवाया है। ये बहुत सारे नाम है, इमरान हाशमी को आपने डांस करवाया है,
1: बोमन ईरानी
0: को,
1: डैनी डांसोंग
0: जी, डैनी को कैसे, मतलब वो तो बड़े,
1: हमारी फिल्म थी ऊंचाई सूरज बैजात्या जी की,
0: बहुत प्यारी फिल्म,
1: बहुत प्यारी फिल्म,
0: बहुत प्यारी फिल्म है।
1: नेशनल अवार्ड मिला है उनको ऐसे डायरेक्टर उस फिल्म पे, एज ए कोरियोग्राफर मेरा नाम भी गया था जो मुझे नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, मुझे रिवॉर्ड मिल गया।
0: नहीं, वो फिल्म ही इतनी खूबसूरत है,
1: खूबसूरत फिल्म बनाई थी, जो सोच थी उस फिल्म के पीछे,
0: वो सूरज जी उस उम्र के लोगों को एक प्रेरणा स्रोत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये था सवाल कि इनका एक गाना है, ये इतनी उम्र में पहुंच चुके हैं और उस उम्र में ये गाना अपने दोस्त को बर्थडे सेलिब्रेशन में ये गाना कर रहे हैं, जिसका नाम है केटिको केटिको सॉन्ग। हाँ, हाँ। केटिको का मतलब होता है लड़की।
0: अच्छा।
1: हाँ, नेपाली
0: शब्द
1: लड़की
0: जी, जी।
1: तो फिर वो गाना किया और पता चला कि ओ, डैनी सर को करना है, डैनी सर को डांस करवाना है, अनुपम जी को डांस
0: जी, वही।
1: अच्छा, अब इनका सबका जो लेन देन था अमिताभ बच्चन के साथ था, जो इतने ग्रेसफुल डांसर साबित कर चुके अपने आप को, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी जी, तीनों कह रहे हम कैसे करेंगे। फिर उनको रिहर्सल करवाया। मैं एक चीज और करती हूँ, एक अपने असिस्टेंट्स को वो कैरेक्टर बना देती हूँ, उनको कहती हूँ आपको उनकी तरह जीना है।
0: अच्छा।
1: रिहर्सल हॉल में हम ये प्रैक्टिस करते हैं।
0: हाँ।
1: मेरा एक असिस्टेंट अमिताभ बच्चन बन गया, एक डैनी बन गया, एक अनुपम खेर बन गया।
0: हाँ, इम्प्रोवाइजेशन चलता रहता है।
1: इम्प्रोवाइजेशन, अब आप अपने कैरेक्टर के साथ जब हम एक्टर को करके दिखाएंगे, उनको अपना आप दिखना चाहिए उनके अंदर। फिर ये कहानी शुरू हुई और फिर हमने ये गाना किया और बहुत लोगों ने सराहा और शूटिंग के दौरान भी बहुत मजा आया इन दिग्गज कलाकारों को।
0: हम वो मजा जो है ना वो सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी पसंद का दे दें, और तो इस गीत के बाद हम बताएंगे कि मजा क्या आया।
1: तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी तरफ से एक मेरा फेमस गाना जो मुझे बहुत पसंद है, अमिताभ बच्चन, डैनी डांसोंगपा, बोमन ईरानी साहब के साथ, अनुपम खेर जी, केटिको
0: केटिको, तो ये गाना हम सुनते हैं, लेकिन इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि मजा क्या आया। हमें भी उस मजे को, उस मजे वाली जिंदगी को जीना है।
1: बिल्कुल बताऊंगी, हर एक कैरेक्टर के साथ आपको थोड़ा एक उस सफर पे ले जाऊंगी।
0: जी जी, चलिए तो सुनते हैं ये प्यारा गाना केटिको, और केटिको का मतलब होता है लड़की।
1: बिल्कुल, पहाड़ी लड़की।
0: बहुत बढ़िया, चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: गाना तो सुन लिया, बहुत मजा आया, लेकिन इस गाने की जो बात आप हमारे यहाँ कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उस वचन को पूरा कीजिए और बताइए कि मजा क्या आया था।
1: तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी से शुरू करते हैं। अमित जी के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट काम किया हुआ है।
0: हाँ।
1: मुझे गुड्डी बुलाते थे सेट पर।
0: अच्छा।
1: उन्हें लगता था मैं जय बहादुर जैसी थोड़ी लगती हूँ, तो बोलते हैं गुड्डी इधर आओ। मेजर साहब फिल्म का एक गाना था
0: जी,
1: जो हम मैंने असिस्टेंट में किया था या नहीं, तो जब वो इस सेट पे आए
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा हम तो काम कर चुके हैं साथ में, तुम बहुत छोटी सी होती थी, बड़ी हो गई।
0: गुड्डी बड़ी हो गई।
1: तो मैंने याद दिलाया कि सर मैंने इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी शुरू की तो आपके साथ भी एक गाना किया है, वो रामगोपाल वर्मा का एक गाना था कम्मो कम्मो।
0: हाँ, एक गाना सुना हुआ है जी,
1: अमिताभ बच्चन और संजय दत्त वगैरह। तो अरे अरे हाँ, तुम्हारे साथ तो काम किया है, बताओ बताओ क्या करना है। मास्टर जी, अब वो मुझे मास्टर जी बुलाने लगे।
0: गुड्डी से मास्टर जी।
1: वो अपनी दो कुर्सी लेकर बैठ जाते थे पैर पे पैर चढ़ाकर, और अमिताभ बच्चन जब आपके सामने बैठा हो और आपने उनको करके दिखाना है, आप दिखाओगे मास्टर जी? ऐसे जी सर मैं करके दिखाऊंगी। तो मैं क्या लड़कों का डांस भी कर लेती हूँ, लड़कियों का भी कर लेती हूँ, जब मैं लड़कों का करती हूँ तो उसी अंदाज में करती हूँ,
0: पूरा लड़का बन जाती हूँ।
1: मैं उनको कर कर दिखाई और वो खड़े हो गया, बोले इस साला, अपने कमर पे हाथ रख दिया और मुझसे कहे हम। तो मैंने कहा मुझे लगा कुछ गलती हो गई, मैं भागती भी गई, सर क्या हुआ, कुछ स्टेप चेंज करना है, कुछ भी आप बताइए जो करना है। मैं नहीं नहीं, फिर वो चलकर आए मेरे साथ सेंटर ऑफ द स्टेज और कहने लगे मैं सर प्लीज बताइए क्या किया मैंने, कुछ तुमने इतना बढ़िया किया, मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। सोचिए उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट किया। ये है लेजेंड अमिताभ बच्चन,
0: ये बड़प्पन है,
1: आप सिखाओ मुझे। और फिर उन्होंने मुझसे सीखा। अब बोले डैनी और अनुपम तुम सब आ जाओ, देखा तुमने? हाँ सर हम तो रिहर्सल कर रहे 3 दिन से। तो ही सेड हाँ मैंने भी कल रात घर पे रिहर्सल किया था, उन्होंने एक दिन रिहर्सल किया था घर पे। सोचो इस उम्र में उन्होंने घर बुला के हमें रिहर्सल किया
0: जी।
1: और सेट पे आके वो एकदम ऐसे हो गया और मेरा एनर्जी बूस्ट कर दी उन्होंने। कि जब अमिताभ बच्चन आपको ये कहता है, क्योंकि वो उनका तरीका है अपने मास्टर्स को डील करने का, उसी दिन
0: वो परंपरा है।
1: हाँ,
0: गुरु को गुरु बनाने की।
1: और वो मुझे मास्टर जी कहते थे, तो सेट पे सब ऐसे परेशान, क्योंकि मास्टर जी आजकल कोई नहीं कहता कोरियोग्राफर्स को, बहुत कम लोग कहते हैं जो जानते हैं कि मास्टर क्यों कहते हैं मास्टर को। फिर उन्होंने एक अपना व्लॉग लिखते हैं वो, उन्होंने अपने व्लॉग में मेरे बारे में लिखा।
0: अच्छा।
1: और उस वक्त लिखा कि एक नन्ही सी बच्ची थी जो मुझे सिखाती थी और आज वो मेरी मास्टर बन गई। और आज वो एक फीमेल जो पूरे सेट को चला रही है, 1000 लोगों के सेट को, और वो मुझे भी ऑर्डर दे रही है। मुझे बहुत पसंद आता है जब ऐसे हमारी हमारी बेटियां यहाँ तक पहुंच जाती है।
0: क्या बात।
1: तब वो मेरे एक असिस्टेंट ने कहा कि सर ने लिखा, और मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई, मैं बहुत रो पड़ी, क्योंकि यही अचीवमेंट होती
0: वो
1: है।
0: आपकी आंखों में अभी भी दिख रही है
1: कि मैं बहुत खुश हो गई। ये थे अमिताभ बच्चन और फिर आते अनुपम खेर जी।
0: हाँ, उनका तो जानना है,
1: उनका जो कॉमिक टाइमिंग है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। वो इतने कमाल के एक्टर है और उसके वो रुला भी देते हैं, वो हंसा भी देते हैं कि
0: पल में
1: पल में वो है। अब उनके लिए जो असिस्टेंट करके दिखा रहा था वो उस दिन आया नहीं, और मेरी एक लड़की असिस्टेंट थी एकता, और मैं अपनी लड़कियों को तैयार करती हूँ कि तुम्हें ये करना है, जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी करोगी, और उसने वो कर लिया।
0: हाँ।
1: वो आई सेट पे, मैं अमित जी का करूँ तो उनका कर, और उस लड़की ने जब अनुपम खेर बन के दिखाया पूरा सेट, ताली बजाया, अनुपम जी सिटी बजाने लगे।
0: हाँ।
1: बहुत खुश हुआ, बोले बस कमाल, अब मैंने ये करना है।
0: हाँ।
1: और वो उछल उछल के सेट पे अपने स्टेप करते थे।

0: और पूरा सेट उस गाने में ऐसा होता था कि एक भी जूनियर और एक भी डांसर, जैसे शॉट खत्म होता है ना तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं, डांसर निकल जाते हैं, हाँ सेट में आ जाएंगे, जूनियर निकल, जूनियर्स बाहर ही नहीं जाते थे,
1: सब वहीं रहते
0: वहीं रहते थे। मतलब कि 500 लोग वहीं खड़े हैं, 100-150 डांसर वहीं खड़े हैं और एक्टरों की रिहर्सल चल रही है और हर बात पे वो हंस भी रहे, वो ताली भी बजा रहे। और बूढ़े डांसर्स थे हमारे पास, हमारे पास 60-70 के डांसर्स भी थे और वो आगे आते थे और इनके साथ नाचने लग जाते थे। तो एक अलग माहौल था उस सेट
1: जी,
0: पे।
1: जी, जी।
0: और उसके बाद डेनी सर,
1: हाँ उनका भी जाना है, वो तो इस बड़े अलग टाइप का किरदार है।
0: सीधा
1: वो
0: बोल
1: कैसे
0: देते थे आके कि देखो बेटा मैं भूल जाऊंगा, मुझे नहीं पता तुमने करना है मेरे साथ। तो कैमरा के पास हम लोग उनके लिए डांस
1: करते
0: करते
1: थे
0: रहते थे।
1: और वो कॉपी
0: और
1: करते थे।
0: बोमन ईरानी भी इतने बड़े कलाकार है, उनका भी एक अलग कॉमिक टाइमिंग चल रहा होता था। और वो बोलते थे, उनका एक पोर्शन था जिसमें उन्हें लड़की बनना था, तो मैं जो बोलते थे तुम करके दिखाओ मुझे, मैं तुम्हें कॉपी करूंगा। और फिर उनको केटी को ये दोनों इनको बोलते हैं और ये लड़की की तरह अदायगी दिखाते
1: हाँ
0: और
1: इधर
0: फिर मैं
1: आते
0: उनको
1: हैं
0: करके
1: जी।
0: दिखाती। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं ना ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कलाकारों के साथ काम करके, वो शायद मैं इतना बोलूं तो आप इमेजिन नहीं कर पाओ जो हमने जिया है।
1: फिर भी हम
0: बहुत
1: कुछ प्रतिशत तक तो पहुंच गए
0: पहुंच गए।
1: जी।
0: और फिर हमारे एक प्यारे से शर्मीले से डायरेक्टर साहब जो सूरज
1: बड़ी
0: बजातिया जी है,
1: सॉफ्टली
0: बहुत
1: बोलने
0: ही
1: वाले
0: सॉफ्ट, और
1: जी।
0: वो जब आते हैं इन सबको देखते करते हुए और वो मुझे ऐसे गले लगाते हैं, बहुत असर पे हाथ रखते हैं हर बार, बहुत अच्छा किया शबीना। तो ये कहानियां हैं जिनको हम जीते हैं, जिनके साथ हम सीखते हैं कि इस उम्र में भी उनकी जो एनर्जी थी, जो सीखने की, बच्चों की तरह वो उछलते थे रिहर्सल पे, अरे एक बार एक बार एक बार एक बार, अरे मैं गलत कर दिया, अरे मैंने ये, वो भूल जाते थे कि उनकी उम्र क्या है।
1: जी
0: मैं कहती थी सर आराम से, नहीं नहीं करना है, वो जो
1: बहुत मजा आ रहा
0: बचपना,
1: होगा ना
0: बहुत मजा
1: जी।
0: हमने उनसे सीखा कि कलाकार की कोई उम्र नहीं होती,
1: कलाकार कभी बूढ़ा नहीं
0: बूढ़ा नहीं
1: होता।
0: होता कभी, वो
1: हाँ
0: हमेशा एक छोटा बच्चा ही होता है। तो आप गाना देखिए, आपको पता चले उसमें।
1: हाँ उस गीत को देखने के बाद मजा हमको भी आया था। हम सब
0: या
1: भी उसके साथ थोड़ा डांस किए थे कि जब ये डांस कर सकते
0: तो
1: हैं तो हम
0: हम
1: तो
0: क्यों
1: कर
0: नहीं
1: ही
0: कर
1: नहीं
0: सकते हैं?
1: सकते। मैंने आपसे बात कर ली एक्ट्रेसेस के बारे में, यानी अभिनेत्रियों के बारे में। आपने हमारे पुराने जो दिग्गज हैं उन अभिनेताओं के बारे में भी बता दिया। एक अभिनेता है जिनकी हर फिल्म में शबीना का नाम लिखा ही हुआ है। साथ में शुरुआत कहाँ से हुई उनके साथ, और उसके बाद फिर शायद कोई फिल्म बीच में ऐसी थी ही नहीं जिसमें आप नहीं थी।
0: तो
1: आप समझ गई हैं मैं
0: बिल्कुल
1: किसके
0: समझ
1: किस
0: गई,
1: विषय पे बात कर रही हूं, तो मैं चाहती हूँ वो विषय आप खुद ही शुरू
0: बिल्कुल
1: करें
0: समझ गई।
1: और हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: सबसे पहले मैं ये बताऊं, आप बात कर रही हैं मेरे, जिसे मैं जिंदगी में, मैं कुछ लोगों को अपना मेंटोर गुरु मानती हूँ
1: जी
0: और मेरी जिंदगी की हर एक सफलता का जरिया मानती हूँ। उनमें अगर सूरज बड़जात्या है तो उसमें एक बड़ा नाम है सलमान खान ऑल्सो,
1: जी
0: जिन्हें मैं भाई बुलाती हूँ
1: जी
0: बहुत मोहब्बत से, और बहुत जब हाथ उठाती हूँ उनके लिए दुआ करती हूँ।
1: जी
0: क्योंकि आज भी जो आप उनका रूप बाहर देखते हैं
1: जी
0: वो 5% भी नहीं है जो वो दुनिया के लिए करते हैं,
1: जी
0: 5% भी नहीं है। तो सलमान भाई का और मेरा काम जो शुरू हुआ, मेरी पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी खामोशी, गणेश हेगड़े के साथ।
1: खामोशी द म्यूजिकल जर्नी।
0: यस, जो मैंने पहले कहा आपसे कि स्टेज के बाद जब मैं कोरियोग्राफी में आई, जो मुझे गणेश आचार्य जी ने डांस करते हुए देखा, हमारा एक हॉल होता था मंगला हॉल, वहां पे जो डांस करते हुए देखा वो गणेश हेगड़े साहब के ही गाने का डांस कर रही थी मैं।
1: अच्छा
0: गणेश हेगड़े की जो पोनी वर्मा, जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है, वो उनकी असिस्टेंट होती थी उस वक्त, वो मेरी सीनियर है और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। उनके एग्जाम्स होते थे तो गणेश हेगड़े साहब को ये फिल्म मिली थी खामोशी, जिसमें वो कोरियोग्राफी कर रहे थे, उनकी पहली फिल्म थी, मतलब स्टेज करते थे वो, और
1: जी
0: संजय लीला बंसाली थे और ये एक लड़की असिस्टेंट ढूंढ रहे थे। तो उस फिल्म में पोनी वर्मा जी ने भी एज एन असिस्टेंट किया और फिर मुझे भी मौका मिला
1: जी
0: एक स्केड्यूल करने का,
1: जी
0: और मेरे पहले हीरो थे सलमान खान,
1: ओके
0: जबकि मुझे पता भी नहीं था कि ये सलमान खान है, क्योंकि उस वक्त घर में टीवी नहीं होता था, हम फिल्में नहीं देख रहे होते थे, हमें इतना पता नहीं था,
1: हाँ
0: स्कूल में थे हम,
1: आप उस चीज को उतना समझते भी नहीं थे
0: एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थे, सीख
1: जी
0: रहे थे।
1: जी
0: और फिर उस फिल्म को करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ठीक है, पर डे इतना पैसा मिलेगा, हम गोवा चले गए,
1: हम पैसे के लिए गए थे।
0: चलो वही मास्टर है जिन्होंने स्टेज पे मेरे साथ किया है,
1: हाँ
0: कंफर्टेबल है, हम मास्टर जी समझते हैं गणेश हेगड़े साहब,
1: कोई दिक्कत
0: कोई
1: नहीं है,
0: दिक्कत
1: रिस्क
0: नहीं है,
1: नहीं
0: मम्मी ने
1: है।
0: कहा बेटा चलो करते
1: हाँ
0: हैं, देख लो
1: हाँ
0: क्या है। तो हमने

0: उनके साथ में की, और मेरा पहला हीरो सलमान खान, और उसमें नाना पाटेकर जी भी थे और मनीषा कोराला थी।
1: बहुत तो मेरी प्यारी फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म जी।
0: वो फिल्म के बाद मैं 6 महीना एग्जाम्स के लिए वापस आ गई, मेरे एग्जाम्स हुए और उसके बाद स्टेज करने लगी और फिर गणेश आचार्य जी के साथ फुल फ्लेज में फिल्म में शूट किया।
1: तो वो खामोशी में जब सलमान खान को पहली बार आपने डायरेक्ट किया, तो व्हाट यू रियलाइज कि वो बहुत अच्छे डांसर हैं या बहुत अच्छे एक्टर हैं?
0: ही वॉज अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी ऑन सेट फॉर मी।
1: हाँ, भारत की बहुत सारी लड़कियां 90 के दशक में सलमान खान का पोस्टर अपने कमरे में लगाती थी।
0: जो मुझे मतलब छोटी है लड़की, तो मुझे बड़े प्यार से बिहेव करते थे, क्या जो बता दो क्या करना है। वो भी बड़े यंग ही थे, बट वो बड़े ही सूदिंग पर्सनैलिटी थी मेरे लिए। उस वक्त कुछ भी, सब कुछ नया था। कैमरा पहली बार देखा, अच्छा ऐसे शॉट होता है, अच्छा ये कभी नहीं देखा था।
1: वही सीख रहे थे, वही कर रहे थे।
0: तो वो जब देख रही थी, मेरे लिए था कि ये तो बड़ा अच्छा हीरो है, बड़े प्यार से बात करता है, मनीषा करोला बड़ी अच्छी है, इसको बताना है। संजय लीला बंसाली से डर जाती थी मैं सेट पे कई बार। नाना पाटेकर जी से डर जाती थी, बट काम करने आए थे, बस इतनी समझ तो थी नहीं। सिर्फ सलमान खान इसलिए याद है कि ही बिहेव रियली वेल विद मी।
1: हाँ, वो शायद उम्र का भी ऐसा था कि वो आपसे उम्र में भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे।
0: हाँ, और वो समझते थे कि वो समझ रहे थे कि अच्छे बच्ची नहीं है, अभी आई है। और उस वक्त वो तो बड़े स्टार हो चुके थे
1: जी,
0: वो उनकी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी। उसके बाद मैं वापस आ गई, उसके बाद में सलमान भाई का, अब उसके बाद जब मैं कोरियोग्राफर बनी तो काफी वक्त तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं जब कोरियोग्राफर बनी, एक नियम होता है कि आप जाके सबसे मिलते हो जिनके साथ आपने काम किया है, कि गोविंदा से मिली मैं, सलमान से मिली, क्योंकि मैं उनके असिस्टेंट डेज में कर चुकी थी।
1: तो मतलब बताने
0: खामोशी
1: तो जाना
0: के बाद मैं गणेश आचार्य जी के असिस्टेंट बनी, तो सारे गाने सलमान खान के किए मैंने, जुड़वा से लेके जितनी भी उनकी फिल्में थी, रानी मुखर्जी के साथ बोलो, गोविंदा के साथ काम किया। तो सलमान भाई के साथ एक असिस्टेंट डेज में फिर रेपो बन गया, कि वो जब डांस करते थे कैमरा के नीचे मुझे बोलते थे चल तू कर, तो उन्हीं को सिखा रही होती थी, क्योंकि मैं गणेश मास्टर जी मेल है, उनके असिस्टेंट थी, उनको कॉपी करती थी, तो सबको लगता था मास्टर जी के बाद शबीना है जो अच्छा करती है उनका स्टाइल। तो तू सिखा, सनी डोली बोल रहे तू सिखा, संजू बाबा बोल रहे तू सिखा, गोविंदा जी बोल रहे तू सिखा, तो लड़कियों को भी सिखा रही हूँ, वो भी कर रही हूँ। तो एक वो एक चलन आ गया, तो वो सलमान भाई के साथ रेपो बन गया जब उन्होंने पहली बार मुझे अपनी फिल्म के लिए बुलाया। वो थी दबंग में बुलाया था सबसे पहले, पहली दबंग मस्त मस्त दो नैन गाने किया था, वो बुलाया। उसके बाद में एक गैप आया, उसके बाद में फिर जय हो में बुलाया उन्होंने, जय हो का गाना जय जय जय हो क्या करियो आजा जय हो करो, वो गाना हिट हो गया
1: बिल्कुल।
0: उसके बाद में सूरज बड़जात्या जी की फिल्म आई, शायद आगे पीछे दबंग 3 सूरज बड़जात्या की फिल्म 2014, उनके साथ काम किया। सूरज जी ने बोला मेरे गाने तो शबीना ही करेगी। फिर सलमान भाई से मुलाकात हुई, तो एक रेपो बनता था ही मेरा पहले से उनके साथ, तो आसानियां बढ़ गई, क्योंकि ही न्यू दैट ओके शबीना इज देयर चलो करेगी। वो पिक्चर मेरी जो पहली हिट हुई वो भी सलमान खान की फिल्म थी, जो प्रेम रतन धन पायो
1: जी बिल्कुल।
0: उसके पहले आशिक बनाया आपने, उसके पहले नाच आई मेरी, काफी फिल्में चली, मुझे कभी किसी के पास जाके काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। माधुरी दीक्षित फिल्म आने के बाद इंडस्ट्री का चलन था, मुझे बुलाने लगे बहुत ज्यादा, रामगोपाल वर्मा अपनी सारी फिल्में मुझे दे रहे हैं। तो ये चलता रहा। फिर सलमान भाई की फिल्म आई, पहला गाना मेरा हिट हो गया आशिक बनाया, उसके बाद सलमान भाई का गाना जिसने मुझे नाम दिया। जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी डीवीडी नहीं भेज रहे हो, पहले डीवीडी भेजते थे प्रोड्यूसर के पास के, सर देखिए मैंने ये काम किया,
1: अब इस बार डीवीडी नहीं भेजना
0: पड़ी। अब मैं प्रेम रतन के बाद डीवीडी नहीं भेजना पड़ा, इंडस्ट्री में सबको पता चल गया शबीना खान कौन है, बिकॉज मेरा वो गाना प्रेम रतन धन पायो हिट हुआ, जबकि वो गाना सोनम कपूर की स्टेप्स थी, लेकिन सलमान खान हर जगह जा रहे थे और वो स्टेप कर रहे थे सोनम के साथ। ये पहली बार हुआ था सलमान में बोलते थे अरे लड़की का स्टेप मुझसे करा रहे हर जगह, एंड ही यूज्ड टू डू आल्सो बिकॉज ही वाज डूइंग इट, वो हिट, वो
1: ऑरा क्रिएट हो गया था,
0: ऑरा क्रिएट हो गया, और वो स्टेप आज भी यूट्यूब में वो गाना सबसे ज्यादा,
1: कई लोग रील्स भी उस पे बहुत बनाते
0: हैं, उसी पे रील बनी, डब स्मैशेस बने, मैं हिट हो गई, मेरा करियर चल पड़ा। तो वो सलमान खान थे, फिर दबंग हुड़ हुड़ दबंग जब आया, उन्होंने जो
1: पैंट की जेब में उंगली डाल के,
0: वो तो गणेश आचार्य जी ने किया था,
1: जी जी
0: दो गाने उन्होंने किए, जब तीसरी दबंग का आया तो उन्होंने मुझे दिया ये गाना,
1: अच्छा
0: कि शबीना करेगी तुम करो ये गाना,
1: अरे वाह।
0: फिर वो स्लीव्स के साथ में मोमेंट हिट हुआ,
1: अच्छा।
0: तो फिर उन्होंने एक चलन हो गया कि वो, उन्होंने कभी मुझे फीमेल कोरियोग्राफर की तरह देखा ही नहीं है, उन्होंने हमेशा मुझे एक सेंसिबल कोरियोग्राफर देखा,
1: मतलब मेल फीमेल से परे
0: परे
1: एक कोरियोग्राफर,
0: एक कोरियोग्राफर है जो जज्बात समझती है, जो फैमिली बैकग्राउंड से आती है ये फैमिली समझती है। तो मुझे ट्यूबलाइट का गाना दिया उठा के, कबीर खान को बोला ये गाना तो नाच मेरी जान शबीना करेगी उसको दो। तो वो मुझे हमेशा एक ऐसा गाना

0: अपनी फिल्मों में दे देते हैं बुला के, जो उन्हें लगता है शबीना करेगी।
1: तो ये बहुत अच्छी बात है ना, साथ
0: बिल्कुल
1: लेके चल रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: और साथ सिर्फ इसलिए नहीं लेके चल रहे कि करना है, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि
0: कि ही नोज
1: कुबत है,
0: यस,
1: काबिलियत है।
0: काबिलियत को देख के
1: जी
0: उन्होंने मुझे बुलाया। राधे में उन्होंने गाना
1: जी
0: दिया,
1: जी
0: उसके बाद
1: राधे का कौन सा गाना था आपका?
0: जो परदेसिया सॉन्ग का रिमिक था, जैकलिन का और
1: हाँ
0: सलमान
1: हाँ
0: खान का,
1: हाँ हाँ वो बहुत खूबसूरत
0: वो
1: है जी
0: गाना मुझे दिया बुला के। तो एक
1: जी
0: बेस्ट गाना वो मुझे बुला के दे देते हैं, और उन्हीं की वजह से आई थिंक जब एक मेगा स्टार आप पे भरोसा करता है ना, तो आपके लिए आसानियां हो जाती है।
1: जी
0: बाकी लोगों को लगता है और सलमान खान की कोरियोग्राफर, तो वो एक चलन चल गया, मुझे बोलने लगे सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान
1: हाँ,
0: की कोरियोग्राफर।
1: तो ये गीत जो आपने और सलमान खान ने साथ में किया है, यानी शबीना खान और सलमान खान का साथ का गाना है, वो कोई एक गीत जो आप कहेंगे वो हम हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाना चाहेंगे, आपकी पसंद का, आपकी ख्वाहिश से?
0: सलमान भाई का एक हमारा साथ में किया हुआ गाना जो मुझे बहुत पसंद है, सभी गाने पसंद है मुझे वैसे, नाच मेरी जान एक गाना है, बहुत पैपी नंबर है।
1: जी

श्रोता हमारे साथ हैं शबीना खान, जो कि एक बहुत बहुत बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। और अगर मैं कहूं कि आज तक की जो लिस्ट बनी है, ऐसा कोई अभिनेता या अभिनेत्री या कोई दिग्दर्शक या कोई निर्देशक कोई नहीं बचा है जिसके साथ शबीना खान ने काम नहीं किया है, और जो भी किया है उम्दा किया है, परफेक्ट किया है और अब तक का बेस्ट किया है। हमने जब तक इनके बारे में इनके जाना या इनसे बात की है, जो अब तक उस सब में इतने सारे गाने आए हैं और हर गाना अद्भुत है, ऐसा लगता है कि वो अपने उत्कृष्टतम उत्कृष्ट पर बैठा हुआ है। तो उन्हीं में से एक और फिल्म आई थी जिसने अपना नाम पूरी दुनिया में बना लिया था, और उस फिल्म में हैंडपंप भी उखाड़ा गया, भारत के बारे में भी बात की गई। और ये फिल्म है ना, जो अपना एक कहा जाता ना, एक स्थान बना चुकी है, और कई सालों बाद वापस वो फिल्म आती है। और शायद जब ये फिल्म आई थी तब शबीना खान बहुत छोटी सी रही होंगी, और जब ये दोबारा ये फिल्म आई तब शबीना खान जो है वो कोरियोग्राफर बन चुकी हैं, और ये फिल्म इनके हाथ में आती है। फिल्म का नाम है गदर 2। ये फिल्म कैसे आपके हाथ में आई, और जो गाना अपने आप को पहले ही स्थापित कर चुका है, उस गाने को फिर से नए कलवर के साथ प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस गाने को हमने देखा था एक स्कूल के बड़े से

0: ऑडिटोरियम में मंच पे नाचते हुए. अब उस गाने को आप सड़क पे यानी एक स्थान पे एक आंगन में नृत्य करवा रही हैं, तो थोड़ा सा अगर वहां तक हमें ले जाए तो.
1: सो पहले सवाल का जवाब ये है कि गदर,
0: हाँ,
1: जब गदर रिलीज हुई थी 2020-21 में, तब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी गणेश मास्टर जी के साथ.
0: जी,
1: इस फिल्म को किया था जय बोराडे साहब ने. जय बोराडे हमारे बहुत फेमस कोरियोग्राफर, जो सूरज बढ़ जाती है की सारी फिल्म,
0: बहुत बड़े कोरियोग्राफर,
1: बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे.
0: हम साथ साथ हैं भी उनकी,
1: हम साथ साथ हैं. मैंने प्यार किया, उनकी लास्ट फिल्म थी विवाह,
0: हाँ,
1: उसके बाद मैंने ज्वाइन किया सूरज बजाते
0: विवाह है, तो सभी विवाह के पास आया था जी.
1: उसके बाद से मैंने राजश्री प्रोडक्शन को ज्वाइन किया. तो जब गदर टू कैसे आई, अनिल शर्मा जी जो हमारे बहुत ही दिग्गज, बहुत ही माने हुए डायरेक्टर है, उनके बेटे की एक फिल्म आई थी जीनियस, उसमें उन्होंने मुझे दो गाने दिए थे.
0: अच्छा.
1: जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा कि बड़ी फिल्म करेंगे साथ में.
0: अच्छा.
1: और जब गदर फिल्म आई तब उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कहा ये फिल्म तुमने करनी है.
0: अच्छा.
1: तो उन्हें लगा था दो तीन गाने देंगे, मैंने कहा सर मैं पूरी फिल्म करूंगी, अब पूरी फिल्म एक ही फिल्म करूंगी. ऊंचाई की शूटिंग चल रही थी मेरी, आई सर ऊंचाई पूरी फिल्म मैंने अकेले खुद की है, ये फिल्म भी पूरी करने दो मुझे, और मेरा पूरा वक्त आपका, आप जब बुलाओगे सुबह शाम 3 बजे रात को 4 बजे सुबह जब बुलाओगे मैं आपके साथ करूंगी, पूरी फिल्म करूंगी.
0: मतलब उतने दिनों में मैं कुछ और नहीं,
1: कुछ और काम नहीं करूंगी, क्योंकि इस फिल्म की डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी, 22 साल बाद रिलीज हो रही है. यू नो, और चैलेंज ये था इस फिल्म के साथ कि 22 साल के बाद आज की ऑडियंस सोशल मीडिया को लेकर बहुत अलग है. अगर 40% पुराने लोग ये फिल्म देखेंगे तो 60% आज के लोग देखेंगे, जो उस वक्त पैदा हुए होंगे और आज 22 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, या 27, 28 साल के होंगे. तो ये ऑडियंस तो यही मेन है अपनी, 65-70%. तो मैंने काम तो बहुत मेहनत की इस फिल्म पे, एक एक गाने को तराशा. और सवाल ये था कि आज की ऑडियंस को, पिक्चर बनी है हमारी 1970 के ऊपर,
0: बहुत पुराने समय की बात है,
1: 70s के ऊपर फिल्म बनी है, अंदाज 70s का है, कैरेक्टर 70s के, गाने 70s के अंदाज में,
0: खुशबू उसी समय की है,
1: सब कुछ उसी समय का, लेकिन दिखाना आज की ऑडियंस को है. और पुरानी ऑडियंस भी डिसअपॉइंट नहीं हो कि अरे यार ये क्या कर दिया नहीं कोरियोग्राफर ने,
0: हाँ हमारा पुराना वाला अच्छा था.
1: तो ये जो ख्याल थे ना, ये मेरी रातों की नींद उड़ गई थी. और मैंने इतनी मेहनत की इस फिल्म को लेके कि हर एक गाना मोती के दाने की तरह निकल कर आए. मैं निकला गड्डी लेके, जो आपने कहा आंगन के अंदर किया, वही चैलेंज था. सनी देओल उस वक्त, सनी देओल इस वक्त,
0: उम्र का भी अंतर
1: है, उम्र का भी अंतर है. लेकिन क्योंकि सनी सर के साथ मैंने असिस्टेंट डेज में काम किया है, हमारी एक रेपो थी, और मैंने उनसे कहा कि सर ये सिग्नेचर मूवमेंट, सबने कहा सिग्नेचर मूवमेंट अलग करते हैं, अलग करते हैं, अलग करते हैं, सर नहीं सर सिग्नेचर मूवमेंट वो मत करे, कोई और कोरियोग्राफर बोलता मैं करता हूं मेरी स्टेप, यहां पे आपकी अना, आपका ईगो नहीं आना चाहिए. अच्छा, जय मास्टर जी को एक मुझे श्रद्धांजलि देनी है, उन्होंने जो बनाया था स्टेप हाथ का, गड्डी लेके, वही स्टेप रखेंगे. उनके बेटे का जो रोल अभिनय निभा रहे थे उत्कर्ष शर्मा, जो अनिल शर्मा जी के बेटे, उनको मैंने अलग स्टेप दिया. मैंने कहा कि आप, वो 70s का बच्चा है, तो उनको मैंने स्टेप दिया राजेश खन्ना वाला, क्योंकि वो बच्चा होता है राजेश खन्ना का और उसका दीवाना. और फिर वहां जाके ये गाना बना. और अगर आप पूरी फिल्म के गाने देखो, उसमें दो गाने नए एक्ट कलाकारों के साथ निभाए गए थे जो सबसे बड़े हिट हुए. एक गाना था चलते रे इश्क में,
0: चलते रे इश्क में बहुत पसंद किया यूथ ने.
1: उसमें ये दिखाया है कि वो लड़की पाकिस्तान की मुसलमान फैमिली से ताल्लुक रखती है, ये बच्चा हिंदुस्तान से जाता है, उनका अफेयर होता है, और लड़की पाकिस्तान की ईद के दिन डांस कर रही है. तो हमने चिलमन बनवाई, क्योंकि मुझे पता है ना,
0: बहुत खूबसूरत सेट था वो,
1: चिलमन बनवा के चिलमन के अंदर वो लड़कियों के साथ नाच रही है, चिलमन के बाहर लोग ईद, और पाकिस्तान के अंदर ये गाना हो रहा है ऐसा दिखाया है, और हिंदुस्तान की ऑडियंस उसको देख रही है. तो वो गाना इतना सुपरहिट हुआ कि लोग आज गदर के बाद फौरन चलते रे इश्क में कहते हैं गाना, इतना खूबसूरत. और उत्कर्ष शर्मा का एक गाना हिट हुआ था जो झूम झूम गाना था. तो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, पूरी दुनिया के लोगों ने, तो मैं ये कह रही हूँ फिर से कि मेहनत ही मेहनत, कंसिस्टेंसी, लगन, और बार बार एक चीज को सोचना, करते रहना, रातों की नींद गवाना, बेचैन रहने से ही आप गदर टू जैसी फिल्म को दर्शा सकते हो.
0: फिर से वही बात, मेहनत तो करनी पड़ेगी,
1: करनी पड़ेगी,
0: बिना
1: आपको
0: मेहनत के
1: हर बार साबित करना पड़ेगा. आप बैठ नहीं सकते पीछे.
0: यानी कि आपने इतनी बड़ी बड़ी सुपर डुपर हिट दे दी, बहुत सारे अवार्ड्स आपने ले लिए, लेकिन जब गदर 2 सामने आई, ऊंचाई में इतने सारे बुजुर्ग वाले लोगों को भी आपने काम करवा लिया, यानी

0: बुजुर्ग भाई नहीं बोलना चाहिए, वो दिग्गज बोलना चाहिए।
1: दिग्गज
0: भारत के वो सबसे बढ़िया कोहिनूर हैं, और कोहिनूर सबको है। आपने काम करवा लिया, और उसके बाद क्योंकि इन्होंने उस समय जो काम करके दिया है 70-60 से लेके 80-90 के दशक तक, और उसके बाद भी वो करते ही जा रहे हैं, पर वो जो किया है वो तो खैर बात ही अलग है। और उनसे काम कराने के बाद गदर 2 में भी वही पसीना बहा रहे हो, एसी कमरे में बैठे हो लेकिन पसीना तो आ रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें मेहनत करनी चाहिए, ये बात, ये सीख हमारे छोटे छोटे जो श्रोता हैं उन तक बात पहुंचनी चाहिए और पहुंचती है। इतने सारे लोगों के साथ डांस किया, इतने सारे लोगों को काम कराया, राजपाल यादव एक नाम आता है।
1: मेरा पहला हीरो। मेरी पहली फिल्म का पहला हीरो।
0: अच्छा,
1: बिल्कुल। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मैं हीरो तो राजपाल यादव ही थे
0: जी,
1: तो मैं तो उनके जिंदगी भर अभी भी मिलती हूँ तो बोलती हूँ मेरा पहला हीरो।
0: हाँ, तो हमारा प्रश्न यहाँ पे ये आ रहा है कि वो तो कॉमिक साइड में जाते हैं, कॉमिक साइड को डांस में या कोरियोग्राफी में कैसे कन्वर्ट कर पाते हो, क्योंकि कोरियोग्राफी में भी वो जो कॉमिक टाइमिंग है या वो जो मजाक मस्ती है या वो जो हल्की सी एक छोटी सी बात ही होती है, राजपाल यादव के साथ जो उनका अभिनय है वो एक हल्का सा किरदार थोड़ा सा घूमता है, उतने में भी जनता जो है जो देख रही होती है वो हंसना शुरू कर देती है।
1: बिल्कुल।
0: तो उनके साथ कैसे आपने काम किया?
1: मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग एन एक्टर मायसेल्फ, मैंने एक्टिंग सीखी है
0: जी,
1: तो सबसे मुश्किल काम होता है हंसाना लोगों को।
0: रुलाना आसान है,
1: हंसाना बहुत मुश्किल है। और वही काम मैंने कहा ना, जैसे ऊंचाई में केटी को मैं अनुपम खेर के बारे में कह रही थी मैं, वैसे ही राजपाल यादव है, जितना बंदा उछल उछल के हंसाता है वो उतना रुला भी देता है आपको एक मिनट के अंदर। और जिसके अंदर ये एक रिदम है, जिसके अंदर कॉमिक टाइमिंग होती है उसके अंदर रिदम होता है, तो डांस करना तो बाएं हाथ का खेल है।
0: अच्छा,
1: उसके बाद मैंने उनके 2-3 गाने किए जिनमें उन्हें नचाया है, और वो बराबर टाइमिंग पर डांस करते हैं।
0: क्या बात है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे बढ़िया बेहतरीन अभिनेता अभिनेत्रियां भी हमारे यहाँ पे हैं। आपने कुछ साउथ के डांसर्स के साथ भी काम किया?
1: काफी काम किया
0: है ना, साउथ के अभिनेताओं के साथ, अभिनेत्रियों के साथ काम किया। तो क्या अंतर है बॉलीवुड और दक्षिण भारत की काम में?
1: जिस वक्त मैंने काम किया, मैं बात करी हूँ 2012-13 की, मैं इतना काम करती थी वहां पर कि मुझे मुंबई आने का वक्त नहीं मिलता था
0: जी।
1: तमन्ना, कार्तिक, सूर्या, पवन कल्याण, ऐसे कई नाम हैं जिनके साथ मैंने काम किया। एक चीज जो मैं उस वक्त वहां देखती थी, डिसिप्लिन। अगर वो 7 बजे की शिफ्ट रखते हैं तो 7 बजे पहला शॉट होना चाहिए। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ।
0: 7 बजे रखते हैं तो 7 बजे शॉट होता है, मतलब उसके पहले लोग
1: उसके
0: आते हैं।
1: पहले 6 बजे सब आके सेटअप करके रेडी होके एक्टर शुड टच द सेट,
0: मतलब एक्टर 5 बजे आके मेकअप करा के तैयार होकर बैठा होगा।
1: अगर आप वो डिसिप्लिन देखा है कि मैंने डायरेक्टर को पैकअप करते हुए देख लिया कि एक एक्टर सिर्फ 10 मिनट लेट आया तो ही कॉल्ड मी असिस्टेंट के साथ, मैंने एक्टर के साथ रिहर्सल किया, शॉट दिखाया डायरेक्टर को और डीओपी को, शॉट की रिहर्सल हो गई, बस टेक बोलने वाले, हीरोइन ने गाउन उतारा, बोला पैकअप। बड़ी हीरोइन, मैं नाम नहीं लूँ, क्यों? ही सेड, अम्मा यू एंटर्ड इन द सेट एट 7:10, सो टुमारो वी रोल दिस एट 7।
0: सेवन मीन सेवन,
1: सेवन पैकअप। शी स्टार्टेड क्राइंग, ही सेड नो प्रॉब्लम। सो ये एक, इसे आप रूडनेस नहीं बोलते हो, इसको कहते हो कि आपको कभी कभी जब चीजें सीधी करनी होती है तो थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाना होता है। वही किया। नेक्स्ट डे 6:30-7:45 में लड़की बैठी हुई थी वहां पे, जबकि उसकी गलती उस दिन भी नहीं थी, लेकिन ये एक तरीका है उनका काम करने का। लेकिन अब हमारे यहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि हम वक्त पे काम शुरू कर देते हैं।
0: अच्छा,
1: तो और कहते हैं ना कुछ एक्टर बहुत लेट आते हैं,
0: हाँ।
1: बट लोगों को ये नहीं पता कि वो लेट आने के बाद भी 8 घंटे का काम 4 घंटे में खत्म करके देके निकल जाते हैं,
0: क्योंकि वो इतना क्विक है।
1: एब्सोल्युटली।
0: हाँ, तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है तो एक गाना और बनता है, क्योंकि हम तो इंफोटेनमेंट वाले हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और एंटरटेनमेंट भी करते हैं। तो एंटरटेनमेंट के लिए कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
1: मेरा बहुत फेवरेट गाना गदर 2 का, चल तेरे इश्क में खो जाते हैं।
0: क्या बढ़िया, बहुत खूबसूरत सा गीत है। तो ये गीत हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और हम आपके काम के इश्क में खो जाते हैं उतनी देर के लिए। बहुत खूबसूरत काम किया शबीना जी, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं इस गीत की तरफ।

0: हालांकि शबीना जी, हमने आपसे बात की, लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी देर में आपको समेट पाना बहुत कठिन है। फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने आपसे बहुत सारी बातें कर लिया, ऐसा हम मान रहे हैं खुद से। हालांकि हम भी जानते हैं कि अभी बहुत सारे गानों की बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपसे सुनी जा सकती हैं, और रोचक तथ्य और रोचक बातें आपकी सुनने को मिलेंगी, और हम चाहेंगे कि सुने भी एक आध। लेकिन उसके पहले एक बात बनती है कि शमीना खान यानी छोटी सी 7वीं 8वीं की लड़की आई थी इंडस्ट्री में, उसने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके बहुत बड़ी बन गई। अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले, फिल्म फेयर मिला, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो हम चाहते हैं कि वो अवार्ड्स जब आप ले रहे थे कैसा लग रहा था, कौन था जो आंखों के सामने आया था कि यार थैंक यू तेरे कारण मुझे ये मिला है।
1: मेरी अम्मी, मुझे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला
0: जी,
1: तो मैं मुंबई में थी नहीं, प्रेम रतन धन पायो के लिए मुझे इनविटेशन आया, मैं मुंबई में थी नहीं, तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी चल नहीं पाती थी उस वक्त, उनका बैक का ऑपरेशन हुआ था।
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा अम्मी तुमको जाना पड़ेगा, ये तुम्हारा अवार्ड है, क्योंकि जिंदगी भर से मैंने सोच के रखा था कि जब भी अवार्ड मिलेगा मैं अकेले नहीं जाऊंगी स्टेज पर,
0: माँ को साथ लेके
1: अम्मी को ले जाऊंगी, क्योंकि ये उनका अवार्ड है। हर एक कदम चली मैं थी, बट दिल और दिमाग उनका था, मुझे इतनी तरीके से सलीके से पालना,

0: इस तरह बनाना, इतना सोच समझ के चलने वाली लड़की, बचपन में हमें क्या पता होता है? कुछ नहीं पता होता है। हमारी माएं होती है जो हमें,
1: और उस जनरेशन के बच्चों को कुछ नहीं पता होता था।
0: एग्जैक्टली, हमारे पास टीवी नहीं, रेडियो
1: हाँ
0: नहीं, ये
1: जी,
0: हम सिर्फ अपनी माँ को सुनते थे,
1: हाँ
0: उसको देखते थे, उस जैसे बनना चाहते थे। बाल तुम्हारे लंबे हैं, मुझे भी बाल लंबे चाहिए, तुम ऐसी दे, मेरी माँ मेरी हीरोइन है, मेरा बाप मेरा हीरो है। हम यही थे ना उस
1: कई बार
0: जनरेशन के
1: ऐसा होता था,
0: बच्चे।
1: पूछते थे बड़े होके क्या बनना है, तो मम्मी बनना है।
0: मम्मी बनना है या टीचर बनना है।
1: जी
0: हमारी हमारी
1: जी
0: टीचरें भी हमारी बहुत बड़ी,
1: बिल्कुल,
0: आजकल वक्त बदल गया है, लेकिन हमारी टीचरें हमारी पहली बात
1: रोल
0: होती थी।
1: मॉडल
0: हम
1: होती
0: टीचर
1: थी।
0: रोल मॉडल होती थी हमारी टीचर,
1: बिल्कुल।
0: हमारे सर, हमारे टीचर, हमारे ट्यूशन टीचर, यही होता था।
1: जी
0: तो मैंने हमेशा सोचा था अम्मी को ले जाऊंगी और उनके हाथ में अवार्ड दूंगी और फिर उनको बोलूंगी मुझे अवार्ड दे। तो कई बार ऐसा भी हुआ, मैं पहुंची और मुझे अवार्ड नहीं मिला, किसी और को मिल गया। मैं स्पीच रेडी करके
1: नॉमिनेशंस में
0: गई,
1: आते हैं।
0: नॉमिनेशंस में मैं थी, तो जब ये अवार्ड मिला, देखो कुदरत ने भी मेरे मैनिफेस्टेशन को कैसे हाँ किया। कहते ना, हम जो मानते हैं वो ही मिलता है कुदरत
1: मिलता है।
0: से। मैं मुंबई में हूँ नहीं, बैंगलोर में शूट कर रही हूँ, फोन आया आपको अवार्ड मिल रहा है, वो भी ओरिजिनल दादा साहब फाल्के अवार्ड।
1: क्या बात है।
0: या तो अम्मी को फोन, अम्मी बोले बेटा मैं जा नहीं पाऊंगी। मैंने अपने भाई को फोन किया, सर बेटा व्हील चेयर पर ले जाना अम्मी को,
1: पर लेके
0: बट
1: जाना।
0: लेकर जाना, मैं चाहती हूँ अम्मी जाए। मेरी अम्मी गई, उन्होंने वो दादा साहब फाल्के अवार्ड लिया और वहां पे उन्होंने बोला मेरी बेटी के लिए मैं ले रही हूँ। वो अवार्ड मेरी माँ को मिला है, कम से मेरा अवार्ड नहीं है वो।
1: जी
0: तो उस अवार्ड को मैं बहुत अलग नजर से देखती हूँ।
1: जी
0: उसके बाद पटाखा फिल्म के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन,
1: जी
0: उसके बाद मराठी फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड, मैंने मराठी फिल्में भी की
1: जी
0: है। उसके बाद बस वहां से सिलसिला शुरू हुआ, कई सारे अवार्ड्स मिले।
1: अब अलमारियां भर चुकी हैं।
0: हाँ काफी कुछ काफी कुछ। अब तो खैर बहुत सारे अवार्ड्स हो चुके हैं,
1: जी
0: बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिनके अभी भी फोन आते हैं और हम कभी जा पाते हैं कभी नहीं जा पाते। लेकिन जिसको मैं सराहती हूँ बहुत ज्यादा, फिल्म फेयर और दादा साहब फाल्के अवार्ड, अजीज सिने अवार्ड, और गदर भी, सारे गदर के
1: जी
0: गाने भी अवार्ड्स में थे। फिर
1: जी
0: एक नेशनल अवार्ड के लिए मैं 3 बार नॉमिनेशन में आई हूँ।
1: क्या बात है।
0: देखो आपके सारे श्रोता मेरे लिए दुआ करें और मुझे नेशनल अवार्ड इस साल
1: हम
0: मिल
1: सबकी
0: जाए,
1: प्रार्थना है कि आपके हाथ में
0: बस
1: नेशनल अवार्ड आना
0: नेशनल
1: चाहिए,
0: अवार्ड आ
1: जिसने
0: जाए।
1: इतनी मेहनत की है, अपना पूरा जीवन दिया है और किरदारों को खुद के नजरिए से हम तक पहुंचाया है,
0: बिल्कुल
1: या कहें कि किरदारों के रूप में खुद हमारे सामने आई है, तो उसको मिलना तो चाहिए। तो हम सबकी दुआएं, हम सबकी प्रार्थनाएं आपके लिए रहेंगी। तो कोई एक गाना जिसने आपको बड़ी खुशी दी हो, ऐसा मन किया हो कि हम खड़े हैं तो 3 फीट ऊपर उछल जाएं और थोड़ा नाच लें और थोड़ा नाच लें, ऐसा कोई गाना जिसको करने के बाद बड़ा मजा आया हो या करवाने के बाद?
0: ऐसा एक गाना है तो जरूर, हमारे लेजेंडरी मेगा स्टार सलमान खान का गाना है। उस गाने की हर लम्हा उसका मेरे लिए कीमती था, क्योंकि एक फीमेल कोरियोग्राफर को हुर हुर दबंग गाना देना
1: जी
0: पहली
1: सही
0: बात
1: बात है।
0: अपने आप में बहुत।
1: जी
0: वो गाना जब हम कोरियोग्राफी कर रहे थे तो मेरा जो मेल असिस्टेंट है, मेरा भाई शर्जिल, वो मेरा राइट हैंड है हमेशा से। जब हम
1: आपने
0: दोनों
1: बताया
0: नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि जमाना कैरेक्टर को
1: अलग।
0: देख रहा है, एक
1: जी
0: लेवल अलग है। वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है।
1: जी
0: उसके बैक में प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि उससे
1: अच्छा,
0: एक गाने पहले वो इंजर्ड हो गया था,
1: ओ
0: अब वो डांस कर नहीं पा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर है प्रभु देवा, जो मेरे गुरु रह चुके हैं,
1: जी
0: सलमान खान साहब ने इतना बड़ा गाना दिया है। तो मैं थोड़ी सी ऐसी हो गई कि मैं फीमेल हूँ, हुरूर दबंग मुझे करना है और मैं चाहती थी कि शर्जिल के ऊपर किया जाए और वो इंजर्ड है, तो मैं क्या करूं। तो मैं जब रिहर्सल हॉल पे जाऊं तो अपने 20 लड़के जिनके साथ मैं कंपोज कर रही थी, मेरे अपने डांसर, उनमें से चुनती रहूं, ढूंढती रहूं कि कोई है जो ऐसा परफॉर्म कर
1: किससे
0: सके।
1: करवा दें।
0: क्योंकि वो गाना जब मैं कंपोज कर रही थी उसमें एक दबंग वाला एक वो था ऑरा, और वो गाना जो था इस बार वाला, वो उस पावर से कनेक्टेड हमें करना था जो ऊपर से आता है,
1: जी
0: वैसा पावर चाहिए था।
1: हाँ
0: मुझे मिले ही ना, मिले ही ना, और मैं गाना कंपोज करती जा रही हूँ, डांसर लड़कों को सिखाती जा रही हूँ और ढूंढ रही हूँ कोई एक लड़का मिल जाए। और फिर तीसरे दिन मुझे सारे डांसर और मेरे अपने भाई ने बैठ के बोला कि यू परफॉर्म,
1: ओ
0: यू शो इट टू प्रभु देवा, यू शो
1: ओके
0: इट टू एवरीबडी।
1: ओके
0: लड़कों ने बोला मैम देर इज नो अदर डांसर हु कैन डांस लाइक यू द वे यू आर डूइंग दैट सॉन्ग। तब प्रभु सर जब आए और मैंने सोचा यार सच में,
1: प्रभु देवा के सामने
0: जब
1: डांस
0: प्रभु
1: कर
0: देवा
1: रहे
0: के साथ सामने
1: हो।
0: जब वो आए बोले यू विल डू इट, वाई वाई वाई यू, सर एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद जब मैंने करके दिखाया, वो भूल गए कि मैं लड़की हूँ। प्रभु सर वो बस मुझसे डिस्कस करते रहे। फिर हम सेट पे पहुंचे, सलमान भाई वैसे ही रिहर्सल नहीं करते, सेट पे पहुंचे, हम कर रहे थे ये गाना शूट, हम इंदौर में कर रहे थे गाना। तो जैसे हमेशा की तरह सलमान भाई ने सोचा नहीं कि मैं लड़की

0: हूँ, लड़का हूँ, कौन हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ। मुझे बोले चलो पूरा गाना करके दिखाओ। अब पूरा गांव वहां पे खड़ा है सेट पे। सलमान भाई आए तो पूरा गांव खड़ा हुआ है।
1: तो आए गई
0: और मैं भी भूल गई कि मैं लड़की हूँ भाई, मैं तो कोरियोग्राफर हूँ। हमेशा की तरह दबंग अंदाज में मैंने वो गाना गांव के सामने किया। पूरा गांव शूट कर रहा था एंड दे ऑल क्लैप्ड। सलमान भाई बोले करवा लेना मुझसे तुम ऐसे बस। वो जो शूट होके आया और लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया, मैं अपने आप में हैरान थी। मेरे सारे लड़कों ने मुझे ऊपर उठा लिया कि मैम व्हाट वाइब्स यू गिव। तो उस वक्त मैं तो कोरियोग्राफर थी ना, मैं लड़की थी नहीं। अच्छा अब शूटिंग शुरू होती है और मैं हर शॉट मैं करके दिखा रही हूँ बिकॉज माई असिस्टेंट शर्जिल वॉज ऑन सेट बट ही कुडंट डू इट। नाउ मुझे ही करना है, शॉट लगाऊं करके भी मैं दिखाऊं, भाई को भी सिखा रही हूँ कर भी रही। अब ये पूरा जो गांव के लोग है वो खड़े रह के देख रहे हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन
1: वो समझ रहे उस
0: वो
1: चीज़ को।
0: देख रहे हैं मुझे, देख रहे हैं। अब मैं रोजों में थी, उस वक्त रमजान चल रहा था, मेरे रोजे भी चल रहे थे। अब ये गाना खत्म हुआ, जैसे ही सब हो गया, लास्ट शॉट एंड एवरीबडी स्टार्टेड टू लीव और मैं अपने होटल की तरफ ऊपर जा रही हूँ, एक मजमा सा मेरी तरफ भागता हुआ आया। और मुझे लगा ये लोग आके मुझे बोलना चाहते होंगे सलमान खान से फोटो दिलवा दो, ऐसे कुछ होगा। और मैं बोली अरे अरे अरे रुको रुको, मुझे जाने दो फिर चले जाओ मुझे जा। जैसे नहीं मैम, वी वॉन्ट टू, दे आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड गांव के आसपास के लोग एंड दे सेड कि आपके साथ फोटो उतारना है।
1: क्या बात।
0: एंड देन वो फोटो उतारे, ऑटोग्राफ ले। मैं एकदम हैरान थी। उसमें से पूरे ग्रुप ने लास्ट में मुझे बोला मैम वी वॉन्ट टू गिव यू वन नेम टूडे। और लड़कियां थी उसमें 50 के करीब। आज के बाद हम जब भी आपका नाम ले, आपका नाम दबंगिनी होगा, असली दबंग आप हो हमारे लिए।
1: अगर शबीना बन गई दबंगिनी
0: तो उन्होंने मुझे ये खिताब दिया कि आप हमारी दबंगिनी हो।
1: जी
0: तो आज भी वो सारे लोग जो खड़े थे वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे है। मेरी पोस्ट देखते और मुझे पोस्ट बताते हैं कि आप दबंगिनी शबीना खान दबंगिनी। तो वो एक सिलसिला सोशल मीडिया पे उस वक्त शुरू हुआ था।
1: जी
0: तो ये इस तरह की अचीवमेंट्स भी होती है आपकी जिंदगी में कभी कभी,
1: जी
0: कि आपको नहीं पता जाने अनजाने में आप किसी के हीरो बन जाते हो।
1: ये अचीवमेंट शायद आपके सच्चे मन, बच्चे जैसा दिल
0: बिल्कुल
1: और अच्छा काम,
0: बिल्कुल
1: इसके कारण आपको
0: बहुत
1: ये सब मिली
0: जरूरी है।
1: जी
0: रोटी की भूख खत्म ना हो पेट में
1: जी
0: और नींद ना आए, बेचैनी से आप अपना काम करते रहो।
1: जी बड़ी खूबसूरत सी बातें आपके साथ चल रही हैं। तो दबंगनी शबीना खान हमारे बीच में है, तो दबंगनी शबीना खान को एक गीत तो सुनवाना बनता है, वो गीत हम आपको सुनवा देते हैं। और गीत के परे हम आपसे हमारे उन्हीं बच्चों से कुछ कहलवाना चाहेंगे।

0: तो शबीना बोलूं या दबंगनी बोलूं? तो शबीना खान जी, आपका फिर से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में बहुत प्यार से स्वागत है। और अब जो है हम चल रहे हैं हमारे, हालांकि बातें तो दो महिलाएं बैठी हैं तो खत्म नहीं हो सकती, और उसके बाद बात यह है कि आपके पास तो कितना सारा, कितना कुछ है आपके पास जिसे हम अगर चाहें तो शायद एक बार में खत्म नहीं होगा। तो विविध भारती आपसे चाहता है कि एक बार और आना, एक बार और कह के जाना अपने जो मन का है जितना है, लेकिन अभी जो है वो हम कहलवाना चाहते हैं आपसे कि जो जीवन जिया है ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बड़ी, जो आप कह रही हैं इतनी देर से कि नदी बह रही है उसके साथ हम बहते जा रहे हैं, तो जब नदी के साथ बहते हैं तो बीच में चट्टाने, पत्थर, कांटे, बहुत कुछ आता है। ऐसा सबके जीवन में आता है, तो आपके जीवन में भी आया होगा। तो हम चाहते हैं आप हमारे श्रोताओं में उन बच्चों को बताएं जो कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, जो डांसर बनना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश।
1: सो बिना तकलीफ के तो राहत कभी नहीं आती। तकलीफ है तभी हमें राहत का मजा पता चलता है। तो तकलीफें बहुत आई, अभी तो हमने सिर्फ सक्सेस की बातें की हैं। ऐसे कई लम्हात, कई दिन, कई महीने, कई साल गुजरे जब काम भी नहीं होता है आपके पास।
0: अच्छा,
1: ऐसा भी होता है, क्योंकि जब आपका नाम होता है ना, वो अपने साथ एक बहुत बड़ी चीज लेकर आता है कि अरे सलमान खान की कोरियोग्राफर है, महंगी होगी।
0: हाँ,
1: तो आपके पास लोग नहीं आते। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा मैं तो महंगी नहीं हूँ, तो आओ तो सही पता चलेगा क्या
0: पूछो तो।
1: ये एक चीज है। दूसरी चीज, एक लड़की होना, एक लड़की होना, एक लड़की जो बचपन से आप कहें अल्हड़ उम्र के अंदर भी मैंने कदम यहीं पे रखा। मैं 15 साल की थी तो मैं 20 साल की भी यहीं हुई, 20 की हुई तो 22 की भी यहीं हुई, 25 की भी हुई है। तो ये जो एक दौर होता है जब आपको लोग अलग नजरिए से देखते हैं,
0: कैशव और पूरा जवानी सब यहीं निकली,
1: यहीं पे गुजरा है, तो मैंने वो भी देखा। और एक वक्त था जब कुछ लोगों के साथ मैंने जुड़ना नहीं चाहा, तो मैं घर बैठ गई। एक वक्त था जब मुझे घर बिठाया गया, ये नहीं करोगी तो ये होगा, मैं बैठ गई घर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि सबर का दामन थामे रखो, हमेशा पेशेंस जिसे कहते हैं, सबर रखो। ऊपर वाले ने जो आपको दो ताकतें मिली है, एक ये कि ऊपर वाले ने आपकी कुंडली लिख दी है, दूसरा ये कि आपकी अच्छी आदतें, आपकी अच्छी नीयत, सिर्फ वही चीज ऊपर वाले की लिखे को बदल सकती है। ये सारे चीजें यही कहती है कि आपका कर्म आपके आने वाले कदमों को अच्छा या बुरा बना सकता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि हड़बड़ाहट में, पानी की लालसा में, चाहत में अगले ही कदम गलत कर दोगे तो भी आपको थपेड़े तो मिलेगी ही मिलेगी। तो क्यों ना हम सबर कर लें, थोड़ा बैठ लें, थोड़ा इंतजार कर लें, थोड़ा दुआओं की ताकत को आजमाएं,
0: थोड़ी एहतियात बरते,
1: थोड़ा मंदिरों में जाके बैठ जाए, सुकून ले ले, और उसको बोले कि मैं तो मेहनत करने तैयार हूँ, बट रास्ते तू देख ले। लेकिन वो सब आप तब कर पाओगे जब आपके अंदर सबर होगा, संयम होगा। संयम रखो, भाग भाग के तकदीरों को खराब मत करो, संयम से काम लो, और मेहनत और चाहत ऊंचे की। यू नो आई ऑलवेज से चिन अप प्रिंसेस, कीप योर चिन अप। तो आपकी डिग्निटी आपके सिवा कोई अपने ऊपर नहीं रख सकता, आपकी डिग्निटी आपको अपने हाथ में रखनी है, आपके माँ बाप की मर्यादा आपको अपने हाथ में रखनी है। और मर्यादा जब मैं कहती हूँ उसका मतलब ये है कि सबर तभी रख पाओगे जब आपके अंदर संयम हो, सबर हो, वो रखो। और अपनी बनने की चाहत को, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी खत्म मत करो। आज आप कुछ नहीं हो, लोग आपकी बात को बोलेंगे अरे क्या बोल रही है, हट, कहीं सुन लिया होगा, लेकिन यही बातें आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस ही आगे बढ़ के सहारा देगा। अपने पे भरोसा करना कभी मत छोड़ो।
0: आपने शॉर्टकट पकड़ा होता तो शायद आपको, आप आज यहाँ बैठ के बात नहीं कर रही होती, और आपने धीरता रखी, गंभीरता रखी, तो आज आप यहाँ बैठी हैं, और इतनी यहाँ नहीं बैठी हैं, आप कई सारे दिलों पे राज कर रही हैं, कई सारे गीतों के माध्यम से राज कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है शबीना जी। तो आपसे जब बात की तो बहुत सारी शिक्षाएं निकली, छोटी छोटी बातें शिक्षाओं के रूप में निकली, और सबसे बड़ी शिक्षा निकली मर्यादा। और आपने एक

0: रोज हम साथ में बैठे और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। लेकिन शबीना जी, यहां तक आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती परिवार का एक नया हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद।
1: मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का शुक्रिया कि विविध भारती को आपने अब तक उस शिखर पे रखा हुआ है। यहाँ पे आना, यहाँ के एहसास को जीना, यहाँ की सच्चाई जो मैंने आज फील की है, आई होप ये सच्चाई और ज्यादा से ज्यादा लोग जिए इसको। विविध भारती का शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी हियर।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच।
0: आपका बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

नमस्कार, जय हिंद। यह आकाशवाणी उज्जैन है, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। आप सभी श्रोताओं को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महाकाल की इस पावन नगरी ऐतिहासिक अवंतिका के आंचल से मैं हूं आपका दोस्त और प्रस्तोता विनय। आज हवाओं में एक अलग ही उमंग है, एक अलग ही गर्व है, तिरंगे की आन बान और शान का पर्व। और शाम के 5 बज चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं कार्यक्रम आज़ादी के शुभ संदेश देशभक्ति गीत के साथ। आज बहुत सारी आपसे बात करनी है और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे कई सारे श्रोताओं ने बहुत सारे शुभकामना संदेश भी भेजे हैं। अगर हम बात करें शुभकामना संदेशों की, तो द कैसरी फार्म एंड रिजोर्ट नरवर के संचालक ऋषभ राज सिंह चौहान जी ने शुभ संदेश भेजा है। साथ ही नैतविक सोशल वेलफेयर सोसाइटी की डायरेक्टर डॉक्टर श्वेता शर्मा जी के द्वारा भी भेजा गया है। आइए, शुभकामना संदेशों की लिस्ट बहुत ही लंबी है, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, शुभकामना संदेशों की लिस्ट वास्तव में बहुत बड़ी है, जिसमें हमें शुभकामना संदेश भेजा है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चेष्टा, वृद्धि और देवी विजय जी की तरफ से, बॉडी गैराज जिम और जयंत गिरी जी की तरफ से, पैरामाउंट ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, मंगल कृपा होमस्टे रविशंकर नगर उज्जैन के बादल गुप्ता जी की तरफ से, गोल्डन ग्रुप परिवार अवंतीपुरा उज्जैन की तरफ से, फ्यूचर विजन कॉलेज उज्जैन की तरफ से भी बधाई संदेश भेजा गया है।

0: नव भारत के सृजन में स्वस्थ रहे हर जन, ऐसा करें श्रेष्ठ काम, बढ़ाएं भारत की शान। द योगांग फाउंडेशन की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं।
1: डॉक्टर काबरा एडवांस ऑर्थो केयर की ओर से सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं मजदूर नेता कॉमरेड राम सिंह जी एवं परिवार परिहार परिवार उज्जैन की तरफ से भी 15 अगस्त पर शुभकामना संदेश भेजे गए हैं। साथ ही साथ इस स्वतंत्रता दिवस पर कुमारी वैष्णवी पाटीदार सुपुत्री डॉक्टर पंकज पाटीदार निवासी 3 सुदामा नगर उज्जैन सेकेंड ईयर आयुर्वेद की छात्र हैं, इनके द्वारा भी भेजे गए हैं। महाकाल ज्योतिष केंद्र ज्योतिषाचार्य पंडित सतीश नागर जी पद्मावती कॉलोनी उज्जैन की तरफ से भी शुभकामना संदेश आए हैं।

0: डॉक्टर पंकजा सोनवलकर, निर्मला कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य हूँ। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आकाशवाणी के श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: नमस्कार, मैं तृप्ति वैद्य, लघु उद्योग भारती मलवाचल महिला प्रभारी, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आप सभी सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता को अपनाकर अपने आत्मसम्मान के साथ सशक्त भारत का निर्माण करें। धन्यवाद।
2: गाड़ी हो स्टाइलिश तो सफर हो बेहतरीन, और गाड़ी को स्टाइलिश बनाते हैं श्री मणिभद्र कार डेकोर।
3: श्री मणिभद्र कार डेकोर लाया है कार लेने वालों के लिए एक खास मौका, जहां है ढेरों सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम्स और कार एक्सेसरी के लाजवाब ऑप्शंस।
2: विजिट करें श्री मणिभद्र कार डेकोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, नाना खेड़ा, उज्जैन।
4: श्रोताओं, शुभकामना संदेश की लिस्ट काफी बड़ी है, लेकिन फिर भी हम अगर बात करें तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रुद्राक्ष होम्योपैथिक फार्मेसी 10 कालिदास मार्ग सबवे के सामने फ्रीगंज उज्जैन से भी हमें शुभकामना संदेश आए हैं। ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल उज्जैन की तरफ से भी ये मिले हैं। पल्स केमिकल प्राइवेट लिमिटेड आनंद गुजरात की तरफ से भी जो है हमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामना संदेश भेजे गए हैं। साथ ही साथ नरेंद्र हुकुमचंद कछवाया, चेयरमैन हुकुमचंद कछवाया पूर्व सांसद मेमोरियल ट्रस्ट, पूर्व उपाध्यक्ष भाजपा ग्रामीण जिला उज्जैन की तरफ से भी शुभकामना संदेश आए हैं। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा देशभक्ति गीत।

0: प्रोफेसर मनोज धवन की ओर से आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।
1: सब इंस्पेक्टर निकिता गोमे की ओर से आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।
2: आकाशवाणी उज्जैन के सभी श्रोताओं को मैं सुनीता जाटव स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ।
3: मैं काजल जाटव आकाशवाणी उज्जैन के सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। जय हिंद।
4: गाड़ी हो स्टाइलिश तो सफर हो बेहतरीन, और गाड़ी को स्टाइलिश बनाते हैं श्री मणिभद्र कार डेकोर।
5: श्री मणिभद्र कार डेकोर लाया है कार लेने वालों के लिए एक खास मौका, जहां है ढेरों सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम्स और कार एक्सेसरीज के लाजवाब ऑप्शंस।
4: विजिट करें श्री मणिभद्र कार डेकोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, नाना खेड़ा, उज्जैन।
6: आइए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक और देशभक्ति गीत मोहम्मद रफी की आवाज में सुनते हैं। आइए पेश है।

बहुत ही प्यारा देशभक्ति गीत है। प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि सीमा पर तैनात प्रहरियों के नाम की अगर मैं डिस्कस करूं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो जवान सीमा पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, वो भी कितना तन मन और समर्पण से कार्य कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनके लिए कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूंगा, सुनिएगा। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर खड़े जवानों को देख लेना। तो वास्तव में जवान देश की सीमा पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, और इसी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें और भी कई सारे श्रोताओं का शुभकामना संदेश मिला है। अगर हम बात करें बाल गोविंद सोनी बालाजी ज्वेलर्स तंबाकू बाजार उज्जैन से, राकेश सोनी स्वर्ण मंदिर फ्रीगंज उज्जैन से, शेखर सोनी अंबिका ज्वेलर्स शहीद पार्क फ्रीगंज से, चिराग चौरसिया आईईसी सुपरवाइजर नगर निगम उज्जैन की तरफ से, भारतीय मजदूर संघ उज्जैन आगर विभाग प्रमुख सतीश शर्मा जी की तरफ से, अरुण कुशवाहा भारतीय दूतावास मास्को रूस की तरफ से, अभय सक्सेना जी, मीना सक्सेना जी, पीएम श्री शासकीय तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मक्सी की तरफ से, और पैरामाउंट ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। आइए, ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एक और बढ़िया सा देशभक्ति गीत आपको सुनाते हैं।

0: शक्ति में न बदल जाए। 500 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण करने वाले लौह पुरुष को हमारा शत शत नमन है। श्रोताओं, इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो कई सारे शुभकामना संदेश हमें और मिले हैं, जिसमें सनातन संस्कार समूह, शब्द प्रवाह साहित्य मंच और शाश्वत सृजन मासिक की तरफ से भी मिले हैं, संस्कृति संवाद लोक भाषा की राष्ट्रीय पत्रिका, रजवाड़ी अवंती कलेक्शन, टीडी मार्केट उज्जैन की तरफ से भी हमें शुभकामना संदेश मिले हैं। आइए एक और भक्ति गीत आपको सुनाते हैं, बढ़िया सा।
1: मेरा

0: आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 मेगाहर्ट्ज आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र ग्वालियर क्षेत्र से आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम जरूर सुना होगा और साथ ही साथ वो कहानी भी आपने जरूर सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मध्य प्रदेश की माटी से जुड़ा एक और नाम जो पूरी दुनिया में शौर्य का पर्याय बन गया, वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें और भी कई सारे संदेश मिले हैं, आइए सुनते हैं उन संदेशों को।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों की पसंद रोजगार परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: मोनालिसा ब्यूटी सैलून फ्रीगंज उज्जैन की ओर से आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
3: उज्ज्वल केमिकल एंड पॉलीमर्स की ओर से आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

शुभकामना संदेशों की सूची बहुत बड़ी है, जिसमें अगर हम बात करें तो हमारे कई सारे श्रोताओं ने शुभकामना संदेश भेजे हैं। महाकाल ज्योतिष केंद्र ज्योतिषाचार्य पंडित सतीश नागर जी पद्मावती कॉलोनी उज्जैन के द्वारा भी संदेश भेजा गया है। प्रतीक जैन, आयुष भदौरिया, कोजी कैफे कॉर्नर नानाखेड़ा की तरफ से भी, मनीष सोनी जी, श्री श्याम प्रॉपर्टी डील शहीद पार्क, रघुराज सिंह चौहान उज्जैन की तरफ से भी शुभ संदेश भेजा गया है। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा देशभक्ति गीत।

0: पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने फांसी के फंदे को चूमते हुए कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हमें कई सारे बधाई संदेश भी आए हैं, आइए सुनते हैं इन संदेशों को।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों की पसंद रोजगार विद अंकित परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: मैं डॉक्टर उमा वाजपेयी, पूर्व प्राध्यापक, हिंदी साहित्य, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आप सबको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने पूरे परिवार के साथ हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करती हूं कि यह स्वतंत्रता हमारे जीवन को इसी तरह से महकाती रहे। बहुत धन्यवाद।
3: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को शासकीय नूतन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदिरा नगर उज्जैन के विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।
4: मैं सीए नीलेश अग्रवाल, अध्यक्ष टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन उज्जैन, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।
5: सभी देशवासियों और आकाशवाणी उज्जैन के श्रोताओं को मैं डॉक्टर संजीव कुमार तिवारी एवं ज्योतिष अर्चना तिवारी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की अशेष मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ।
0: तो ये कुछ शुभ संदेश हमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे श्रोताओं के द्वारा भेजे गए थे। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा देशभक्ति गीत।

उज्जैन जहां साहित्य की राजधानी रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के महान कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने बिलासपुर जेल में लिखा था, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा की यह भावना हर देश प्रेमी का मूल मंत्र है। इसी के साथ शुभकामना संदेश की अगर मैं बात करूं तो पैरामाउंट ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भेजा गया है। रईसा शाजिया, इरफान अर्शी, महानूर एवं परिवार, उज्जैन की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं संदेश भेजी गई है। सरपंच नरेंद्र जी पोरवाल, स्वच्छ एवं उत्कृष्ट पंचायत से सम्मानित ग्राम पंचायत डेंडिया, जनपद पंचायत उज्जैन से, इनके द्वारा भी शुभ संदेश भेजे गए हैं। राजेंद्र सिंह चौहान, सीमा चौहान, वैशाली चौहान जी के द्वारा भी शुभ संदेश भेजे गए हैं। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा देशभक्ति गीत।

0: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, देश का सबसे बेहतरीन दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। स्वतंत्रता का असली उत्सव तब पूरा होता है जब देश का हर युवा शिक्षित हो, आत्मनिर्भर बने और भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को साकार करे। इसी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई श्रोताओं ने हमें शुभकामना संदेश भेजे हैं, आइए सुनते हैं।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों की पसंद रोजगार विद अंकित परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: जय हिंद दोस्तों, मैं समीर उलक, उज्जैन संभाग अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ एमपी टेंट हाउस एसोसिएशन, अध्यक्ष प्रेम सेवा समृद्धि फाउंडेशन, वाइस प्रेसिडेंट उज्जैन जिला कुडो एसोसिएशन, चेयरमैन टाइगर मार्शल आर्ट अकेडमी, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं मुबारकबाद पेश करता हूं।
0: आइए इसी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति गीतों का सफर यूं ही जारी रहेगा। हम सुनते हैं मोहम्मद रफी और मन्ना डे की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: आकाशवाणी उज्जैन के सभी श्रोताओं को मयूर होमस्टे की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।
1: श्रीमती सोनम नाइक, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड शाजापुर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता केवल हमारा अधिकार नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों का भी स्मरण कराती है स्वतंत्रता। आइए इस पावन अवसर पर हम अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को नमन करते हुए एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लें। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रभात प्रकाशन परिवार, नई दिल्ली।
2: राष्ट्रपति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की स्वतंत्रता शामिल न हो। और सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम और सत्य की शक्ति। बापू के सत्य और अहिंसा के अस्त्र ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आइए हरिहरन जी की आवाज़ में सुनते हैं एक और देशभक्ति गीत।

नरसिंह ज्वेलर्स आशीष राठौर जी, वीएस कॉमर्स क्लासेस उज्जैन जी और सनातन संस्कार समूह के द्वारा शुभ संदेश भेजे गए हैं। तो ये था कार्यक्रम आजादी के शुभ संदेश देशभक्ति गीत। अब शाम के 6 बजने को है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित समारोह की समन्वित रेडियो रिपोर्ट आप भोपाल केंद्र से सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर आयोजित समारोहों पर आधारित समन्वित रेडियो रिपोर्ट।

0: भारत माता की जय घोष के बीच राष्ट्र के महाकाश में पूरी आन बान शान से फहराते तिरंगे के साथ भारत का जन गण मन आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारा तिरंगा सारे जगत में अपने सर्व प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के गौरव का शंखनाद करता है। इस तिरंगे के 3 मूल मंत्र हैं, त्याग, शांति और समृद्धि। इन्हीं 3 संकल्पों ने संसार के इस सबसे बड़े प्रजातंत्र को शक्ति दी है, समृद्धि दी है, शांति और सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। इस पावन अवसर पर आज मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इसी भावना और संदर्भ को समेटे हमारी ये रेडियो रिपोर्ट मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह पर केंद्रित है। प्रदेश के विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों के माध्यम से ये ध्वनि चित्र हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले रुख करते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर केंद्र का और सुनते हैं आकाशवाणी जबलपुर से प्राप्त ये रिपोर्ट।
1: 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जबलपुर नगर में हर्ष और उल्लास का वातावरण देखा गया। वर्षा की सुहानी फुहारों के मध्य जबलपुर में मुख्य समारोह पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित किया गया। समारोह के आरंभ में मुख्य अतिथि माननीय लोक निर्माण मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राकेश सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया गया और 3 रंग के गुब्बारे आकाश में छोड़े गए। मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया।
2: परेड कमांडर श्री जय प्रकाश आर्य अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड के निरीक्षण के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने आ रहे हैं।
3: स्वतंत्र दिवस समारोह परेड आपके लिए निरीक्षण के लिए तैयार श्रीमान।
1: समारोह में हर्ष फायर और परेड द्वारा मार्च पास्ट किया गया। परेड कमांडर और प्लाटून कमांडरों का परिचय दिया गया।

0: सबसे पहले प्लाटून के सामने से एसटीएफ छठवीं वाहिनी एसएएफ जबलपुर, उसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक संदीप घोड़ेश्वर, और वाहन आगे की ओर होमगार्ड्स, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक तार सिंह कुमरे। ये सुंदर सा आकर्षक सा मार्च पास्ट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक जयप्रकाश आर्य, परेड उप कमांडर सूबेदार रूमा सिरसाम, और अब ये माननीय मुख्य अतिथि महोदय के मंच के सामने से उन्हें अभिवादन करते हुए धीरे धीरे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और ये परेड कमांडर महोदय मंच के सामने से आ रहे हैं।
1: समारोह में स्वतंत्रता और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान और देहदान और अंगदान करने वाले व्यक्तियों और उनके परिवारजनों का सम्मान किया गया। समारोह में विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी गण को भी सम्मानित किया गया।
2: खंडवा में स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार मनाया गया, ये जानने के लिए सुनते हैं हमारे खंडवा केंद्र से प्राप्त ये विवरण।
3: नमस्कार। 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह खंडवा के पुलिस परेड ग्राउंड में हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे जनजातीय कार्य लोक परिसंपत्ति प्रबंधन भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह। वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण की स्वर लहरियों ने सभी के मन को देश के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर दिया। अनेक जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन और खंडवा के देश प्रेमी नागरिकों की उपस्थिति में मुख्य अतिथि डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने ध्वजारोहण किया। मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया। दो बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम का भोपाल से सीधा प्रसारण सभी ने देखा। मुख्य अतिथि डॉक्टर कुंवर विजय शाह के उद्बोधन में खंडवा जिले की उत्तरोत्तर प्रगति की बातें रेखांकित की गई थी।
4: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। विगत एक वर्ष में जिले के विभिन्न विभागों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करी। खंडवा जिले में विकास लगातार जारी है।
3: स्वतंत्रता दिवस अथवा गणतंत्र दिवस का मुख्य आकर्षण होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम। खंडवा के 5 स्कूलों की चयनित प्रस्तुतियां बहुत ही असरदार और प्रेरक रही, जिसमें भारत की संस्कृति, उत्तरोत्तर प्रगति और भारत की बेटियां जैसे विषय सम्मिलित रहे। राष्ट्रगीत के गायन से कार्यक्रम संपन्न हुआ। एक सार्थक और सफल कार्यक्रम की समाप्ति पर दादाजी को सहारा देकर ले जाते हुए किशोरवयीन पोते के दृश्य को देखकर सभी सुखद अनुभूति से भर गए। जब 3 पीढ़ियों का समावेश और बेटियों की अधिकाधिक मौजूदगी हमारे राष्ट्रीय पर्वों में होती है, तो हमारे समाज के सही दिशा में होने का प्रमाण मिलता है।
2: अब हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी के शहडोल केंद्र का डिस्पैच।
5: हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, हे न्याय बंधु निर्भय निबंधनीय भारत, मम प्रेम पाणी पल्लव अवलंबनीय भारत, मेरा ममत्व सारा तुझमें समा रहा है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। विंध्य की धरती पर बसा है विराट नगरी शहडोल। घने जंगलों, प्राकृतिक संपदा, आदिवासी संस्कृति और अपनी समृद्ध लोक परंपराओं के लिए विशेष पहचान रखता है शहडोल। यहाँ की मिट्टी में प्रकृति के साथ साथ लोक संस्कृति और देशभक्ति की भी गहरी जड़ें हैं। तिरंगे की आन बान और शान के साथ शहडोल ने स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का संदेश दिया और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प भी दोहराया। जिले का मुख्य समारोह शहर के हृदय स्थल गांधी मैदान में आयोजित किया गया। सुबह ठीक 9 बजे माननीय मुख्य अतिथि और जिलाधीश शहडोल श्री पार्थ जायसवाल के आगमन के साथ ही मुख्य समारोह आरम्भ हुआ। सबसे पहले मुख्य अतिथि महोदय ने ध्वजारोहण किया, तत्पश्चात बैंड की धुन पर राष्ट्रगान संपन्न हुआ। राष्ट्रगान के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। इसके बाद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का सीधा प्रसारण स्क्रीन के माध्यम से किया गया। इसके बाद आया वो क्षण जिसका सभी जन समुदाय को बेसब्री से इंतजार था। नगर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग

0: इस तरह मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की भांति शहडोल में भी स्वतंत्रता दिवस का समारोह बहुत ही उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया।
1: ये विवरण हमें प्राप्त हुआ है आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से।
2: मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर शहर, जो अपने घने जंगलों, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संगमरमर की छत्रियों, 1857 के अमर शहीद तात्या टोपे की समाधि स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इस शिवपुरी में राष्ट्र का 80वां स्वाधीनता दिवस समारोह गरिमामय रूप से पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे जिलाधीश श्री अर्पित वर्मा। सुबह 9 बजे मुख्य अतिथि का आगमन मंच पर हुआ। पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। वंदे मातरम के पश्चात मुख्य अतिथि के द्वारा मुक्ताकाश में हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया गया। गूंज उठी राष्ट्रगान की धुन। राष्ट्रगान के पश्चात आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के द्वारा श्वेत धवल वाहन पर परेड का निरीक्षण किया गया। इस समय आपके साथ जिले की पुलिस अधीक्षक श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया शामिल थे।
3: हमारी नारी शक्ति डोबर के नेतृत्व में गर्ल्स कॉलेज से सन्नत है आज की परेड में।
2: निरीक्षण के पश्चात परेड ने हर्ष फायर किए। हर्ष फायर के पश्चात भव्य और आकर्षक परेड का प्रदर्शन समूची टुकड़ियों के द्वारा किया गया। आज के परेड कमांडर थे प्रोविजनरी उप पुलिस अधीक्षक नितिन ध्रुवे। भव्य मार्च पास्ट के पश्चात लाल परेड ग्राउंड भोपाल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए संदेश का सीधा प्रसारण किया गया। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश के पश्चात जिलाधीश द्वारा जिले की उपलब्धियों की झलक बधाई संदेश के माध्यम से दी गई। और अब बारी थी बच्चों की, जिनकी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का इंतजार सभी लोग कर रहे थे। बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देखकर ऐसा लगा कि मानो श्रावण माह में इंद्रधनुष धरा पर उतर आया है।

0: हमें ये रिपोर्ट मिली है आकाशवाणी सागर केंद्र से।
1: 80वें जश्न आजादी की वर्षगांठ की सुबह मौसम का मिजाज थोड़ा बदला बदला सा था। जोश और उत्साह से भरे युवाओं और बच्चों की टोलियां प्रभात फेरियां और आजादी के नारों के साथ आ डटी थीं सागर जिले के स्थानीय पीटीसी मैदान में। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि श्री गोविंद सिंह राजपूत, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री मध्य प्रदेश शासन के आगमन से हुई। आज इस पर्व पर पहली बार राष्ट्रगीत का गायन किया गया। निर्धारित समय अनुसार मुख्य अतिथि के कर कमलों से ध्वजारोहण की प्रक्रिया संपन्न हुई। तत्पश्चात परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक श्री आशीष कुमार तिवारी के अनुरोध पर विशेष रूप से सुसज्जित वाहन पर सवार होकर माननीय मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। इसके बाद 3 बार हर्ष फायर कार्यवाही के उपरांत बैंड की धुन पर राष्ट्रगान हुआ। तत्पश्चात खुले आकाश में आजादी और उल्लास के प्रतीक तिरंगे गुब्बारों को छोड़ा गया। इसके बाद शुरू हुआ एक के बाद एक प्लाटून कमांडरों के दलों का अनुशासित एवं लयबद्ध मार्च पास्ट का सिलसिला। तत्पश्चात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र सेनानियों को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का सीधा प्रसारण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री के संदेश के बाद मुख्य अतिथि महोदय द्वारा बधाई संदेश का

0: वाचन किया गया। और फिर मौका था कई दिनों से तैयारी कर रहे स्कूली बच्चों की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का। मौसम की तमाम प्रतिकूलताओं को भी मात देकर स्कूली बच्चों ने देश की विविधता, अनेकता में एकता, सांस्कृतिक प्रतिचिन्हों और सबसे अव्वल शहीदों के बलिदान को अपनी प्रस्तुति में बखूबी प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद सराहनीय प्रस्तुति और उत्कृष्ट कार्यों के लिए छात्र छात्राओं, कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र, पारितोषिक वितरण और आभार प्रदर्शन किया गया। फिर राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान के साथ ये भव्य कार्यक्रम अपनी पूर्ण आहुति को प्राप्त हुआ।
1: आकाशवाणी गुना ने हमें भेजा है ये ध्वनि चित्र।
2: गुनिया नदी और गुलाब की खेती में राष्ट्र में पहचान बनने जा रही गुना जिले में स्थानीय लाल परेड ग्राउंड पर हमारे देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। हमारे देश के गौरव वंदे मातरम राष्ट्रगीत को 150 वर्ष पूर्ण होने पर आज के समारोह में विशेष रूप से स्कूली छात्राओं से प्रस्तुत कराया गया, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री किशोर कुमार कन्याल, कलेक्टर जिला गुना द्वारा ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रगान की धुन पर उपस्थित जनसमूह ने खड़े होकर अभिवादन किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। इसके बाद हर्ष फायर हुई और एक बार पुनः पुलिस के बैंड पर बजती हुई राष्ट्रगान की धुन ने वातावरण को देशभक्ति से भर दिया। समारोह में भव्य मार्च पास्ट हुआ। इसके उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा परेड कमांडरों से परिचय लिया गया। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव का जनता के नाम संदेश का प्रसारण बड़ी बड़ी LCD के माध्यम से किया गया। संदेश प्रसारण के पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर गुना श्री किशोर कुमार कन्याल ने अपने बधाई संदेश में शासन की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात आज के कार्यक्रम में पहली बार डॉग शो को भी शामिल किया गया। हमारे देश के गौरव वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर समारोह के आरंभ में और समापन दोनों समय पर वंदे मातरम गीत का गायन हुआ।
1: आकाशवाणी रीवा केंद्र से हमें ये विवरण प्राप्त हुआ है।
3: संपूर्ण भारत वर्ष की तरह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस परंपरागत हर्षोल्लास और देश प्रेम की भावना के साथ शहर के मुख्य समारोह स्थल SAF मैदान में मनाया गया। सुबह से ही मुख्य समारोह स्थल SAF मैदान पर आम जन के आने जाने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। बच्चों का हाथों में तिरंगा लेकर आना इस आयोजन को भव्यता प्रदान कर रहा था। इस स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि थे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला, जिनके आगमन के साथ ही ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रगान की आवाज फिजाओं में गूंज उठी। साथ ही वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय गीत भी गाया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया।
4: स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान।
3: स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ मुख्य अतिथि का उद्बोधन प्रारंभ हुआ। प्रदेश के आर्थिक विकास के संबंध में आपने बताया,
5: मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि रीवा जिला आज अतुल संरचना के विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है।
3: प्रदेश में कृषि के क्षेत्र के संबंध में आपने बताया,
5: हमारी क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा स्वाधीनता सेनानी शहीदों और उनकी पत्नियों को राजकीय सम्मान प्रदान कर उनके और उनके परिवार द्वारा देश को दिए गए अमूल्य योगदान को याद किया गया। विभिन्न छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
1: आकाशवाणी के बैतूल केंद्र ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है।
6: मध्य प्रदेश के हृदय स्थल पर अंकित प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण बैतूल जिले में भी स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व हर्ष और उल्लास के वातावरण में मनाया गया। स्वाधीनता दिवस का मुख्य आयोजन स्थानीय पुलिस परेड मैदान पर निर्धारित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन के नवाचार के तहत इस बार भी प्रदेश के माननीय

0: मुख्यमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय था। चारों ओर देशभक्ति तरानों की अनुगूंज सुनाई पड़ रही थी। इसी माहौल में प्रातः ठीक 9 बजे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर बैतूल डॉक्टर सौरभ संजय सोनावने द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके पश्चात सामूहिक राष्ट्रगान संपन्न हुआ तथा मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया।
1: स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान।
0: इस अवसर पर 3 रंगों से सजे गुब्बारे आकाश में छोड़े गए, जो हवा की दिशा के साथ ऊंचे आकाश में तिरंगे की आकृति बनाते हुए आंखों से ओझल हो गए। इसके बाद मैदान पर उपस्थित पुलिस दल के हर्ष फायर से सारा वातावरण गूंज उठा। अब आरंभ हुआ मार्च पास्ट, जिसमें बैंड की लयबद्ध धुन पर कदम से कदम मिलाकर चल रही टुकड़ियों को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव था। इस मौके पर कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों तथा शहीदों के परिजनों का सम्मान भी किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बार मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का भोपाल से सीधा प्रसारण किया गया। इस राष्ट्रीय पर्व पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनावने द्वारा बधाई संदेश दिया गया।
2: जिलेवासी भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
0: 15 अगस्त के पावन अवसर पर शहर की विभिन्न शालाओं के बालक और बालिकाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

0: कार्यक्रम के अंत में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए शासकीय कर्मचारियों और छात्र छात्राओं को पुरस्कार और प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा परेड तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया।
1: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से हमें ये विवरण प्राप्त हुआ है।
2: इंदौर में संभागीय स्वाधीनता दिवस का मुख्य राजकीय समारोह स्थानीय रुस्तम सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय महेश गार्ड लाइन के मैदान पर आयोजित किया गया। माननीय मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट का जैसे ही आगमन परेड ग्राउंड में हुआ, उपस्थित जन समुदाय ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गर्म जोशी से उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्य अतिथि खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। उनके साथ कलेक्टर शिवम वर्मा और पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और परेड कमांडर उपस्थित रहे। तत्पश्चात स्वतंत्रता दिवस अमर रहे के नारों से पूरा परेड मैदान गुंजायमान हो उठा और इसके पश्चात आरएपीटीसी के मैदान पर बीएसएफ, सशस्त्र पुलिस बल, होमगार्ड, जिला पुलिस बल, एनसीसी, स्काउट गाइड, सृजन शौर्य दल, एसपीसी गर्ल्स और आरआई ग्रुप की टुकड़ियों द्वारा भव्य मार्च पास्ट किया गया। भव्य मार्च पास्ट के पश्चात मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के नाम संदेश ऑनलाइन माध्यम से भोपाल स्थित लाल परेड ग्राउंड से दिया, जिसे स्क्रीन के द्वारा उपस्थित इंदौर की जनता ने गंभीरता से सुना। तत्पश्चात माननीय मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने उपस्थित जनता को शुभकामनाएं दी।
3: महिला की नगरी के सभी भाई और बहनों, मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूं और नमन भी करता हूं। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई।
2: और अब सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के आगाज ने उपस्थित दर्शकों को उत्साहित कर दिया और सभी अपने स्थान पर खड़े होकर रंगारंग नृत्य प्रस्तुतियों का आनंद उठाने लगे। hey!

0: सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के क्रम के पश्चात उत्कृष्ट कार्यों हेतु मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को माननीय मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।
1: आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र ने हमें यह डिस्पैच भेजा है।
2: सतपुड़ा की हरित पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रकृति की अनुपम छटा से आलोकित छिंदवाड़ा आज स्वतंत्रता के महापर्व का साक्षी बना। जिले का मुख्य समारोह छिंदवाड़ा नगर के हृदय स्थल स्थानीय पुलिस परेड मैदान पर आयोजित

अर्जित हुआ। प्रातः से ही देशभक्ति का उल्लास स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तिरंगे की शान में सजा पूरा परिसर राष्ट्रप्रेम की आभा से आलोकित था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे श्री राव उदय प्रताप सिंह, कैबिनेट मंत्री परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन। प्रातः 9 बजे मुख्य अतिथि महोदय के आगमन के साथ ही स्वाधीनता पर्व का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गई। जैसे ही राष्ट्रगान की स्वर लहरियां वातावरण में गूंजी, उपस्थित जनसमुदाय तिरंगे के सम्मान में गर्व और गौरव से भर उठा। इसके पश्चात मुख्य अतिथि महोदय द्वारा तिरंगे के रंग में रंगे गुब्बारों को मुक्ताकाश में छोड़ा गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया और फिर हुआ हर्ष फायर। तत्पश्चात स्वतंत्रता दिवस अमर रहे के नारे लगाए गए और इसके पश्चात कदम से कदम मिलाकर विभिन्न परेड दलों की दृढ़ पदचाप राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और आत्मविश्वास का संदेश दे रही थी। अवसर था मार्च पास्ट का। मार्च पास्ट के बाद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का सजीव प्रसारण लाल परेड मैदान भोपाल से किया गया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को स्वाधीनता पर्व की बधाई देते हुए संबोधित किया गया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया और फिर हुआ व्यायाम प्रदर्शन। व्यायाम प्रदर्शन के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रंगारंग आयोजन हुआ।

0: इसके पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा समाज सेवियों का सम्मान करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।
1: अब सुनते हैं आकाशवाणी ग्वालियर की ये रिपोर्ट।
2: देश और प्रदेश के साथ ग्वालियर जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस परंपरागत हर्षोल्लास और देश प्रेम की भावना के साथ मनाया गया। सुबह से ही गली कूचों और सड़कों में गहमा गहमी थी। दुकानों और चौराहों की सजावट में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रंगों की बहार देखते ही बन रही थी। देश प्रेम से सराबोर गीतों के माध्यम से इस महान राष्ट्र की गौरव गाथा चारों ओर प्रसारित हो रही थी। रात भर की फुहारों ने प्रातःकाल की हवाओं को भी नम और शीतल बना दिया था। रिमझिम बारिश के बीच जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन स्थानीय SAF ग्राउंड में किया गया। मुख्य अतिथि थे मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर। शुभारंभ ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ हुआ। उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। परेड के बाद मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के संदेश का भोपाल के लाल परेड मैदान से सीधा प्रसारण किया गया। उसके बाद हर्ष फायर किया गया। उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने उद्बोधन में नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा,
3: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जग कहता है तू विशाल है, तू महान है, जय तेरी, लोक लोक से बरस रही तुझ पर पुष्पों की ढेरी। देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष है। निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष है।
2: परेड द्वारा शानदार मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया गया। खुले आकाश में राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों के गुब्बारे छोड़े गए। तत्पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, वीर नारियों, घायल सैनिकों और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। उसके बाद BSF टेकनपुर के द्वारा श्वान दल का प्रदर्शन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला उसके उपरांत शुरू हुई। ग्वालियर जिले के अनेक विद्यालयों की रंगारंग प्रस्तुति से उपस्थित जनमानस देशभक्ति के रंग में सराबोर हो गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद कलरी पयटू प्राचीन युद्ध कला का प्रदर्शन किया गया और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।
1: आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से हमें ये डिस्पैच प्राप्त हुआ है।
4: महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अत्यंत हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। प्रातःकालीन बेला में रिमझिम फुहारों के बीच राष्ट्रीय पर्व नन्हे कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ उत्साह पूर्वक मनाया गया। जिला

ये मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में भव्यता पूर्वक संपन्न हुआ। प्रातः 9 बजे मध्य प्रदेश शासन के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। तदुपरांत मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का भोपाल से सजीव प्रसारण परेड ग्राउंड में लगी बड़ी स्क्रीन के माध्यम से सभी ने सुना और देखा। इसके पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार ने उमंग और उल्लास के प्रतीक रंग बिरंगे गुब्बारे मुक्त आकाश में छोड़े। तदुपरांत विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा रंग बिरंगी पोशाकों में मनमोहक देशभक्तिपूर्ण गीतों पर आधारित देश प्रेम से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं।

0: तत्पश्चात उत्कृष्ट कार्य करने हेतु शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को माननीय मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया।
1: आकाशवाणी बालाघाट ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है।
2: देश भर के साथ साथ बालाघाट जिले में भी स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास, गरिमा और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। मुख्य समारोह में जिले के सम्मानीय कलेक्टर श्री कुमार सत्यम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के आगमन के साथ हुई, जिसके बाद पूरे प्रांगण में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। तत्पश्चात मुख्य अतिथि श्री कुमार सत्यम ने विधिवत ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। इसके तुरंत बाद सभी ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया। ध्वजारोहण के उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा भव्य परेड का निरीक्षण किया गया और सलामी ली गई।
3: स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान।
4: समारोह के मुख्य अतिथि आपके करीब आते हुए हमारे जिले के नवागत तो कलेक्टर है, हम चाहेंगे तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें, उनका सम्मान करें।
2: कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रदेश वासियों के नाम संदेश का वाचन किया गया। शांति, समृद्धि और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में मुख्य अतिथि द्वारा आसमान में तिरंगे के तीन रंगों वाले गुब्बारे छोड़े गए। समारोह के अगले चरण में शासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत मनमोहक एवं रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जन समूह का दिल जीत लिया।
5: भारत में नमक बनाने या उसे बेचने पर सॉल्ट टैक्स रूल के तहत पाबंदी लगा दी गई। अपने हक के लिए और अपने नमक के लिए अपनी लाठी और अपने 78 साथी के साथ निकल पड़े महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से एक सत्याग्रह पर, जिसे इतिहास ने नाम दिया दांडी मार्च।
2: विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों छात्र छात्राओं और परेड की श्रेष्ठ टुकड़ियों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में पुनः राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के साथ इस गरिमामयी स्वतंत्रता दिवस समारोह का विधिवत समापन हुआ।
1: उज्जैन में स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार मनाया गया, आइए जानते हैं वहां से प्राप्त इस विवरण से।
6: पूरे देश और प्रदेश की भांति महाकाल की नगरी उज्जैन में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। स्वाधीनता दिवस का मुख्य समारोह नगर के देवास रोड स्थित स्थानीय परेड ग्राउंड दशहरा मैदान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के माननीय कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा उज्जैन के प्रभारी मंत्री डॉ. गौतम टेटवाल द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया गया। समारोह की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गान से हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण और उसके बाद राष्ट्रगान के स्वरों से पूरा दशहरा मैदान गुंजायमान हो उठा। राष्ट्रगान के बाद मुख्य अतिथि द्वारा परेड की सलामी और निरीक्षण किया गया। समारोह में उज्जैन आलोट से माननीय लोकसभा सांसद श्री अनिल फिरोजिया, उज्जैन उत्तर विधानसभा से माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, संभागायुक्त श्री आशीष सिंह, कलेक्टर श्री रोशन सिंह,

0: पुलिस उप महानिरीक्षक श्री नवनीत भसीन, पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिजन उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं और शहरवासी भी इस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन किया गया। समारोह में हर्ष फायर के बाद मार्च पास्ट का भी आयोजन किया गया। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वाधीनता दिवस के उत्सव में रंग भर दिए। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के परिवारजनों, लोकतंत्र सेनानियों तथा देहदान करने वाले व्यक्तियों के परिजनों का सम्मान भी किया गया। आज़ादी के इस महापर्व पर पूरे उज्जैन शहर में भी उत्साह का वातावरण देखा गया।
1: अंत में प्रस्तुत है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम की रिपोर्ट। देश की हृदयस्थली और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अत्यंत हर्षोल्लास और देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाया गया। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों और वीर रणबांकुरों के त्याग और बलिदान के फलस्वरूप आज ही के दिन वर्ष 1947 में हमने स्वतंत्र भारत के निर्माण की जो स्वर्णिम इबारत लिखी थी, उसकी गरिमामय स्मृति आज भी हमारे भीतर देश प्रेम की भावना को जागृत करते हुए हमें उल्लास, उमंग और नव चेतना से भर देती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल की फिजाओं में भी देशभक्ति का रंग दिखाई दिया। हर ओर तिरंगा शान से लहराता नजर आया। हर घर तिरंगा अभियान ने इस राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को और भी बढ़ा दिया। भोपालवासियों ने अपने घरों, प्रतिष्ठानों और शहर के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और सम्मान को व्यक्त किया। विभिन्न शासकीय कार्यालयों में भी तिरंगा अपनी पूरी आन बान और शान के साथ लहरा रहा था। उल्लास और उमंग से सराबोर इस माहौल की चरम अभिव्यक्ति भोपाल के लाल परेड मैदान में देखने को मिली, जहां स्वाधीनता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह पूरे गौरव, गरिमा और भव्यता के साथ आयोजित किया गया। सुबह से ही हल्की ठंडी बयार और सुहावने मौसम ने पूरे वातावरण को खुशनुमा बना दिया था। प्रत्येक नागरिक, हर देशवासी आज देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा था। स्वाधीनता दिवस समारोह की शुरुआत हुई लाल परेड मैदान में परेड की टुकड़ियों के आगमन से। सुबह ठीक 8:59 पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन हुआ। तत्पश्चात राष्ट्र गीत का गायन किया गया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा यथासमय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उन्मुक्त आकाश में फहराया गया और वातावरण में गूंज उठी राष्ट्रगान की धुन। तत्पश्चात उन्मुक्त आकाश में तिरंगे से मेल खाते 3 रंग के गुब्बारे छोड़े गए। ध्वजारोहण के पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा परेड की सलामी ली गई। और अब बारी थी भव्य मार्च पास्ट की।
2: दिवस की गौरवशाली परेड मंच की ओर अग्रसर होती हुई परेड कमांडर SDOP श्री आदित्य सिंघारिया और परेड 2IC नगर पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत कुमार के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय के ठीक सामने।
1: मार्च पास्ट के उपरांत स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रदेश वासियों के नाम संदेश आरम्भ हुआ।
3: प्रिय प्रदेश वासियों, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं प्रदेश के 8.5 करोड़ नागरिकों की ओर से आज़ादी के सभी जननायकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं।
1: उन्होंने मध्य प्रदेश वासियों की ओर से पुलिस और हॉक फोर्स के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा,
4: मैं मध्य प्रदेश वासियों की ओर से पुलिस और हॉक फोर्स के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर असीम शौर्य का परिचय देते हुए वीरगति

0: प्राप्त हुए।
1: ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक का उल्लेख करते हुए आपने कहा,
2: यह हर्ष का विषय है कि जून 2026 में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों एवं कृषि कार्य समूह तथा अगस्त 2026 में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों और ब्रिक्स कार्य संस्कृति के समूह की बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ।
1: प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा,
2: किसानों के खेत सरकार के लिए देव स्थल है और खेत से उपजा एक एक दाना प्रसाद के समान है। वर्ष 2026 को हम किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कर किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि का भू अर्जन करने पर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का किसान हितैषी निर्णय हमारी सरकार द्वारा लागू किया गया है।
1: प्रदेश के युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा,
2: वर्ष 2027 को हमने युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और कल्याण के लिए हमने इंद्रधनुषी रणनीति का निर्माण किया है, जिसके 7 महत्वपूर्ण पिलर्स है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, स्टार्टअप को सहयोग, खेल कला संस्कृति एवं शोध तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन, नेतृत्व क्षमता का विकास। हमने 85,000 से अधिक युवाओं की शासकीय सेवाओं में नियुक्तियां की है।
1: अपने संदेश के अंत में आपने प्रदेश की जनता का उत्साह वर्धन किया,
2: भीतर एक चिंगारी है, आगे बढ़ना जारी है, संकल्प हमारा पक्का है और सिद्धि की तैयारी है। रात अंधेरी छट गई, देखो आजादी उजियारी है, लहर लहर लहराए तिरंगा, देखो दुनिया सारी है। जन जन का विश्वास है ताकत, जनता प्राणों से प्यारी है, आने वाला वक्त हमारा अब मध्य प्रदेश की बारी है। भीतर एक चिंगारी है, आगे बढ़ना जारी है, संकल्प हमारा पक्का है और सिद्धि की तैयारी है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की मेरी अपनी ओर से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।
1: माननीय मुख्य अतिथि महोदय के जनता के नाम संदेश के समापन के बाद पदक अलंकरण समारोह का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। पदक अलंकरण समारोह के साथ ही लाल परेड मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस का समारोह संपन्न हुआ।

इसी के साथ संपन्न होती है मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह पर केंद्रित ये रेडियो रिपोर्ट। आकाशवाणी परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर आयोजित समारोहों पर आधारित समन्वित रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग

0: गाने तक। यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।

0: श्रोताओं, आपके लिए एक विशेष सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 16 अगस्त 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है वर्तमान फसलों में निदाई एवं खरपतवार प्रबंधन। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वो दिनांक 16 अगस्त 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फ़ोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए। दिनांक 16 अगस्त 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य फ़ोन नंबर हैं 2660902 और 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी
1: FM 102.5 MHz पर आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब आप इसे न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। शाम के 6:45 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत देशभक्ति गीत। भगत सिंह ने एक बार कहा था, शहीद आजम भगत सिंह ने अदालत से गरजते हुए कहा था, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं, वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। आज़ादी सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति नहीं थी, बल्कि हर प्रकार के शोषण और अन्याय से मुक्ति का सपना था। आइए इसी सपने के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बसती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की ये अमर पंक्तियाँ हमें याद दिलाती है कि अपनी मिट्टी से सच्चा प्यार ही सबसे बड़ा धर्म है। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

मध्य प्रदेश के जंगलों और पहाड़ों से अंग्रेजी सल्तनत की चूल्हे हिला देने वाली क्रांतिकारी टांटिया भील को हम कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने गरीबों के हक और अपनी माटी की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मालवा निमाड़ की लोक कथा में टांटिया मामा का नाम अमर है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। श्री मोदी ने गरीबों और मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। लद्दाख में भी स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। LAHDC कारगिल के मुख्य कार्यकारी परिषद पार्षद डॉ. मोहम्मद जाफिर अखोन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। लातविया ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर को अनोखे और प्रतीकात्मक रूप से मनाने के लिए एक वैश्विक रिले श्रृंखला सूर्यपथ तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस अनूठी पहल के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रध्वज उगते सूरज की दिशा का अनुसरण करते हुए दुनिया भर का चक्कर लगा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, मिस्र, लातविया और दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया भर में मौजूद भारतीय दूतावासों ने देश के गौरव और एकता के इस उत्सव के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को एकजुट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया। लेख में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख में अमृतकाल के दौरान 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित होने का आह्वान किया गया है। इंडोनेशिया

0: फ्लोरिस द्वीप के तट के पास आज आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों और अघोषित विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। गोल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने विल्स को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7:05 हो चुके हैं। आइए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले हम बात करेंगे आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। शाम 7:10 पर आप प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से सुनेंगे। 7:21 पर मालवी गीतारी गूंज मालवी समाचार कार्यक्रम उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से सुना जा सकेगा। उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से रात 8 बजे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आप सुन पाएंगे। रात 8:30 पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उज्जैन के स्थानीय दशहरा मैदान में आयोजित समारोह की स्थानीय रेडियो रिपोर्ट आप उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से सुनेंगे। भोपाल से उर्दू समाचार 9:15 पर सुना जा सकेगा। दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर चित्र भारती दिल्ली से रिले कार्यक्रम सुन पाएंगे। रात 11 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। आइए अब बात करते हैं कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 6 बजे हिंदी में समाचार आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। विविध भारती मुंबई केंद्र से 6:05 पर वंदनवार चिंतन कार्यक्रम, 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान और 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुन पाएंगे। उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से प्रातः 7 बजे महाकाल वंदन कार्यक्रम, 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से सुनेंगे। 7:20 पर सुप्रभात उज्जैन प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से सुना जा सकेगा। दिल्ली केंद्र से प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात कार्यक्रम, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुन पाएंगे। 8:30 पर उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से उज्जैनी आरजी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से बॉलीवुड बीट्स नए फिल्मी गीत कार्यक्रम प्रातः 9:30 पर सुना जा सकेगा। आपकी फरमाइश कार्यक्रम उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से 10 बजे सुन पाएंगे। विविध भारती मुंबई केंद्र से यादों की महफिल कार्यक्रम 12:05 पर और दोपहर 1 बजे सुरीला सफर आप सुन पाएंगे। भोपाल से प्रादेशिक समाचार 2:10 पर सुना जा सकेगा। विविध भारती मुंबई केंद्र से नाट्य तरंग कार्यक्रम 3:30 पर आप सुन पाएंगे। शाम 5 बजे उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से युववाणी कार्यक्रम और 6 बजे भजन संध्या कार्यक्रम सुन सकेंगे। प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से 7:10 पर सुना जा सकेगा। 7:21 पर मालवी गीतारी गूंज मालवी समाचार कार्यक्रम उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से आप सुन पाएंगे। दिल्ली केंद्र से रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9 बजे News 8:09 प्रोग्राम, 9:15 पर दिल्ली केंद्र से ही उर्दू में समाचार आप सुन पाएंगे। रूपको का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर सुना जा सकेगा। रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। रात 11 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। 7:10 होने को है। अब आप थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया, कहा 2047 तक विकसित भारत बनकर रहेगा। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में किया ध्वजारोहण, कहा वर्ष 2027 होगा युवा कल्याण को समर्पित। पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस। और आज सागर, जबलपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी समेत 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। पहली बार इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब वह दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। श्री मोदी ने कहा कि इन प्रयासों के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने 2047 तक देश को विकसित बनाने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को यांत्रिक मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इससे देश को AI के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि देश को लागत, गुणवत्ता और कौशल पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुने गए बच्चों को अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की है।

0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इससे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वर्ष 2027 को युवा कल्याण को समर्पित करने की बात कही।
2: वर्ष 2027 को हमने युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। हमने 85,000 से अधिक युवाओं की शासकीय सेवाओं में नियुक्तियां की है तथा आने वाले समय में प्रति वर्ष 1,00,000 से अधिक युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार अगले 1 वर्ष में 1,00,000 से अधिक युवाओं को ITI में तथा प्रतिवर्ष 10,000 युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में कौशल प्रशिक्षण दिलाने का काम करेंगे।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में 8,000 स्टार्टअप संचालित हैं, इनकी संख्या 12,000 से अधिक करने और 100 नए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नक्सलवाद के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो गया है।
3: जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ संकल्प लिया, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने आगे बढ़ने के लिए लगातार कदम बढ़ाए, तो मैं आपके सहित पूरे मंच और आप सबको बधाई देना चाहूंगा। हमारा अपना राज्य सबसे पहले उन राज्यों में शामिल हुआ जिसने लाल सलाम को आखिरी सलाम किया कि ये वो दौर है जिस दौर में अब नक्सलवादी गायब हो गए।
1: अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में जिला स्तर पर भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास धूमधाम एवं गरिमामय ढंग से मनाया गया। ग्वालियर में SAF मैदान पर आयोजित हुए जिले के मुख्य समारोह में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का सीधा प्रसारण भी हुआ। जबलपुर में मंत्री राकेश सिंह, नर्मदापुरम में खेल और युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। सीहोर में पिछड़ा वर्ग मंत्री एवं जिले की प्रभारी कृष्णा गौर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। सागर में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और मंडला में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। खंडवा में मंत्री विजय शाह और झाबुआ में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अशोकनगर में आयोजित समारोह में कलेक्टर साकेत मालवीय, गुना में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, डिंडौरी में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया, नीमच में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान पदक अलंकरण समारोह में पुलिस, होमगार्ड एवं अन्य विशिष्ट सेवाओं से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पदकों से सम्मानित किया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को 9 विशिष्ट सेवा पदक, 33 सराहनीय सेवा पदक एवं होमगार्ड के अधिकारियों कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए 3 पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बलों में से एक है। पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी दक्षता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के बल पर निरंतर नई उपलब्धियां हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान

दिया। आकाशवाणी भोपाल में भी ध्वजारोहण किया गया और हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रदेश में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से आज जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। अगले 4 दिन तक जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में सिस्टम का ज्यादा असर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को नर्मदापुरम, छतरपुर और उमरिया में अति भारी बारिश का अनुमान है। वहीं जबलपुर, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, पन्ना, टीकमगढ़, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में भारी बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिला पंचायत परिसर में जबलपुर शहर का पहला दीदी कैफे शुरू होने जा रहा है। यहां महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं नाश्ता, भोजन और अन्य घरेलू व्यंजन तैयार कर उपलब्ध कराएंगी। शहडोल जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को जनपद पंचायत जयसे नगर के ग्राम टेटका और कुआरसरई में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। नर्मदापुरम जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत संभाग आयुक्त श्रीकांत बनोट और आईजी चंद्रशेखर सोलंकी ने कल माखन नगर क्षेत्र में शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण कर आमजन और विद्यार्थियों से संवाद किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: नमस्कार, FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब आप इसे न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। शाम के 7:21 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है मालवी गीतारी गूंज, मालवी समाचार कार्यक्रम।

राम राम सा आकाशवाणी उज्जैन से। आकाशवाणी उज्जैन का इन्हीं खास कार्यक्रम ग्राम सभा का मालवी गीतारी गुंज में हूँ ऋषि योगी, मारा मालवा का सगला भाई बहनों काका बबूसा ने माँ बुआ सा को गणो गणो स्वागत करूँ हूँ। आज अपन ने मालवी गीतारी गुंज में वार्ता करांगा वन्य जीव की ने किसान की ने साथे साथ वन रक्षक मनीष जी जायसवाल जी से भेंट वार्ता भी करांगा ने मालवी लोक गीत का आनंद का साथे जानांगा उज्जैन में कृषि उपज मंडी में फसलों का भाव के। तो दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़वा से पहला सुनो मालवी में आज का समाचार।

सबसे पहला आज का समाचारों की खास बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से 13वीं बार क्यों झंडों

प्रबंधन ने गरीब बच्चों के बिना पैसा के कोचिंग को ऐलान भी कियो। प्रदेश में सगली जगह हंसी खुशी का साथे मनाया जा रहा है 80वो आज़ादी को दिन। मुख्यमंत्री बोलिया है कि साल 2027 के रेवेगा युवा कल्याण के समर्पित ने रतलाम का एक्सप्रेसवे रोड पे हादसों हुओ। ट्रक में जईने घुसी कार लेके जई रहा था परिवार खाटू श्याम। परिवार का लोगों में 4 लोगों की मृत्यु हुई है। अब समाचार विस्तार से। देश में आज 80वो आज़ादी को दिन मनी रियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यादगार लाल किला के प्राचीर से राष्ट्रीय झंडो फहराई ने राष्ट्र का स्वाधीनता दिन की शुभकामना देता हुआ बोलिया है कि आज हर दिल को आवाज़ वंदे मातरम का गाने से गुंजी है। इन पिछला 12 साल में अपना देश में अच्छी गति के पकड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने छोराओं का लिए घोषणा की है कि ऑनलाइन का जरिए बिना पैसा के पढ़ाई करवाएगा। इधर अपना प्रदेश में भी 80वो आज़ादी का दिन के बड़ी राजी खुशी से मनाया गयो। मुख्यमंत्री जी बोलिया है कि एक देश एक विधान एक निशान का विचार के जमीन पे उतारियो है। सबका दिल एक जैसा कानून समान नागरिक संहिता के लागू कर दिया है। रतलाम जिला का शिवगढ़ थाना का इलाका में दिल्ली मुंबई 8 लेन का एक्सप्रेसवे सड़क पे काल देर रात खाटू श्याम का दर्शन करवा का लिए चैरिया परिवार की अर्टिगा कार किनारे खड़ियो ट्रक में जई खुशी। 3 औरत ने एक आदमी की मौका पे ही मौत हुई है जबकि 2 बच्चा समेत 5 लोग के चोट आई है गंभीर। प्रदेश में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ी रही है। अगला 24 घंटा में कई इलाका में 4 से 8 इंच तक की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने शनिवार के नर्मदापुरम छतरपुर ने उमरिया में घनी पानी पड़वा को अनुमान है ने इधर जबलपुर सागर रायसेन नरसिंहपुर छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट मंडला डिंडोरी अनूपपुर शहडोल कटनी पन्ना टीकमगढ़ रीवा मऊगंज सीधी ने सिंगरौली में घनी भारी पानी पड़वा की संभावना जताड़ी है। ये था आज का हमारा मालवी में समाचार।

हाँ तो भाइयों ने बहनों, समाचार का बाद अब टेम है अपना हिवड़ा में बसवा वाला मालवी लोकगीत को, तो सुनो यो मधुर लोकगीत।

0: 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ बीएसएनएल लाया है मोबाइल ग्राहकों के लिए ₹1 फ्रीडम प्लान का प्यार। फाइबर के साथ तेज रफ्तार के लिए ₹1111 का बीएसएनएल फाइबर फ्रीडम प्लान। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भारत नेट का 259 का प्लान। मनोरंजन के लिए बीएसएनएल एंटरटेनमेंट टीवी का साथ, और जहां जमीन का नेटवर्क भी साथ ना दे, बीएसएनएल सैटेलाइट फोन सर्विसेज उम्मीद की आवाज बने। जय हिंद, जय भारत।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सबसे पहला हमारा सगला किसान भाई बहन के स्वतंत्रता दिवस, यानी अपना भारत देश का आजादी का दिन की गन सारी बधाइयां। हाँ भाइयों ने बहनों, अरे अब सुनो, अपना मालवा उज्जैन तराना सेक्टर का वन रक्षक मनीष जायसवाल जी से हुई खास, वन्य जीव ने किसानों का जोड़ का ऊपर हुई भेंट वार्ता के।
5: आज हमारे साथ भेंट वार्ता में उपस्थित हैं किसान और वन्य जीवों के बीच एक मध्यस्था यानी जोड़ का काम करते हैं, वे हैं वन रक्षक, जिनका नाम है मनीष जायसवाल जी। नमस्कार सर।
6: नमस्कार
5: सर। आज 15 अगस्त है, पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, तो एक वन रक्षक के नाते अब जंगल और पेड़ पौधों की आजादी से क्या समझते हैं?
6: सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को, मेरे साथी गणों को और सारे श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं बधाइयां अर्पित करना चाहूँगा। किसान और वन विभाग का कैसे समन्वय जोड़ है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ग्रामवासियों को जंगल से जोड़ने के लिए वन समितियों का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव जो कि

0: विभागीय वन रक्षक होते हैं, बीट गार्ड होते हैं, तो बाकी जो सदस्य होते हैं ग्राम के, जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, वही सारे ग्रामीण सदस्य होते हैं। वन विभाग का तो कार्य ही है वन संरक्षण, वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करना, जंगल का संरक्षण करना, जंगल को जहाँ पर जो वन विहीन भूमि है उस पे नए पौधे पौधारोपण करके, भूजल संरक्षण कार्य करके वन बनाना उसको। ग्रामीण जो है, ग्रामीण अपने साथ में वन विभाग के साथ में मिलकर पौधारोपण में वन्य जीवों की सुरक्षा, वन विभाग के साथ में कार्य मिलकर कार्य करते हैं। वन विभाग के अनेक कार्य ग्रामीणों के सहयोग से किए जाते हैं, उनके उनके सहयोग के बिना वन विभाग कार्य करने में इतना समर्थ नहीं है, क्योंकि वन क्षेत्र अधिकतर रिमोट या दुर्गम स्थान पर होता है, वहां से ग्रामीण ही सबसे पहले पास और सुलभ होते हैं, जो वन विभाग के कर्मचारियों के लिए भी अच्छी बात है। तो जैसे अग्नि अग्नि का समय जैसे आता है, जब मार्च और मार्च अप्रैल मई जो 3 माह होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अग्नि के प्रकरण आते हैं, जैसे जंगल में आग लग जाना, वनों में आग लग जाना, तो सबसे पहली मदद ही विभाग को ग्रामीणों से मिलती है। ग्रामीण लोग जाते हैं झुंड में, समूह में जाते हैं, 15-20 लोग जाते हैं और जाके अंगार बुझाते हैं, आग को बुझाते हैं, जिससे हमारे वन्य प्राणियों के आवास को क्षति ना हो और किसी प्रकार की वनोपज वन को हानि ना हो, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए भी, हमारे जीवन को जीवन जीने के लिए, वातावरण अनुकूल बनाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है।
1: जी, मेरा अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त है,
0: जी
1: आज के उपलक्ष्य में कई जगह पौधारोपण किया जा रहा है,
0: जी
1: तो किसानों को, जो हमारे श्रोता हैं, उन्हें कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए जो पर्यावरण और मनुष्य, मानव सभी के लिए लाभकारी हो?
0: वन विभाग की ओर से ऐसी कई योजनाएं हैं, जैसे आज हम हमारे मालवा क्षेत्र में मैक्सिमम देखते हैं, अधिक से अधिक उत्पादन के लिए, फसल का उत्पादन लेने के लिए कृषकों ने, जो पहले पहले कई मात्रा में आम, जामुन, नीम, फल में कबीट हो गया और जामफल हो गया, ऐसे कई वृक्ष वृक्ष प्रजाति के जो पेड़ थे वो कुछ विकृत हो गए, कुछ मर गए, कुछ मृत पेड़ हो गए, तो उनको हटा दिया और उनकी जगह पे दूसरे पौधे पेड़ स्थापित नहीं किए। या एक चीज और भी कह सकते हैं, उत्पादन के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा, वन विभाग की तरफ से ये योजनाएं हैं जिसमें हम कृषकों को बांस बांस के
1: बांस
0: पौधे उपलब्ध कराते हैं, ताकि और उनको उसका केयर मेंटेनेंस करने के लिए प्रतिवर्ष 3 वर्षों तक उनको प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और 3 किस्तों में उनको उसका भुगतान भी किया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि उस योजना का लाभ लें, अपनी मेड़ों पे या अपने पास जो खाली क्षेत्र हो वहां से बांस उत्पादन के हिसाब से भी ले सकते हैं। बांस वैसे तो घास प्रजाति में आता है, लेकिन पर्यावरण में उसका बहुत ज्यादा योगदान है कि ये वृक्ष की तुलना में बहुत जल्दी अधिक तेजी से बढ़ता है और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्रोवाइड करता है, उपलब्ध कराता है।
1: जी सर, जैसे कि देखा जाता है कि किसान परेशान रहते हैं, तो नील गाय जिस प्रकार से परेशान करती है किसान,
0: वैसे शासन इस ओर काम कर रहा है, क्योंकि अब ये परेशानियां काफी बढ़ती जा रही है, कहीं आम हो गई है ये नील गाय की, उसी के लिए उज्जैन वन मंडल की ओर से श्रीमान वन मंडलाधिकारी हमारे अनुराग तिवारी सर के नवाचार से ये सुलभ काम हुआ कि हमने ग्राम ब्रिजराज खेड़ी तपोभूमि के आगे है वहां पे इस बार बोमा पद्धति, जो अफ्रीका से इजाद की गई है बोमा पद्धति, उसके द्वारा नीलगाय को पकड़ने का प्रयास किया गया, वन्य प्राणी और कृषकों में जोड़ने के लिए समन्वय, वो भी उनकी फसलों का अधिक लाभ ले सकें और जानवर को भी क्षति नहीं हो, ऐसा काम किया जा
1: वन
0: रहा है।
1: विभाग है, इसके अंदर अपना वन है, और वन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है पेड़।
0: जी
1: तो पेड़ों के लिए वन विभाग अपना क्या

0: कार्य कर रहा है।
1: पेड़ों के लिए सबसे पहले तो वन विभाग वन वर्धर का कार्य करता है, जो पौधारोपण करना, पौधे लगाना, लोगों से अपील करके लोगों को भी सामूहिक भागीदारी देने के लिए प्रोत्साहित करना, ये कार्य करता है वन विभाग। जैसे हर वर्ष वन विभाग वन वर्धन का कार्य जो करता है वो वैज्ञानिक पद्धति से करता है। विभाग ने अपनी भूमि को, वन भूमि को जो कुछ हिस्सों में बांट रखा है, जो जिसमें 10 साल का वर्किंग प्लान कार्य योजना बनती है कि इस वर्ष इस क्षेत्र में वन वर्धन का कार्य करना है, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर अगले क्षेत्र में वर्किंग करना है हमको, धीरे धीरे हम सतत वनों का निर्माण कर पाए जो वन विहीन भूमिया है, जिससे प्रथम वर्ष समझिए आप जैसे 1,000 वृक्ष लगाए हमने, तो 1,000 वृक्ष हम एक साथ बड़े क्षेत्र में नहीं लगा सकते, हम पहले 1,000 वृक्षों को बढ़ाते हैं, वो स्थायी होते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर हम और नए वृक्षों को, पौधों को रोपण किया जाता है ताकि वो वृक्ष बने और पर्यावरण के लिए कार्य आए। और जैसे ही वन जो पौधे लगते हैं उनके साथ में भूजल संरक्षण का कार्य भी कराया जाता है, ताकि उस क्षेत्र की भूमि में ग्राउंड वाटर जो है वो उसकी आपूर्ति आने वाले टाइम में और अच्छी हो और उसका ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाए।
0: जी मनीष जी, सर ये जो अभी बारिश का मौसम चल रहा है अभी, तो इस समय देखा जाता है कि अधिकतर सांप बिच्छू बाहर निकलते हैं, तो जो हमारे किसान भाई बहनें जो खेत पर काम कर रहे हैं उन्हें मतलब किस प्रकार से, जैसे कि सावधानी तो बरतना हर किसी को जरूरी है, सामने ही अगर सांप दिख जाता है तो उन्हें किस प्रकार से प्रतिक्रिया करनी चाहिए और किस प्रकार से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए?
1: आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि सांपों के बारे में कैसे सुरक्षा करें, या वन्य प्राणी की भी सुरक्षा हो और आम जन को भी हानि ना हो, इस ओर हम प्रयास करें। मैं इस आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ सारे श्रोतागणों को कि जो सांप है, भारत में लगभग लगभग 220 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, उसमें सभी सांप विषैले नहीं होते हैं, जो दंश देते हैं वो विषैले नहीं होते हैं, उसमें 4 प्रजाति ऐसी जो होती है वो विषैली होती है। इंसान घबराहट और हड़बड़ाहट में पैनिक हो जाता है और उससे उनको ज्यादा क्षति पहुंचती है, ना कि सांप के काटने से। जिसमें एक हमारा सर्प प्रजाति में देखा जाए तो एक इंडियन कोबरा है, एक कॉमन क्रेथ है जिसको दांडेकर बोलते हैं आम भाषा में, एक रसेल वाइपर होता है और एक फुरसा होता है जिसको सा स्क्लेड वाइपर बोलते हैं। जो कॉमन क्रेथ होता है वो हमारे अंगूठे इतना ही मोटा होता है और उसकी लंबाई मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट होती है। तो इन 4 प्रजातियों से हमको डरने की आवश्यकता है, बाकी किसी अन्य प्रजाति में विषैले नहीं होते हैं वो। तो सबसे पहली हमारी सावधानी रखने का है, अगर कि सांप के पास में अगर सांप दिखता है आपको, तो सांप हमको कंपन से सेंस करता है, तो प्रथम प्राथमिकता हमारी यही रहेगी कि सबसे पहले तो हम वन्य प्राणी से दूरी बना लें, उसके बाद में वन विभाग को सूचना करें कि वह आवे और वन्य प्राणी को सुरक्षित पकड़ के जंगल में छोड़ दें। और दूसरी चीज ये कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर किसी को दंश दे देता है या काट लेता है सांप, तो घबराए ना, सबसे पहले उसको जहां पे भी काटा है उस घाव से 1.5 इंच ऊपर, 2 इंच ऊपर और 2 इंच नीचे की ओर एक रस्सी या रबड़ बांध ले, जिसमें हमारी उंगली आसानी से, उंगली इतना गैप रहे, इसी बांध ले। उसके बाद उस घाव को अच्छा शुद्ध पानी से धो ले और हॉस्पिटल जाए और चिकित्सक को उसके बारे में बताएं और उसका एंटीडोट लें। ना कि हमारे मालवा में ज्यादा प्रथाएं हैं, लोग झाड़ फूंक करवाते हैं, ऐसा वैसा, इन सब चीजों में ना जाएं, ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है।
0: जी, ये मतलब जैसे कि फसल होती है,
1: जी
0: हम देखते हैं गेहूं की फसल होती है, कटती है, उसके बाद जो पराली बचती है
1: जी
0: उसको वो जला देते हैं,
1: जी
0: तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान तो हो रहा है कहीं ना कहीं।
1: जी इससे पर्यावरण को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन ये वन विभाग के प्रस्पेक्टिव से नहीं है, फिर भी मैं अपना मालवा में बोलते हैं

0: खापा जलाना उसको। खापा जलाने से वातावरण में तो प्रदूषण होता ही है, और वन विभाग के अनुसार हम देखें तो कृषि भूमि राजस्व भूमि से ही लगा हुआ वन क्षेत्र होता है। वन क्षेत्र में कई वन संपदा होती है, जिसमें कई वन वन के अंदर अपने वन्य प्राणी भी होते हैं, उनके आवास भी होते हैं। आग लगने से क्या होता है कि वन क्षेत्र तक आग पहुंच जाती है, उससे सरफेस सतही अगर आग लगती है तो वन्य प्राणी के हैबिटेट खराब हो सकते हैं। हमारे एक जो होता है तीतर करके बोलते हैं अपन, जो पक्षी होता है वो अधिकतर अपना आवास सतह पे ही बनाता है, जमीन पर ही बनाता है उसके। और कई बहुत सारे ऐसे वन्य प्राणी होते हैं जिनके आवास को क्षति होती है उससे, इसलिए पराली जलाना ठीक नहीं है।
1: जी मनीष जी, अपने जो मालवा का वन विभाग का क्षेत्र है, जो वन क्षेत्र है, उसके अंदर कितने प्रकार के वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं?
0: मालवा के क्षेत्र में मैक्सिमम अगर हम बात करें अपने क्षेत्र की, अगर वैसे तो गांधी सागर में जाएंगे हम तो मैक्सिमम सभी वन्य प्राणी मिल जाएंगे हमको, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है उज्जैन के आसपास का जितना भी है, उसमें देवास में खिवनी अभयारण्य करके है, वहाँ पे आपको टाइगर भी देखने को मिल जाएगा। अभी वहाँ पे टाइगर की संख्या बढ़ने लगी है वहाँ पे। और जो उज्जैन जिले में देखा जाए तो यहाँ पे आपको नीलगाय, कृष्णमृग और खरगोश हुआ, और सियार हो गया, सेही हो गया, यही मैक्सिमम वन्य प्राणी आपको देखने को मिलेंगे।
1: सर, आप हमारे श्रोता जो किसान भाई बंधु बहन जो हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि जिनके घर के आसपास भी या जिनके कृषि भूमि के आसपास भी वन क्षेत्र लगा हुआ है, वन विभाग ऐसे प्राणियों के लिए, वन्य प्राणियों के लिए कार्य कर रहा है जो बोल नहीं सकते, जो बेजुबान हैं, उनके लिए कार्य कर रहा है। और हमारा वन को बचाना, वन्य प्राणियों को बचाना परमार्थ का कार्य है, परोपकार का कार्य है, तो उसमें सहभागी बने और अच्छा कार्य करें, जितना हो सके अपने वन क्षेत्र को, वन्य प्राणियों को बचाने का कार्य करें, संकल्प करें।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा महाकाल का आशीर्वाद आप सभी वन रक्षकों, जो वन्य जीवों और किसानों के बीच एक मध्यस्थता, एक जोड़ का कार्य कर रहे हैं, आप सभी को सही सलामत रखे और उनकी असीम कृपा आप सभी पर बने रहे और आपको कुछ हानि ना हो, और आप भी हमेशा मतलब जो हमारे जीव जंतु हैं उनकी रक्षा कर सके हैं, ये इन सब की आपको ताकत दे। जय श्री महाकाल। धन्यवाद सर। अभी आपने सुनी भेंटवार्ता के अपना मालवा उज्जैन तराना सेक्टर का वन रक्षक मनीष जायसवाल जी से हुई खास वन्य जीव ने किसानों का जोड़ का ऊपर हुई भेंटवार्ता के। हाँ तो किसान भाइयों ने बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ा उससे पहला मौसम का साथ है आनंद लैला मालवी लोकगीत को, तो सुनो यो मधुर लोकगीत।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: गाड़ी हो स्टाइलिश तो सफर हो बेहतरीन, और गाड़ी को स्टाइलिश बनाते हैं श्री मणिभद्र कार डेकोर।
3: श्री मणिभद्र कार डेकोर लाया है कार लेने वालों के लिए एक खास मौका, जहां है ढेरों सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम्स और कार एक्सेसरीज के लाजवाब ऑप्शंस।
2: विजिट करें श्री मणिभद्र कार डेकोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, नाना खेड़ा, उज्जैन।
4: हाँ तो किसान भाइयों ने बहनों, किसान ने वन्य जीव प्रकृति का दो खास अंग है। खेत ने जंगल को आपस में घेरो जोड़ रहे हुए है, क्योंकि वन्य जीव पर्यावरण के अच्छो बना हुए रखे है, बहुत सारे जरूरी काम करे है, ने कई बार जंगली जानवर खानों ने पानी का लिए खेत तक आई जाए है, जिससे किसानों की फसल के घनों नुकसान हो जाए है। तो विनी समय में किसान भाई हिम्मत रखता हुआ वन विभाग के सूचना दे ने विनी जानवर के

नुकसान नहीं पहुंचाए, ने वही तो जंगल ने प्रकृति घर की सुरक्षा करनो भी हमारी सगला मनक की जिम्मेदारी है। किसान गांव वाला ने वन विभाग मिली ने काम करे है तो फसल की देखभाल का साथ है साथ वन्य जीवों की देखभाल भी हुई सके है। प्रकृति अच्छी रहेगी तभी तो किसान ने हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ तुमने कैसे अपनी फसल ने वन्य जीव की रक्षा की है। तो हमारा पतो है, अरे चिट्ठी लिख जो। हाँ तो हमारा पतो है केंद्र निर्देशक आकाशवाणी केंद्र विद्यापति नगर नानाखेड़ा उज्जैन ने। हमारो पिन कोड है 456010। तो किसान भाइयों ने बहनों कार्यक्रम में आगे बढ़ा उससे पहला आनंद लैला अपना हिवड़ा में बसवा वाला एक और मालवी लोकगीत को तो सुनो यो मधुर लोकगीत।

0: 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ बीएसएनएल लाया है मोबाइल ग्राहकों के लिए ₹1 फ्रीडम प्लान का प्यार। फाइबर के साथ तेज रफ्तार के लिए ₹1111 का बीएसएनएल फाइबर फ्रीडम प्लान। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भारत नेट का 259 का प्लान। मनोरंजन के लिए बीएसएनएल एंटरटेनमेंट टीवी का साथ और जहां जमीन का नेटवर्क भी साथ ना दे, बीएसएनएल सैटेलाइट फोन सर्विसेज उम्मीद की आवाज बने। जय हिंद, जय भारत।
1: वाह भाइयों, अब टेम है अपना उज्जैन मंडी में। आज फसलों को मिजाज कई है, जरा नजर डाली ला। हाँ तो भाइयों, गेहूं को आज को भाव लगभग ₹2100 प्रति क्विंटल रियो। लहसुन को आज को भाव लगभग 4000 से 13000 रुपए प्रति क्विंटल रियो। प्याज को आज को भाव 2700 रुपए से 2900 रुपए प्रति क्विंटल रियो। सोयाबीन को आज को भाव 7136 रुपए प्रति क्विंटल रियो। मक्का को आज को भाव 1500 से 2350 रुपए प्रति क्विंटल का बीच रियो। तो भाइयों, आज की ग्राम सभा का मालवी गीतारी गूंज में समय तो अपना पानी की तरह बह गयो। ने आज अपन ने किसान ने वन्य जीव की वार्ता का साथ है की भेंट वार्ता के अपना मालवा उज्जैन तराना सेक्टर का वन रक्षक मनीष जायसवाल जी से। तो हमारा किसान भाइयों, साथ ही साथ अपन ने मालवी में आज का समाचार भी सुनिया, ने आनंद उठायो मालवी लोकगीत को, ने मालवी में अपन ने सुनिया आज मंडी भाव के। हाँ तो किसान भाइयों ने बहनों, तब मस्त रहो, तुम्हारी फसल मस्त रहे, इन्हीं आशा का साथ है। हूँ ऋषि योगी, आज की ग्राम सभा का कार्यक्रम मालवी गीतारी गुंज के अठेच विराम दू हूँ। जय श्री महाकाल, राम राम सास, सुनता रिजो आकाशवाणी केंद्र उज्जैन।

0: अब आप वैष्णवी से संसद में हुई इस सप्ताह के कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये चौथा और अंतिम सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ।
1: एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब आप इसे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। शाम के 8 बज चुके हैं। अब आप उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे। प्रस्तुति आकाशवाणी केंद्र भोपाल की, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की। आइए ये सुनते हैं विशेष प्रस्तुति।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: वाणी।
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम
0: किसान वाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
2: किसान वाणी के सभी श्रोताओं को महेश भैया की राम राम। भैया राम, आज है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस। सभी दूर झलर मरर रोशनी से इमारतें जगमगा रही हैं, चारों ओर देशभक्ति के गीत की गूंज हो रही है। ऐसे में हमें भी अपने देश, अपनी मातृभूमि पे खूब गर्व है और हम तो यही कहें कि मेहनत कश मजदूर मुलाजिम अफसर आला और किसान भारत माँ के राज मुकुट की दुनिया भर में ऊंची शान। विकसित भारत की मनसा है अब हम बन में विश्व गुरु, कहवे में जो गौरव लागे फिर हमरो भारत देश महान। वाकई भैया रहो हमरो भारत देश जो है दुनिया भर में महान है और हम यही आशा करें कि भारत देश जल्द विश्व गुरु बने और हमारे देश के लोग, देश के किसान खूब तरक्की करें, उन्नति करें। हाँ भैया रहो, और तरक्की की जब बात आई है तो सुने जा भेड़ वार्ता। आज को विषय है फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, लक्षण एवं समाधान। डॉक्टर रूपेंद्र खांडवे से बातचीत कर रही हैं पूनम सराओगी। अपन सभी मिलकर सुनते हैं जब बातचीत और इनसे फायदा उठाते हैं।
3: फसलों में जस्ता, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज जैसे सूक्ष्म तत्वों की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पैदावार भी घट जाती है। इनकी कमी को दूर करने के लिए मिट्टी की जाँच करवाना, सही मात्रा में सूक्ष्म तत्वों का दिया जाना आवश्यक होता है और इसके संबंध में ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रूपेंद्र खांडवे को। आप प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। आप हमें जानकारी देंगे फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, लक्षण एवं समाधान इस विषय पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं और ये मुख्य पोषक तत्वों से कैसे अलग होते हैं।
4: फसलों में वृद्धि विकास के लिए पोषक तत्वों की उपयोगिता होती है। यदि कोई खनिज तत्व पौधों की आंतरिक क्रियाओं और उसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा न कर सके तो खनिज तत्व पौधे के लिए आवश्यक माना जाता है। सामान्यतः यह पौधा किसी विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी का संकेत देने वाला लक्षण प्रदर्शित करता है, जिससे उस तत्व को देने से, उसकी आपूर्ति करने से उसको ठीक किया

0: जा सकता है। अब जहाँ तक के सूक्ष्म पोषक तत्व और जो वृहद पोषक तत्व हैं उनमें मतलब क्या अंतर है, तो पौधों के शरीर में पोषक तत्वों की जो पाए जाने की मात्रा रहती है उसके आधार पे हम दो भागों में उनको बांट सकते हैं। तो एक होते हैं जो बहुत कम मात्रा में लगते हैं, इसलिए उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। इस सूक्ष्म पोषक तत्वों में जैसे जिंक है, बोरान है, मॉलिब्डेनम है, लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, क्लोरीन, ऐसे तत्व आते हैं। और कुछ तत्व ऐसे रहते हैं जिनकी मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में पौधों को आवश्यकता पड़ती है, लगती है, तो इनको हम वृहद पोषक तत्व या ये कह लें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं।
1: जी
0: इसमें जैसे वही तत्व हैं जो अभी तक के हम फसलों पे लगातार डालते आ रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम तत्व इसमें आते हैं। समय के अनुसार स्थिति बदलती जा रही है, जब हम लगातार फसलों का उत्पादन ले रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि जो सूक्ष्म तत्वों की मात्रा मिट्टी में कम होती जा रही है और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारी फसलों के उत्पादन पे और उसकी गुणवत्ता पे आ रहा है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो वृहद पोषक तत्व है उससे बहुत उनका महत्व कम है, ये भी अपनी जगह पे इनका बहुत महत्व है और इनकी मात्रा ही वृहद पोषक तत्वों के अवशोषण को भी निर्धारित करती है, निर्भर करती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में जैसे जिंक एक आवश्यक पोषक तत्व है, तो जिंक जो है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया में लगने वाला क्लोरोफिल का निर्माण जिससे होता है
1: जी
0: उसमें बनाने में ये बहुत भूमिका महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ पोषक तत्वों के अवशोषण में, प्रोटीन संश्लेषण में और पौधों को वृद्धि एवं उपज एवं दानों की गुणवत्ता के लिए बनाए रखने के लिए जिंक की बहुत आवश्यकता है। इसी प्रकार जो दूसरा पोषक तत्व है बोरान, तो बोरान भी पौधों में कोशिकाओं की भित्ति एवं जितनी प्रजनन संरचनाएं बनती हैं उनके निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक है। दलहनी फसलों में मुख्य तौर पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों में ग्रंथियां जो नोड्यूलेशन होते हैं उनके लिए बोरान की बहुत आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म तत्व एक मॉलिब्डेनम होता है जो भी पौधों में नत्रजन को आत्मसात करने के लिए आवश्यक है। यह तत्व तो फलीदार जितनी भी हमारी फसलें हैं तो उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है और यह पौधों में पत्तियों की वृद्धि और पौधों को रोगों से बचाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मॉलिब्डेनम की पौधों में रहती है। अभी हमारे यहाँ जो है उसमें कॉपर, आयरन, मैग्नीज और क्लोरीन वगैरह की ज्यादा मतलब कमी के ऐसे लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर ये भी तत्व पौधे के लिए आवश्यक बहुत है। जो श्वसन क्रिया है तो उस श्वसन क्रिया में क्या होता है, जितना भोज्य पदार्थ बना है उसका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा का जब स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है, तो ये जो क्रिया होती है श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की, इसमें आयरन का बहुत अहम भूमिका है। सूक्ष्म तत्व मैग्नीज भी पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में दौरान में निकलने वाली जो ऑक्सीजन है तो जो ऑक्सीजन निकलती है उसके लिए जो एंजाइम्स लगते हैं तो उनको बनाने के लिए जो रहता है उसमें मैग्नीज की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार जो कॉपर है सूक्ष्म तत्व वो भी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एंजाइमों को बनाने का काम करता है, जिनमें एंजाइम्स में जैसे साइटोक्रोम है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो ये बनाने में जो है बहुत अहम भूमिका है कॉपर की।
1: सर एक और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात मेरे जहन में आ रही है, सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण फसलों पर, पौधों पर किस प्रकार दिखाई देते हैं और पौधों में किस जगह पर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई।
0: हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जैसे बोरान तत्व की कमी से क्या है, नींबू एवं संतरा में नई पत्तियों में नई पत्तियां मुड़ जाती हैं कोने से और कटी फटी नजर आने लगती हैं। इसी प्रकार जो टमाटर की हमारी हम फसल लेते हैं तो उसमें भी नई पत्तियां वो जो जहां जहां से कोपले फूटती हैं नई उसमें सिकुड़न आ जाती है, पत्तियां छोटी छोटी होके एक झुंड के आकार में दिखने लगती हैं, तो जिससे क्या होता है कि फसल हमारा अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती। इसी प्रकार बोरान की कमी से क्या होता है, फल वृक्ष जितते रहते हैं तो फल वृक्ष में हम देखते हैं बाजार में भी कई बार हम फल खरीदते हैं तो हमको फल फटे हुए दिखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बोरान की कमी मिट्टी में होती है जिससे उनकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आती है और बाजार में हमको किसान भाइयों को उसका मूल्य भी बहुत कम मिलता है। इसी प्रकार जो जिंक पोषक तत्वों की कमी, सामान्य तो पौधे में सबसे पहले लंबाई कम होने लगती है, पौधे थोड़े से छोटे होने लगते हैं और बौने होने लगते हैं, तो ये जिंक की कमी का लक्षण है। इसी प्रकार जिंक की कमी से जैसे मक्का के पौधे में हम देखते हैं तो छोटे पौधों में क्या होता है, सफेद कली बनने लगती है, तो उसको सफेद कली का रोग भी कहते हैं और इसको पहचानने का तरीका ये

0: यह जिंक की अगर कमी है तो हम देखते हैं मक्का के पौधों में जो बीज की पत्तियां, उसकी बीज की पत्तियों में आधार से ऊपर की ओर और जो बीज की लाइन रहती है मुख्य शिरा, तो मुख्य शिरा के दोनों ओर सफेद पट्टी का निर्माण होने लगता है और साथ ही साथ क्या होता है, घूसर भूरे रंग के, कासे के रंग के ऐसे अनियमित धब्बे बनने लगते हैं। मतलब धब्बे एक से नहीं रहेंगे, कोई अलग अलग आकार के धब्बे बन जाते हैं। तो प्राय यह देखते हैं पत्तियों के जो धब्बे बनते हैं पत्तियों के एकदम बीच में बनते हैं। जैसे अभी धान की फसल भी किसानों के यहाँ लगी हुई है, तो धान की फसल में हम देखते हैं कि कई जगहों पे जिंक की कमी रहती है, तो जिंक की कमी के कारण वहाँ खैरा नाम का रोग आ जाता है। तो ये तत्व हैं जिनको हम ऐसा पहचान सकते हैं। इसी प्रकार जो मैग्नीज की कमी का लक्षण है पौधों के नए भागों, जहाँ नए भाग वृद्धि करते हैं वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि वहाँ वृद्धि अच्छे से हो नहीं पाती। मैग्नीज, आयरन और मॉलिब्डेनम, ये सूक्ष्म तत्वों की कमी में मुख्यतः क्या होता है कि पौधा थोड़ा पीला पड़ने लगता है, हरी मानहीता ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता है और पौधों में भोज्य पदार्थ अच्छा नहीं बन पाता है।
1: यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से हमें पौधे के रंग रूप और आकार में परिवर्तन
0: बिल्कुल दिखाई देना।
1: जी सर, ये जानना चाहती हूँ मैं आपसे, सूक्ष्म तत्वों की पौधों में कमी के लक्षण दिखाई देने पर हमें इनका समाधान कैसे और किस प्रकार करना चाहिए?
0: सूक्ष्म तत्वों की जो कमी के जब हमको लक्षण दिखाई देते हैं मिट्टी में, जब हम डालते हैं तो क्या होता है, ये आसानी से आक्सीकृत हो जाते हैं
1: जी।
0: और आक्सीकृत हो जाएंगे या अवक्षेपित हो जाएंगे, तो उससे क्या होता है, ये पौधे की जड़ों के माध्यम से पौधे को मिल नहीं पाते हैं
1: जी।
0: तो जिससे इनका अवशोषण प्रभावी रूप से नहीं हो पाता है। इसलिए सूक्ष्म तत्वों को अगर जब हम पौधों में डालते हैं तो उसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए, उसकी दक्षता बढ़ाने के लिए कि वो पौधे में जाके अच्छे से काम करे, इसके लिए क्या समय के अनुसार चिलेटेड उर्वरकों का निर्माण किया जाए। तो इसमें क्या है, जो चिलेटेड उर्वरक रहते हैं ये बहुत आसानी से पौधों की जड़ों से अवशोषित हो जाते हैं और अवशोषित होने के बाद पौधे के शरीर में बहुत स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह उनकी आवक जावक होती है, जिससे वो कार्य बहुत अच्छे से कर पाते हैं। कुछ सामान्य उपयोग किए जाने वाले जो चिलेटेड एजेंट हैं, जैसे कि EDT ये आता है, कुछ एमिनो एसिड रहते हैं, अम्ल रहते हैं या कार्बनिक अम्ल है, ये चिलेटेड एजेंट है। इनपे सूक्ष्म तत्वों की बॉन्डिंग करके उसको जोड़ के उसके साथ सूक्ष्म तत्वों का उर्वरक बनाया जाता है। इसमें बनाने से क्या होता है कि इनकी जो मात्रा है हमारे पौधों को बहुत कम मात्रा में हमको देनी पड़ती है, तो बहुत आसानी से कम मात्रा में हम दे सकते हैं और फसलें भी इनको पूरी तरीके से अवशोषित कर लेती है और पौधों के शरीर में ये आसानी से गतिशील होके अपने कार्य को बहुत अच्छे से इसका निर्वहन कर पाते हैं।
1: सर, बड़ी ही अच्छी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ हमारे प्रदेश में कौन कौन सी फसलों में सूक्ष्म तत्वों की कमी दिखाई देती है और उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है?
0: मध्य प्रदेश में जैसे हम बात करें तो किसी भी प्रकार की मृदा हो, उसमें जैसे काली मिट्टी हो, जैसे मालवा वगैरह में कहीं पे बहुत हल्की मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, या जलोद वाली मिट्टी है जहाँ पे ज्यादा पानी का वो किया जाता है, तो किसी भी प्रकार की मिट्टी हो तो ये देखा गया है जिंक की कमी के लक्षण हमको सभी मिट्टियों में दिखाई दे रहे हैं, है ना। अभी जैसे अब हम आने वाले मौसम में रबी की फसल में गेहूं का हम बहुत उत्पादन लेते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो गेहूं की फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई तो नहीं देते पर बहुत मतलब उभर के आते हैं ऐसा, पर क्योंकि मिट्टी में जिंक की कमी है तो अगर उस कमी को हम पूरा नहीं करते हैं तो उससे हमारी जो उत्पादन है हमारा थोड़ा कम होता है। तो इसमें क्या, इसकी कमी को दूर करने के लिए हम आधार खाद के रूप में जब जैसे हम यूरिया डाल रहे हैं या DAP डाल रहे हैं, उसी समय बोनी के पहले हम जिंक सल्फेट आधार खाद के रूप में पौधों को दे सकते हैं। तो 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से हम अगर बोनी के समय में दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा उत्पादन गेहूं का बहुत अच्छा मिलता है और हमको जो खास तौर पे जब गर्मी बढ़ने लगती है उस समय थोड़ा गेहूं हरा रहते हुए हमको अच्छा उत्पादन देता है। इसी प्रकार अभी चने की फसल लगेगी तो चने की फसल में भी जिंक की मात्रा दे के उससे हम अच्छी हम फसल प्राप्त करते हैं। तो चने की फसल में हम जिंक सल्फेट से ही इसको दे सकते हैं बोनी के पहले और उससे हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। चने की फसल में खास तौर पे कुल आप समझ लीजिए हम लोगों ने प्रयोग किया गया और वो बिल्कुल निष्कर्ष है कि अमोनियम मॉलिब्डेनम दायक, जैसे मॉलिब्डेनम जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो अमोनियम मॉलिब्डेनम 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसको बीज से उपचारित करके बोते हैं तो इससे हमको उपज में बहुत अच्छी वृद्धि मिलती है। और खास तौर पे

0: तो जितना नत्रजन स्थिरीकरण का काम है चने की फसल में, तो वो उससे अमोनियम मॉलिब्डेनम से बहुत अच्छा होता है और नत्रजन पौधे को अच्छी उपलब्धता उसकी हो पाती है। सूक्ष्म तत्वों की कमी में उद्यानिकी वाली फसलों में साफ तौर से लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे फलदार वृक्षों में बोरान की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो हम बोरेक्स 10 ग्राम प्रति वृक्ष हम बोरेक्स जब हम थाला बनाते हैं, हम उसको जैविक खाद दे रहे हैं या ये दे रहे हैं, तो उस समय हम उसको प्रति पौधा 10 ग्राम यदि हम देते हैं जैविक खाद के साथ मिला के, तो हमको बहुत अच्छे उसके परिणाम प्राप्त होते हैं, अच्छे फल प्राप्त होते हैं, गुणवत्ता वाले फल प्राप्त हैं। जैसे अभी आने वाली एक अमरूद की फसल भी रहेगी हम, तो फूल आने के पहले तो उस समय हम जिंक सल्फेट का 0.5% मतलब 5 ml जो ये है जिंक सल्फेट, उसको 1 लीटर पानी में घोलकर अगर हम पत्तों पे छिड़काव करते हैं तो उससे हमको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। नींबू वर्गीय फसलों में भी जिंक सल्फेट का एवं संयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों का 0.5% 5 ml 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने पर हमको बहुत अच्छी फसल हम प्राप्त कर सकते हैं।
1: अंत में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज के समय में हमारे प्रदेश और देश में सूक्ष्म तत्वों की क्या स्थिति है?
0: देखिए हमारे प्रदेश में जैसे अब जो मध्य प्रदेश है उसमें जितना मालवा का क्षेत्र है, तो मालवा के क्षेत्र में देखेंगे आप कि काली कपासी मिट्टी है, तो इसको देख के ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी तत्वों की कमी नहीं है, पर वहाँ पे भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण हमको दिखाई देते हैं, तो हमको उन चीजों का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो मिट्टी है काली मिट्टी, उसमें 6-7 फीट गहराई के बाद क्या चट्टाने हैं या ग्रेवल्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि नीचे पत्थर या वो होने के कारण वहाँ पोषक तत्वों की कमी हमको दिखती है। इसी प्रकार जिंक की कमी हमारे प्रदेश में एवं देश की कोई भी मृदा हो, उसमें किसी भी प्रकार की मृदा हो, उसमें कहीं बिल्कुल निश्चित रूप से जिंक की कमी के लक्षण आ रहे हैं, और जिंक की उसमें आधार खाद के रूप में अनुशंसा जरूरी है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में पोटाश एवं सल्फर जो वृहद पोषक तत्व हैं, इनकी भी कमी के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इन तत्वों के हम उर्वरक डाल के हम इसको सुधार सकते हैं।
1: सर बड़ी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। तो ये थे डॉक्टर रूपेंद्र खांडे, आप हमें जानकारी दे रहे थे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी लक्षण एवं समाधान इस विषय पर। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बढ़िया जानकारी हमारे किसान श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम।
2: देखो भैया बहनों, सावन को महीना चल रहा है, चारों ओर हरियाली सुई है, खेत लहला रहा है, बारिश खूब हो रही है, ऐसे में अपने पारंपरिक लोक गीतन की छटा तो न्यारी सुई लगाते। तो अब देर न करत भय सुने जब प्यारी सी कजरी दिनेश सिंह से।

0: तो भैयारों अभी अपन ने सुनो जब प्यारी सी कजरी दिनेश सिंह भैया से। भैयारों कजरी को तो आपने आनंद ले लो। मनु एक बात आपसे हम कहना चाहते हैं कि अबे चार दिन पहल जो है हरियारी अमावस्या निकली थी और आज है हरियारी तीजा। जा बात अलग है कि जो त्योहार को नाव अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग जानत है, मनो हाँ इन तीज त्योहारों को पर्यावरण से सीधो संबंध होते है। तभी तो हर पूजा में फूल पत्ते फल लकड़ी इत्यादि की जरूरत पड़त है और जई लाने इन वस्तुओं की हम पूजा सुई करत है। सो हम तो जई कहें कि हर त्योहार मनाओ मनो प्रकृति को जरूर समारो सजाओ और उनको संरक्षण करो, तभी तो जा हमारी धरोहर सुरक्षित रहें। और भैया बहनों देखो किसान बाणी में अब आप हरों को हम एक स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित जानकारी सुनवा रहे हैं। बरसात में पशुधन की देखभाल में का सावधानियां आपको बरतनी है, हमने जब बातचीत करी है डॉक्टर तेजस्वरी सातपुते से, उनसे हमने जानकारी ली है, जो जानकारी आप जरूर सुने।
1: मैं डॉक्टर तेजस्वरी सातपुते कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल में विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। वर्षा ऋतु में जैसे वर्षा तापमान के साथ में वातावरण में आर्द्रता भी बढ़ती है, जिसके कारण परजीवियों का संक्रमण अधिक होता है, जिससे पशुओं को बीमारियां होने का ज्यादा संक्रामक रोग होने के ज्यादा चांसेस होते हैं।

0: इसलिए हमें कुछ जरूरी चीजें हैं जो देखभाल में हमें अपनानी है, वो है पशुओं का स्वास्थ्य प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आवास प्रबंधन। पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज है पशुओं का कृमिनाशन, दूसरा है टीकाकरण। पशुओं में जो कृमि होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होते हैं बाह्य परजीवी, दूसरा होता है अंतः परजीवी। अंतः परजीवी वे जो कि पशुओं के पेट में पाए जाते हैं। दूसरा बाह्य परजीवी जैसे कि जू, किलनी, चीचड़े, जो पशुओं के शरीर के बाहर लगे होते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर बाह्य परजीवियों का नियंत्रण करना है तो कुछ परजीवी नाशक केमिकल्स जो हैं बाजार में उपलब्ध है, जैसे कि डेल्टा मेथ्रिन हुआ या फिर मेलाथियॉन का पाउडर हुआ, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। और अंतः परजीवियों के लिए कुछ दवाइयां जैसे कि एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल, इनका उपयोग हम कर सकते हैं। ये हुआ कृमिनाशन। दूसरा है टीकाकरण। टीकाकरण पशुओं को संक्रमित रोगों से बचाने के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है। तो इसके लिए जरूरी है कि बारिश के मौसम के पहले पशुओं का टीकाकरण हो जाना चाहिए। पर अगर किसी पशुपालक ने अब तक टीकाकरण नहीं करवाया है तो वे अब भी करवा सकते हैं। और वे कौन से रोग हैं जिनके लिए टीकाकरण करवाना है? तो उनमें है खुरपका मुंहपका रोग, गलघोटू एवं लंगड़ी बुखार। जो खुरपका मुंहपका रोग है इसका टीकाकरण साल में 2 बार होता है, बाकी गलघोटू और लंगड़ी बुखार इन रोगों का साल में 1 बार होता है टीकाकरण, जो आपको बारिश के पूर्व लगवा लेना चाहिए। दूसरा चीज है पोषण प्रबंधन। चूंकि बारिश का मौसम है और हरा चारा अधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो अगर हम पशुओं को हरा चारा खिलाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हरे चारे के साथ में हमें संतुलित मात्रा में सूखा चारा भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अधिक हरा चारा खाने से पशुओं में अफरा रोग का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर, जिसमें मिनरल मिक्सचर का जो संतुलित दाने में जो हमको देना है वो भी हमें प्रतिदिन 50 ग्राम प्रति पशु को दिया जाना चाहिए। साथ ही अब आप जब पानी पिलाते हैं पशुओं को तो स्वच्छ पानी दें, बाहर किसी तालाब नदी का पानी न पीने दें। ये हुआ पोषण संबंधी सलाह। अब तीसरी महत्वपूर्ण सलाह है आवास संबंधी, कि पशुओं का आवास सूखा, स्वच्छ एवं हवादार हो, और जिसमें गोबर या कीचड़ आदि अगर होता है पशुशाला में तो उसकी समय समय पर सफाई होती रहे, और पशुओं की पशुशाला को हमें सूखा बनाए रखना है, और जल निकासी की व्यवस्था समुचित हो ताकि जो पशु अगर पेशाब कर रहा है तो उसका भी निकासी अच्छे से हो सके और पशुशाला सूखी रहे। अब पशुशाला के फर्श की बात करें तो पशुशाला का फर्श पशु मालिकों के पास कंक्रीट फर्श होता है, कुछ के पास मिट्टी का होता है। तो अगर कंक्रीट फ्लोर आप बनाते हैं तो उसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि उसमें एक ढलान रखे, और ढलान का जो अनुपात है 1:40 में होना चाहिए, ताकि जो भी पेशाब या जो भी पानी है वो नीचे ढाल की तरफ बहकर आए और पशुशाला सूखी बनी रहे।
1: और भैयारों अब है आप हरों से विदा लेवे की बिरिया मनोहा। इससे पहले हम किसान भैयारों को आगाह कर देते हैं कि भैयारों देखो बारिश को मौसम है, अगर पानी नहीं गिर रहा है आपके इतने तो आप खरीफ फसलों में नींदा नियंत्रण पे जरूर ध्यान रखे। कैसे कि जैसे ही बारिश रुकत है तो नींदा बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उनकी रोकथाम जरूर करें। और हाँ, यदि कीट व्याधि हो रही है तो कीट व्याधि को रोकवे के लाने जैविक उपाय जरूर अपनाएं।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: तो जो हो तो आज को किसान वाणी कार्यक्रम अब महेश भैया को दे आज्ञा, सभी जनों को राम राम।
6: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी, प्रस्तुति थी आकाशवाणी भोपाल, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 8:30 हो चुके हैं। अब आप स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उज्जैन के स्थानीय दशहरा मैदान में आयोजित समारोह की स्थानीय रेडियो रिपोर्ट सुनेंगे, जिसका वाचन रश्मि बजाज का है, संपादन एवं प्रस्तुति सौरभ अवस्थी जी की।
2: पूरे देश और प्रदेश की भांति महाकाल की नगरी उज्जैन में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ था। आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की ठंडी हवाओं ने वातावरण को और अधिक आनंदमय बना दिया था। मौसम की इस खुशगवार फिजा के बीच शहर में देशभक्ति का उत्साह चरम पर दिखाई दे रहा था। स्वाधीनता दिवस का मुख्य समारोह नगर के देवास रोड स्थित स्थानीय परेड ग्राउंड दशहरा मैदान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के माननीय कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा उज्जैन के प्रभारी मंत्री डॉ. गौतम टेटवाल द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया गया। दशहरा मैदान में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह का शुभारंभ लगभग 9 बजे हुआ। समारोह की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गान से हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण और उसके बाद राष्ट्रगान के स्वरों से पूरा दशहरा मैदान गुंजायमान हो उठा। राष्ट्रगान के बाद मुख्य अतिथि द्वारा परेड की सलामी और निरीक्षण किया गया। समारोह में उज्जैन आलोट से माननीय लोकसभा सांसद श्री अनिल फिरोजिया, उज्जैन उत्तर विधानसभा से माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, संभागायुक्त श्री आशीष सिंह, कलेक्टर श्री रोशन सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री नवनीत भसीन, पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिजन उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं और शहरवासी भी इस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का वाचन किया गया। समारोह में हर्ष फायर के बाद मार्च पास्ट का भी आयोजन किया गया। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वाधीनता दिवस के उत्सव में रंग भर दिए। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के परिवारजनों, लोकतंत्र सेनानियों तथा देहदान करने वाले व्यक्तियों के परिजनों का सम्मान भी किया गया। आजादी के इस महापर्व पर पूरे उज्जैन शहर में भी उत्साह का वातावरण देखा गया। नगर के विभिन्न शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य संस्थाओं में भी पूरी गरिमा और भव्यता के साथ ध्वजारोहण किया गया।

स्वतंत्रता दिवस हमें उन असंख्य ज्ञात अज्ञात वीरों के त्याग और संघर्ष की याद दिलाता है जिनकी बदौलत हम आज आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। ये दिन राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पुनः स्मरण करने तथा भारत को और अधिक समृद्ध, सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेने का अवसर है।

इसी के साथ उज्जैन के स्थानीय परेड ग्राउंड दशहरा मैदान में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह की रेडियो रिपोर्ट सम्पन्न होती है। सभी श्रोताओं को 80वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उज्जैन के स्थानीय दशहरा मैदान में आयोजित समारोह की स्थानीय रेडियो रिपोर्ट, जिसका वाचन रश्मि बजाज का है, संपादन एवं प्रस्तुति सौरभ अवस्थी जी की। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और सबसे पहले सुनते हैं इस गीत को।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या...
2: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोताओं, आज स्वतंत्रता दिवस पर आपका क्या संकल्प है? आप अपने देश, अपने उज्जैन शहर और समाज के लिए क्या योगदान देना चाहते हैं? इस प्रश्न पर जरूर विचार कीजिएगा। और सुनते हैं पीयूष मिश्रा जी की आवाज में एक देशभक्ति गीत।

है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंग की घड़ी की तुंग हार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो आन आन शान।

0: करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे।
1: श्रोताओं, ये था कार्यक्रम फिल्म संगीत। शाम के 8:45 होने को है। अब आप दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
0: कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
4: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
3: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
4: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
4: एनर्जी सिक्योरिटी, ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तक जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
4: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
3: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति

0: शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुखरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महिशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

0: इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माउमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
1: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2

0: ने 2047 तक 100 गीगावाट की एटमी बिजली की सलाहियत के निशाने का ऐलान किया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरसे और इलाकाई और आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इंडोनेशिया में शदीद जलजले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। हॉकी में नीदरलैंड्स में FIH वर्ल्ड कप के ग्रुप डी के मैच में भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। आज 80वां यौम आजादी पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तारीखी लाल किले पर यौम आजादी की तकरीबात में मुल्क की क़यादत की। वहां उनके पहुंचने के बाद लाल किले पर पहली मर्तबा कौमी गीत वंदे मातरम गाया गया। इस साल की तकरीबात में 2047 तक विकसित भारत की तामीर में नौजवानों के रोल को तस्लीम करते हुए युवा शक्ति की अहमियत उजागर की गई। लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने पुख्ता अज़्म और लगन के जरिए मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन कोशिशों की बदौलत 25 करोड़ लोग गुरबत से बाहर आ गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 2047 तक एक तरक्याफ्ता मुल्क बनने का बड़ा निशाना तय किया है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत, जो कभी 5 कमजोर मईशतों वाले मुल्कों में शामिल था, अब दुनिया में एक बड़ी और सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत के तौर पर उभरा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब वो खुद अपने ख्वाब और अज़्म की ताकत के साथ कदम बढ़ाता है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि बड़े ख्वाबों और मजबूत अज़्म से मुल्क की कोशिशों की सलाहियत में इजाफा होता है।
1: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि तवानाई की यकीनी फराहमी मौजूदा दौर की बड़ी ज़रूरियात में से एक है और सरकार ने इस सिलसिले में कई अहम इकदामात किए हैं। उन्होंने कहा कि एटमी तवानाई मुल्क की तवानाई की यकीनी फराहमी का एक अहम वसीला है।
1: एनर्जी सिक्योरिटी, ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकार ने साहिल समंदर के 99% इलाके खोल दिए हैं और सरकार अब समंदर की गहराइयों में तलाश का काम सरगर्मी के साथ अंजाम दे रही है और नए जखायर दरियाफ्त करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं।
1: हमने 99% को, जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है।
0: विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने पर जोर देते हुए जनाब मोदी ने मुख्तलिफ पब्लिक इम्तिहानात के लिए गरीब और मुतवस्सित तबके के कुनबों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने यह ऐलान भी किया कि सरकार ने यह फैसला किया है कि अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को AI की हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह ये नौजवान आलमी सतह पर AI के शोबों में सरकर्दा रोल अदा कर सकेंगे।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए

0: ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: अपने खिताब में वजीर आजम ने मुल्क के लोगों पर जोर दिया कि वो कुव्वत की सात धाराओं सप्त धारा को बरूए कार लाएं। जनाब मोदी ने कहा कि अगले 5-7 साल में मुल्क वो सब कुछ हासिल कर लेगा जो गुज़श्ता 5-7 दहाइयों में भी हासिल नहीं किया जा सका था।
0: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: वजीर आजम ने कहा कि अगले 7-8 साल में मजीद 5 से लेकर 8 सेमी कंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: पेश है लाल किले पर यौम आजादी की तकरीबात के सिलसिले में हमारे नामा निगार की यह रिपोर्ट।
2: आज यौम आजादी की तकरीबात के साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने का जश्न भी मनाया गया। पहली मरतबा लाल किले पर इन तकरीबात के दौरान वंदे मातरम गाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिफा के वजीर ममलकत संजय सेठ और महकमे दिफा के सेक्रेटरी राजेश सिंह ने लाल किले पहुंचने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। वजीर आजम को पेश किए गए गार्ड ऑफ ऑनर के दस्ते में एक अफसर और फौज, बहरिया, फजाइया और दिल्ली पुलिस से ताल्लुक रखने वाले 24 अहलकार शामिल थे। वजीर आजम ने कौमी परचम लहराया और इसके साथ साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। तकरीब के मकाम पर भारतीय फजाइया के MI-17 तर्ज के 2 हेलीकॉप्टरों के जरिए फूल बरसाए गए। फौज के बैंड ने वंदे मातरम की धुन बजाई और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने कौमी गीत गाया। इसके बाद कौमी तराना पेश किया गया। इस साल लाल किले पर यौम आज़ादी की तकरीब के लिए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5,000 खसूसी मेहमानों को मदऊ किया गया था। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आलमी रहनुमाओं और गैर मुल्की मिशनों ने भारत के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरासत और इलाकाई नीज आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत और अमरीका के दरमियान मुस्तहकम कलीदी साझेदारी को उजागर किया, जबकि सिंगापुर के सदर थर्मन शनमुगारत्नम ने हुनरमंदी के फरोग, डिजिटल शक्ल दिए जाने, पायदार निजाम और जदीद तर्ज की मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बढ़ते हुए ताउन की अहमियत उजागर की। फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने भी 80वें यौम आजादी पर भारत के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसराइल के सदर आइजक हर्ट्ज़ोग ने अपना पैगाम हिंदी में भी शेयर करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारत के आवाम को मुबारकबाद पेश की। नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह ने भी मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि लातविया की वजारत खारजा ने भारत की लगातार पेशरफ, इत्तेहाद और खुशहाली के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उधर इसराइल के सफीर, अर्जेंटीना के सफीर, श्रीलंका के हाई कमिश्नर, नीज नेपाल और फ्रांस के सिफारतखाने, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी हाई कमिश्नर और कनाडा के हाई कमीशन की जानिब से भी मुबारकबाद के पैगाम मौसूल हुए हैं। इनमें भारत के विरसे और गुनागुनियत, इकतसादी सलाहियत और फरोग पाते हुए बामी ताल्लुकात को उजागर किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने यौम आजादी के मौके पर मुबारकबाद दी। इनमें फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों और मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो शामिल हैं। नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह की मुबारकबाद के पैगाम के जवाब में जनाब मोदी ने कहा कि वो दोनों मुल्कों के अवाम की बहबूद और बाहमी खुशहाली के लिए भारत और नेपाल के दरमियान कसीर रुखी और सदियों पुराने तहजीबी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के खातिर मिलकर काम करने के पाबंद हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भूटान के वजीर आजम शेरिंग टोबगे के पैगाम के लिए उनके शुक्रिया अदा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ खसूसी और पायदार साझेदारी को बहुत कदर की निगाह से देखता है जो लगातार मजबूत होती जा रही है। स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी के पैगाम के जवाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो भारत और स्लोवाकिया के दरमियान जामे साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाए जाने के मुतमन्नी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने

नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन का तहरीर करदा एक मजमून शेयर किया है, जिसमें मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों और 2047 तक विकसित भारत की तामीर के अज़्म को उजागर किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस मजमून में नायब सदर जमहूरिया के अंडमान और निकोबार जजायर के हालिया दौरे का तस्करा किया गया है। उनका यह दौरा ऐसे वक्त हुआ जब भारत अपना 80वां यौम आजादी मना रहा है और पूरे मुल्क में मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। सरकार ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने वाली एक पोस्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी यौम आजादी पर 5,000 रुपए की नकद ग्रांट दे रहे हैं और इसके लिए लोगों के बैंक खाते की तफसीलात मांगी जा रही हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के हकायक का पता लगाने वाली यूनिट ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। पीआईबी ने कहा है कि वजीर आजम ने यौम आजादी पर इस तरह की किसी भी नकद ग्रांट की कोई तायद नहीं की है। ने लोगों को खबरदार किया है कि इस तरह के पैगामात के जरिए अक्सर जाति या माली जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है। पीआईबी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो चौकस रहें और इस तरह के पैगामात पर भरोसा करने या उन्हें दूसरों तक पहुंचाने से पहले सरकारी वसीलों से इस तरह के दावों की तस्दीक कर लें। इंडोनेशिया के फ्लोरेस जजीरे के करीब आज 7.7 शिद्दत का जलजला आया है। इस वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 47 हो गई है। इस जबरदस्त जलजले के बाद कई झटके महसूस किए गए, जबकि राहत टीमों ने बुरी तरह मुतासर होने वाले इलाकों में पहुंचने की कोशिश जारी रखी। मुल्क के कई हिस्सों में कम से कम 1-1 मीटर सुनामी की लहरों की भी इत्तला है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का सिलसिला जारी रखने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी अगले 2-3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में स्टेशन रोड पर वाकई आज एक इमारत में आग लग गई। आग लगने के बाद कई लोगों का दम घुटने लगा। हुक्काम के मुताबिक मुतासिर लोगों को एक अस्पताल में ले जाया गया। बताया जाता है कि उनकी हालत मुस्तहकम है। हुक्काम का कहना है कि आग बुझाने वाले महकमे ने आग पर काबू पा लिया है। ये वाकया बांद्रा के एमके चेंबूर इलाके में पेश आया। भारत ने नीदरलैंड्स के आम्स्टेलवेन में FIH हॉकी आलमी कप के ग्रुप डी के एक मैच में वेल्स को 1-3 गोल से हरा दिया। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। संजय राणा ने 1 गोल किया। वेल्स की तरफ से सैम वेल्श ने वाहिद गोल किया। गाने में मेजबान श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो देवदत्त पडिक्कल ने 131 रन बना लिए थे, जबकि ऋषभ पंत 27 रन पर खेल रहे थे। इससे कबल यशस्वी जायसवाल ने 32 और कप्तान शुभमन गिल ने 16 रन बनाए। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम आजादी का जश्न मनाने में मुल्क की क्यादत की और लोगों पर जोर दिया कि वे एक मजबूत और खुद कफील भारत के लिए बड़े ख्वाब देखें। वजीर आजम ने विकसित भारत के लिए नौजवानों और खवातीन को बाख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने की खातिर नौजवानों की कुव्वत को बरूए कार लाने के मकसद से सप्तधारा फ्रेमवर्क का ऐलान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट की एटमी बिजली की सलाहियत के निशाने का ऐलान किया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम आजादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरसे और इलाकाई और आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इंडोनेशिया में शदीद जलजले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रखने की पेशगोई की गई है। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में ये गीत, फिल्म पूरब और पश्चिम से। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तब गिनती आई तारों की भाषा, भारत ने दुनिया को पहले से

प्रदीप का लिखा गीत सुनिए फिल्म जागृति से। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया है और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

हम हिंदुस्तानी, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश और साथियों की आवाज़ में। बोल लिखे प्रेम धवन ने और संगीत था उषा खन्ना का। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। शांति माथुर और साथियों की आवाज़ों में ये अगला गीत सुनिए, शकील बदायूनी की शब्द रचना, नौशाद का संगीत, फिल्म है सन ऑफ इंडिया।

0: का कदम।
1: देने बाय देने बाय था।
0: नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद।

0: शकील बदायूनी का लिखा गीत, नौशाद का संगीत। अभी आपने सुना ये गीत फिल्म लीडर से। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल जले से। कुमार सानू और आदित्य नारायण ने इस गीत को गाया है। जावेद अख्तर के लिखे बोल और संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।
1: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो शामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है?

0: श्रोताओं, फिल्म दिल जले किसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी है। आज के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध सितार वादक श्री जुनैन खान का सितार वादन। मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मे जुनैन खान का बचपन मुंबई में बीता। मात्र 5 वर्ष की आयु में अपने पिता सुप्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार की शिक्षा प्रारंभ की। उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान ने अपने अभिनव जाफरखानी बास के माध्यम से सितार की रचना, वादन शैली, तकनीक और इस वाद्य की संभावनाओं को एक नई दिशा प्रदान

की। जफरखानी बास को लयात्मक नवाचार और स्वर की गहराई पर आधारित सितार वादन की एक दुर्लभ और अत्यंत परिष्कृत परंपरा के रूप में जाना जाता है। इस शैली के तकनीक के बारे में श्री जुनैन खान बताते हैं कि इसमें

0: उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान ने की थी। श्री जुनैन खान जाफरखानी शैली में भारत तथा विदेशों के विद्यार्थियों को सितार की शिक्षा प्रदान करते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संगीत समारोहों का आयोजन करते हैं और अपने विद्यार्थियों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। श्री जुनैन खान ने भारत के अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोह और मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है। तानसेन समारोह ग्वालियर, संगीत नाटक अकादमी के तत्वाधान में आयोजित मारवाड़ समारोह, जिसे पूर्व में मंड समारोह के नाम से जाना जाता था, सामापा संगीत सम्मेलन नई दिल्ली, पंडित नंदकिशोर शर्मा स्मृति समारोह भोपाल, विश्व संगीत दिवस 2025 मैसूर, राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह नई दिल्ली प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने प्रस्तुतियां दी है। फ्रांस के नांत में आयोजित फेस्टिवल द एते, इंटरनेशनल रोंडाला फ्लैट स्ट्रिंग फेस्टिवल फिलीपींस, जोंजू इंटरनेशनल सोरी फेस्टिवल दक्षिण कोरिया और अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित इंडिया कम्युनिटी सेंटर में आयोजित बसंत बहार में अपनी प्रस्तुतियां दी है। श्री जुनैन खान चीन के बीजिंग में आयोजित भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के आधिकारिक सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में भी भाग ले चुके हैं। अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आप आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। वर्ष 2018 में सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा सामापा संगीत तेजस्वी सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स अर्थात NCPA के सहयोग से गान वर्धन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अर्थात ICCR द्वारा एस्टेब्लिश आर्टिस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है श्री जुनैन खान का सितार वादन। आज की प्रस्तुति का आरंभ वे करेंगे राग रागेश्री से। विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है और द्रुत गत भी तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अनीश प्रधान।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय रेनाउंड सितारिस्ट श्री जुनैन खान। बॉर्न इन भोपाल, मध्य प्रदेश, जुनैन खान ग्रू अप इन मुंबई। He began playing sitar at the age of 5 under the tutelage of his father, Ustad Abdul Halim Jafar Khan, who transformed sitar composition, playing style, technique and pedagogy as well as capabilities of the instrument through his innovation of the Jafar Khani Baz. Jafar Khani Baz style has been described as a rare, highly sophisticated tradition of sitar playing rooted in rhythmatic innovation and tonal depth. Zunain Khan explains the technique as involving the simultaneous use of two or sometimes three strings. The left hand is called upon to do much more work, resulting in a better synchronization between the two hands. Zunain Khan is the executive director of Haleem Academy of Sitar, the first sitar academy in India, founded in 1976 by his father. He teaches sitar in the Jafar Khani style to students across India and abroad and organizes music events to commemorate Guru Purnima and showcase performances of his students. Zunain Khan has performed at prestigious festivals and venues in India, including Tansen Samaroh Gwalior, Marwad Festival, formerly known as Maan Festival, under the aegis of the Sangeet Natak Academy, Samapa Sangeet Sammelan New Delhi, Pandit Nandkishore Sharma Smriti Samaroh Bhopal, World Music Day 2025 Mysuru, Rashtriya Dhrupad Samaroh New Delhi. International performances include festivals like Detenant France, International Rondala Plucked String Festival Philippines, Jeonju International Sori Festival South Korea, Basant Bahar at the Indian Community Center in California, USA. Zunain was the official cultural delegate at India's Republic Day celebrations in Beijing, China. Zunain has received many prestigious awards. Zunain Khan is an A-grade artist with Akashvani, Samapa Sangeet Tejasvi Samman, Sopori, Academy of Music and Performing Arts 2018, Ganavardhan Award 2022 in collaboration with the National Center for the Performing Arts, NCPA Mumbai, established artists.

0: ये था राग रागेश्री। अपने सितार वादन को जारी रखते हुए श्री जुनैन खान अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग किरवानी। द्रुतगत 3 ताल में निबद्ध है।
1: That was Raag Rageshri by Shri Zunain Khan. He continues his sitar recital with Raag Kirwani. Drutgat set to Teen Taal.

0: आप सुन रहे थे राग केरवानी। आज के संगीत कार्यक्रम का समापन श्री जुनैन खान राग देश में धुन से कर रहे हैं, दादरा ताल में निबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू कीरवाणी। ही कंक्लूड्स हिज सितार रिसाइटल विद धुन इन राग देश सेट टू ताल दादरा।

0: ये थी राग देश में धुन। इसी के साथ आज के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में श्री जुनैन खान का सितार वादन संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर थे श्री अनीश प्रधान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई केंद्र में ध्वनि मुद्रित एवं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was धुन इन राग देश and that concludes the sitar recital by Shri Zunain Khan. In tonight's national program of music, he was accompanied on the tabla by Shri Anish Pradhan. This program was recorded at the studio of Akashwani Mumbai and the broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार, मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33

0: प्रतिशत आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की

को नमन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इंडोनेशिया में आज फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार कई प्रभावित इलाकों में अब भी लोगों के इमारतों के भीतर फंसे होने की आशंका है। नीदरलैंड्स के एम्स्टेलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र और उत्तराखंड में कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।